وضرب لنا

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं.
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

0: मन।
1: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
0: يسألوه من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن।
1: आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और इन बागों के अलावा दो बाग और हैं,

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्ज़।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे? इनमें दो चश्मे उबल रहे हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

पांच दरियाओं के धारों की अमी है ये जमीन, इसके पासी हैं कुशादा दामन दिल और जबीन। लर्जा है दश्तो बयाबां देख कर हैबत बलोच, रस्मगाहे जिंदगानी में है ये नुसरत बलोच।

सिंध है रोशन सितारों की तजल्ली का जहां, करिया करिया कूचा कूचा हर गली है कहकशां, हौसले हैं पर्वतों से अज़्म है परवाज़ में, खित्ता-ए-पख्तून है मखमूर हुस्ने नाज़ में।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back hit music on your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

दर्पण माला ओ हो जाएगा मोमिन, हक जदों सीने लाया दिल होया रोशन।

0: And now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने मुल्क में आईटी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। नायब वजीर आजम ने कहा है कि हुकूमत गंदम समेत अशियाए ज़रूरिया की मुनासिब फराहमी यकीनी बनाने के लिए सूबों के साथ तआवुन करेगी। मारूफ फिल्म साज, हिदायतकार और अदाकार सैयद शौकत हुसैन रिजवी की 27वीं बरसी आज मनाई जा रही है। नीदरलैंड्स में जारी FIH हॉकी आलमी कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा।
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, SMS वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: 101 FM।
3: मूसलाधार बारिश और शदीद झालावारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
4: This is FM 101.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: And now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर ममलिकत ने बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और अवामी फलाह के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मौसर तआवुन पर जोर दिया है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत गंदम समेत अशियाए ज़रूरिया की मुनासिब फराहमी और कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए सूबों के साथ तमाम मुमकिन तआवुन करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला क्रिकेट टेस्ट आज लीड्स में शुरू होगा।
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें।
2: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
3: FM.
4: This is FM 101.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: This is FM 101.
6: I love FM 101.

तमाम धड़कते दिलों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे वजीहा आसिम। उम्मीद है आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और आप सब ठीक ठाक होंगे और मजे में जिंदगी गुजार रहे होंगे। लेकिन अगर लाइफ में चल रही है कुछ थोड़ी सी भी टेंशन, कुछ है थोड़ी सी भी परेशानी, तो हम हाजिर हैं विद अ सुपर डुपर शो लेडीज लाउंज। आपका और मेरा साथ रहने वाला है ठीक 11 बजे से 1 बजे तक। प्रोग्राम में शामिल करेंगे आपके कमेंट्स, मैसेजेस, कॉल्स, लाइव कॉल्स लेंगे आपकी। कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। आज है 19th August। कैसे जल्दी जल्दी से दिन गुजरते ही जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता। और ये ऐसा तब होता है जब आपके दिन वाकई में अच्छे गुजर रहे हो, बुरे दिन गुजर रहे हो, तो यकीन जानिए एक एक लम्हे का पता चल रहा होता है। तो सबसे पहले तो आज जिनकी बर्थडे है, जो हमें सुन रहे हैं हमारे सामीन जिनकी बर्थडे है, उन्हें मेरी तरफ से FM 101 की पूरी टीम की तरफ से मेरी बेस्ट विशेज ऑफ द डे। और जो लोग बीमार हैं उनके लिए ढेरों ढेरों दुआएं, क्योंकि जहां है तो जहां है। तो जी मजीद गपशप आपके साथ चलती रहेगी। अभी आपकी स्मार्टों की नजर करने जा रही हूं एक जबरदस्त सा ट्रैक, कहीं मत जाइएगा। संतरी FM 101।

वेलकम बैक, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे वजी। हाँ, से प्रोग्राम है ठीक 1 बजे तक। तो अगर आप अपनी 111001 मैसेज भी आप हमें कर सकते हैं @4471। आज की प्रोग्राम की जो पोस्ट है हमारे ऑफिशियल FM 101 के पेज पे अपलोड कर दी गई है, सो डू लाइक कमेंट एंड शेयर। आज फोटोग्राफी डे, वर्ल्ड डे, ताकि जो जितने भी इंटरनेशनल की जा सके, ताकि उस बारे में बात की जा सके, डिबेट की जा सके, ताकि जो चीजें होती है ना लोग नजरअंदाज कर देते हैं या आपके बैक ऑफ द माइंड चली जाती है, तो उनको ना आपको दोबारा से ना थोड़ा याद दिलाया जाता है। अगर जब किसी चीज के लिए हम एक मुकर्र क्या करते हैं ना, तो फिर उसमें ये होता है कि आपको थोड़ा सा ना टाइम मिलता है उसके बारे में सोचने के लिए, उस चीज़ को आगे लेके बढ़ने के लिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो निग्लेक्ट नहीं की जा सकती। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हम अपने ना बच्चों से आने वाली जन्म होता है

जो वर्कर्स हैं हमें हमारे इर्द गिर्द काम करते हुए नजर आते हैं, मजदूर। इसके साथ साथ जो भी इंसान, किसान, जो भी इंसान जो है उसकी तो जी आप क्या समझ जाते हैं, टाइम कम रह जाता है तब सबके जो है ना फरमाइशें आने शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर किसी को गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं। हम यहाँ बैठे हैं दिलों को मिलाने के लिए, आपके दिल की बात जानने के लिए।

तो अगस्त जब स्टार्ट हो गया है तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो स्कूल कॉलेजेस जो है ना उनकी छुट्टियां खत्म होने को है एंड बैक टू द नॉर्मल रूटीन। और बैक टू द नॉर्मल कितना मुश्किल लगता है या कितना आसान लगता है जरूर हमारे साथ शेयर करें। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो बैक टू द नॉर्मल रूटीन में जाने के लिए कुछ वक्त तो लगता है, लेकिन मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी अपने स्कूल फ्रेंड्स से मिलने की या कॉलेज में फ्रेंड्स से मिलने की, क्योंकि उस ज़माने में इतने आजकल जो इतने प्लेटफॉर्म्स हैं आप स्कूल और कॉलेज ना भी जाते हुए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं, कभी कॉल कर लिए वो, तो उस ज़माने आज से कुछ सालों पहले कि इतनी एक्साइटमेंट होती थी वो जो कहते हैं ना अपने दोस्तों से। आजकल के ज़माने में सब बच्चों को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं क्योंकि आजकल इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एक दूसरे का स्टेटस चेक करते रहते हैं, सो दे डू स्टे कनेक्टेड। दोस्ती एक बहुत खूबसूरत रिश्ता आपके लिए क्या अहमियत रखता है आपने मेरे साथ शेयर करना है।

वेलकम बैक, दिस इज योर दोस्त योर होस्ट आरजे. मैं आपके साथ रहने वाली हूँ ठीक एक बजे तक. तो आप जितने कमेंट्स मैसेजेस करना चाहते हैं आप मुझे कर सकते हैं. अगर आप अपनी आवाज़ प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं 8111 0010. ना भी हो जितनी भी खवातीन है सुख का सांस ऐसे करके, ठीक है ना. तो सब

और लेट नाइट मूवी प्रोग्राम्स, कजन्स की तरफ जाना है, नानी घर तो जाना मस्ट ही है, जिन जिनकी नानियां हैं अल्लाह सबकी नानियों को सलामत रखे। लेकिन जो दादी होती है ना वो भी किसी की नानी होती है, लेकिन बात आप समझे सिर्फ इतनी सी है कि जब आपको किसी से थोड़ी दूर है ना, थोड़ी दूरी इख्तियार जब आप करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली मोहब्बत ज्यादा हो जाती है। इसलिए खुदा के वास्ते जिससे ज्यादा प्यार करते हैं ना तो थोड़ा दूर भी रह लो ताकि अगले को थोड़ी कदर हो जाए। तो खवातीन अपने स्पेशली जो मुझे सुनी है, अपने आप को टू मच अवेलेबल ना रखो। कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, अब तो यार दाल से भी रेट कम हो गया हमारा। इसलिए मेक योरसेल्फ वैल्यूड, हर टाइम कंप्लेंट करते रहना ये बात सही नहीं है। आपकी लाइफ आपकी जिम्मेदारी है, अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और को क्यों देते हो। खुश रहो, खुशियां बांटो। नानी घर जाने का ना इतना इसको, इस बात को इतना फैंटेसाइज इसीलिए किया जाता है क्योंकि आप नानी घर हर टाइम जा नहीं सकते, उनसे कभी कभार दूर रहते हो, तो इसलिए मोहब्बत डेवलप हो ही जाती है। इस पॉइंट को समझो, ठीक है ना। जो आपकी दादी है वो भी किसी की नानी है, ठीक है ना। अगर आपकी फूफो है तो, वैसे तो फूफो बहुत मजे का कैरेक्टर प्ले करती है हर जनरेशन में। वैसे सोचो जरा, अगर फुफो ना हो तो जिंदगी कितनी फीकी फीकी हो, नहीं? तो फुफोस का भी होना लाइफ में बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो जी जब के छुट्टियां खत्म होने वाली है और अब जो है ना सारी जो माएं हैं वो उस चक्कर में है कि बच्चों के यूनिफॉर्म पूरे हो जाएं, स्कूल की बुक्स बैग्स कॉपीज सब कुछ पूरी हो जाएं। और अक्सर मैं आप गलती से किसी बुक स्टोर पे चले भी जाओ ना कुछ लेने के लिए, कुछ स्टेशनरी का सामान भी, तो वहाँ पे यूँ भीड़ लगी होती है। वैसे मैं सब को सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप कोशिश करें कि इन द बिगिनिंग ऑफ द वेकेशन आप बच्चों का जो सिलेबस है वो ले लें, क्योंकि जो स्कूल होता है वो अक्सर आपको छुट्टियों से पहले ही बुक लिस्ट दे देते हैं, या बुक लिस्ट आर यूजली अवेलेबल एट द बुक स्टोर एज वेल, ताकि आप बच्चों को थ्रू आउट द वेकेशन कुछ कुछ जो है ना ज़्यादा नहीं तो कुछ

बस बच्चों को करा दें, ठीक है ना। बच्चों को एक्साइटमेंट भी रहती है नई किताबें पढ़ने की, तो आपके कहे बगैर पढ़ लेंगे, ठीक है, करके तो देखो। तो जी मीशा शफी की आवाज़ में एक जबरदस्त ट्रैक प्ले करूँ।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

Welcome back. This is your dose, your host, RJ Vajiha Asim. आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. गूगल हैज ऑफिशियली ओपन्ड इट्स ऑफिस इन इस्लामाबाद. तो पहला और तकरीबन जो ऑफिशियल स्किल्स हैं उनसे फायदा उठा रहे हैं. इसके साथ साथ ये जो है बहुत सी अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला है हमारे नौजवानों के लिए. और इसके जो प्राइम

होना चाहिए पाकिस्तानी, जितने भी जितने देखिए बहुत अहम कदम है और बहुत इसको अगर आप समझे तो ठीक है, तो अब ये आप डिपेंड करता है कि आपने किस चीज से कितना फायदा उठाना है। सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन, बस आपने क्या करना है, कोई ना कोई स्किल। आजकल बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी डिग्रीज भी हैं, सब कुछ है, लेकिन तो भी वो जॉब हासिल करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। रीजन बिहाइंड इज कि आपके पास कोई ना कोई स्किल जरूर होना चाहिए, और आजकल बहुत स्किल्स ऑफर किए जा रहे हैं, बहुत से ऑनलाइन स्किल्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा जो है सर्टिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आजकल ओपन की हुई है। तो जाएं इन वेबसाइट्स को देखें, उनको विजिट करें, उनसे फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और वो ऐसे सर्टिफिकेशन है जिसको आप अपने प्रोफाइल के साथ भी अटैच कर सकते हैं, वो आपको ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी अपना ग्रांट करते हैं इन द एंड ऑफ द कोर्स। और बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं जिसके लिए यू डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। नासा ने आजकल अपने कॉस्ट है, व्हाट यू हैव टू डू सिर्फ उसकी वेबसाइट पर जाएं, देखें, इंफॉर्मेशन लें और अपने आप को रजिस्टर करें। दैट इज ओनली व्हाट यू नीड टू डू। जी तो फिर वापस

उसमें आपने बहुत कुछ प्लान किया। अब काफी स्कूल्स में जो है पंखों के अलावा कूलर भी होते हैं, और एक वो जमाना था जब सबकी कूलर में पानी डालने की

आज जो है ना, हम अब जो बहुत ज्यादा वेदर कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं, ग्लोबल जैसे जैसे लोग बदल रहे हैं।

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

Welcome back. This is your dose, your host, Abu. At the moment, it's 11:48 in the studio. दोस्ती ना एक अजीब सा रिश्ता है, बहुत यूनिक सा रिश्ता है. कभी कभार ऐसे दोस्त होते हैं ना आपके, जो आपको तंग भी कर और पसंद भी.

तो जाए तो जाए कहाँ। पर ऐसे तो अच्छी दोस्ती होती है। तो अपने जो दोस्तों को ना थोड़ा सा वैल्यू करना सीखो, ठीक है ना। उनको इस तरह वैल्यू करो कि वो आपके ना, जब आप एक दूसरे से कनेक्टेड ना भी हो ना, तो आपको एक दूसरे की खैर खबर हो, ठीक है ना। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कुछ कि इतने सालों बाद भी मिले हैं तो भी लगता है कि कभी हम एक दूसरे से अलग हुए ही नहीं। तो ये ऐसी बॉन्डिंग जो होती है ना, वो बॉन्डिंग होनी चाहिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत ज़्यादा दोस्त ना भी इकट्ठे करें, चंद दोस्त इकट्ठे कर लो, लेकिन जेन्युइन दोस्त इकट्ठे करो।

दोस्ती ना एक ऐसा रिश्ता है जिससे ना आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ठीक है। और कभी कभार होता है कि आप अब सोचते हैं कि आपके घर वाले ये करेंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो अपने घर वालों से भी नहीं कर पाते। और आपने ज़रूर मुझे बताना है कोई एक कौन सा ऐसा रिश्ता है आपकी ज़िंदगी में, आपके दोस्त, भाई या भाभी या कोई भी, जिस पे आप सोचते हैं कि जब भी आप ना उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जब भी कोई मुश्किल वक्त आएगा तो आप उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, जो सबसे आपने देखना होगा ऑथेंटिक लोग वो होते हैं, कहते हैं ना जो गम के वक्त हमारे साथ था, जो हमारे बुरे वक्त में साथ था। तो मैं आपको बताऊं, बुरे वक्त में अक्सर लोग आपके साथ ही होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ना इस सिचुएशन में थोड़ी सी दिल आज़ारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जब टॉप पर होते हैं ना, या जब आप खुश होते हैं, तो आप के जब आप अपनी सक्सेस के उस लेवल पर होते हैं जो आप हासिल करना चाहते थे, तब कौन कौन है आपके साथ ना, चेक करना। तो बहुत से लोग सीख जाते हैं, तुम गिरोगे देखना, ऐसे कॉल नहीं होना। यही सोच रहे होते हैं।

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर ममलिकत ने बलूचिस्तान में आम तरक्की और अवामी फलाह के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मौसर राबते पर जोर दिया है। नायब वजीर आजम ने पाकिस्तान में शंघाई तआवुन तंजीम के आइंदा इजलास की कामयाब मेजबानी यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों के दरमियान करीबी राबते पर जोर दिया है। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मेटा ने छोटे कारोबारी इदारों को जदीद डिजिटल दौर से हम आहंग करने के लिए मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम का आगाज किया है। आज़ाद कश्मीर के शहरी शरपसंद अनासिर की साजिशों को मुस्तरद करके पाकिस्तान से वाबस्तगी का भरपूर इजहार कर रहे हैं। और अब खबरों की तफसील। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस अमर पर जोर दिया है कि बलूचिस्तान में अम तरक्की और अवामी फलाह के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मौसर रवाबित जरूरी हैं।
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेर तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: 101 FM।
3: मूसलाधार बारिश और शदीद झालावारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइस तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
2: FM.
4: This is FM 101.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into...

Welcome back. This is your day. आपका और मेरा साथ रहने वाला है 11 बजे से 1 बजे तक. At the moment, it's 12:06 p.m. in the studios. A very, very proud moment for Pakistan. Global Mobile. इसके साथ साथ पाकिस्तान के आतिफ बट ने थर्ड कंसेक्यूटिव सीईओ बन गए हैं एंड टेकन 8 टाइटल. पाकिस्तान देखिए चाहे वो सिंगल एक्टर हो कोई फौजी कोई आर्टिस्ट हो चाहे वो अपने आप को की जीत होती है और हम सब जो है ना उस पर बहुत बहुत जो क्योंकि देखिए एक इंटरनेशनल लेवल सब कुछ वसूल

तो जी आप कुछ किसी के भी नहीं किए तो वो ना उन्हें सुनने वाले नाराज हो जाए जी। तो हमें मैसेज किया है, कहते हैं गुड थैंक यू, और हमारे साथ हैं रमजान बुजुर्गुल यासीन नाज और नज़ीर खुसरो हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कहते हैं सोबत प्रिविलेज से हमें ज्वाइन किया है। फातिमा असलम बहुत प्यारी सी है हमारी फरियापी, कहती हैं लवली प्रोग्राम फरी चबुर्जी लाहौर से, और रजा चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं कुछ हो बल्कि वो होता है जो महदूद वसाइल के बावजूद हिम्मत नहीं हारता, आजमाइशें इंसान को तोड़ती हैं बल्कि उनकी असल ताकत जाहिर करने में मदद देती हैं, और बाज़ लोग शोर से नहीं बल्कि सब्र कदार और मेहनत से कामयाब हैं। वक्त गवाह है कि जो इंसान अपने असूलों पर कायम रहता है मंजिल खुद उसके कदम चूमती है। बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात कही आपने। मुजम्मिल अजीम ने हमें मैसेज किया है, मुजम्मिल अजीम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, आपका शो नाइस है, और रजा चौधरी ने हमें मैसेज किया, भेजा है स्पेशल सलाम अमारा बेग मोहम्मद हफीज बखर को और यासीन नाज रफीक अंसारी उस्ताद और हनीफ ड्राइवर को सलाम भेजा है उन्होंने। और रमज़ान गुजर ज्वाइन कर चुके हैं हमें, कहते हैं मैम गुड मॉर्निंग 101, थैंक यू वेरी वेरी मच। मोहम्मद तारिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं तमाम खूबसूरत जमातों का अस्सलाम वालेकुम। कंवल नाज हैं हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, और एजाज अली ने कहा है उन्होंने हमें ज्वाइन किया है शरकपुर शरीफ से, और रमजान गुजर ने कहा है आदाब तस्लीमात एंड मोस्ट वेलकम, बहुत दिन बाद आपकी फेबुलस आवाज़ सुनी, स्वीट सी वॉइस सुन के अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा, सुपर स्टार आपका, कैसी तबीयत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नईम टेलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं कबीर आज़ाद अहमद जट अब्दुलरहमान को सुन रहा हूँ, है अच्छा जी ठीक है, और कहते हैं गुड मॉर्निंग आप ही सलामत रहें, और कंवल नाज कह रही हैं वेलकम जी आप कैसी हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और एजाज अली ने पूछा है क्या हाल है ठीक ठाक, और अल्हम्दुलिल्लाह मिला खैर हमें ज्वाइन कर चुके हैं कोयटा से, कहते हैं वेलकम टू द शो। रमज़ान गुजर ने बहुत प्यारे प्यारे से इमोजीज भेजे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, और कमल नाज ने कहा है खुश रहो आबाद रहे मुझे आसिम, थैंक यू। रमज़ान गुजर ने कहा है बहुत ही दुआओं के साथ रेडियो पाकिस्तान हिट एंड फिट रेडियो स्टेशन रेडियो पाकिस्तान हिट FM 101 के सुनने वाले सुपर हिट लिसनरशिप को वार्म वेलकम, असद बिस्मिल्लाह जी आया नू, अब ये तो अभी मैंने इनका मैसेज रीड किया है लेकिन जब वो एंट्री मारते हैं तो बहुत ही स्पेशल अंदाज में, कमल नाज ने कहा जबरदस्त बेस्ट शो, रहीम बलोच हमें ज्वाइन कर चुके हैं बहुत प्यारा सा इमोजी भेजा है, और रमजान गुजर ने कहा है कूल ब्रिलियंट प्लेलिस्ट वाओ, और हिट सॉन्ग्स बहुत आपको प्लेलिस्ट पसंद आई थैंक्स अ लॉट, और रजा चौधरी ने हमें मैसेज किया है और कहते हैं जिंदगी में कुछ लोग ऐसे बातें करते हैं, बिल्कुल जी देखो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, और क्योंकि जो आप सोचते हैं जो आप करते हैं जहां आपका ध्यान रहता है वो आपके साथ होता है, तो आप इस बात को जरूर जरूर अपने जहन में रखें, जो चीज़ आप अपने पर सवार कर लेंगे, देखिए पानी जो होता है ना पानी कहाँ जाता है ठीक है ना, जब बारिश होती है नदियों में जाता है उसके बाद इन द एंड समंदर में चला जाता है ठीक है ना, तो आप देखिए वो एक पहाड़ बना होता है ना उसे समंदर में ही जाना है ठीक है, और लेकिन ठीक है सहरा में वहां पे कोई पानी नहीं होता, सब पानी ढूंढ रहे होते हैं, और वो रेगिस्तान इसलिए क्योंकि देखिए वो रेगिस्तान भी तो अपने आप में जीना सीख लेता है ना, चाहे वो एक रेगिस्तान, इसी तरह जब जितना जिस चीज के बारे में सोचेंगे ना आप उसी के अंदर जीना शुरू कर देंगे, उसी के अंदर थिंक पॉजिटिव डू पॉजिटिव पॉजिटिव थिंग्स विल कम बैक टू यू, ये आपके पास वापस लौट के आता है। कह रहे हैं अगर कोई इंसान आपको बुरे तरीके से ट्रीट करता है तो अपनी पर्सनैलिटी ऐसी है, उसकी अपनी ब्रॉटअप ऐसी है ठीक है ना, और अक्सर लोग वो जो ज्यादा गुस्से में
अनकॉन्शियसली, देखें जब तक बच्चा 8-9 साल का नहीं होता ना, उसे कुछ याद नहीं रहता कि वो 2 साल का जब था तो क्या करता था, जब 1 साल का था तो क्या करता था। तो बहुत सी चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं, और आपको याद नहीं होता और आपको पता नहीं होता, इस वजह से आता है। आप चीज़ों को निगलेक्ट इस वजह किसी आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आता है ना, तो आप उसे फेस करने के बजाय उसे, जैसे अक्सर घरों में होती है ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो बात हो जाती है, तो अक्सर हम देखते हैं कि जो जो

सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो हर इंसान आजकल ढूंढता है, ये ढूंढता है कि बस मैं चुप रहूं, कुछ ना बोलूं, ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं आपकी ब्रेन डेवलपमेंट से, आपकी बचपन में किस तरह की आपकी मेजरमेंट आपको लगता है कि जी असली है, कोई करना है।

0: सबको बहुत सबको थैंक यू नई टेलर ने कहा नाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रजा साहब को सलाम भेजा है और कवल यहाँ से कहा है वाओ ग्रेट, थैंक यू कवल, बहुत प्यारे प्यारे से इमोजीज भेजे, थैंक यू कवल। जी मजी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम,
1: वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का फजल करम है बेटा, आप कैसे हैं?
0: हाँ जी ठीक ठाक खान बाबा।
1: असल में मेरी पोती का भी नाम है ना वजीया।
0: अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक हो
1: गया, ये बात है। अच्छा बेटा बात ये है,
0: देखिए मेरा नाम तो आपको तो कभी नहीं भूलेगा है ना
1: जी, तो आप ही हमारी पोती हैं बेटा।
0: चले जी शुक्रिया बहुत बहुत।
1: माई एज इज 77 इयर्स एगो, तो इसमें आप ही हमारी पोती हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं।
0: चले जी बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा, क्या कहना चाहेंगे?
1: कहना ये चाहूंगा, आपने पहले टॉपिक छेड़ा ना दोस्ती का।
0: जी जी बिल्कुल
1: ठीक है, आज से 50 साल पहले दोस्ती जो होती है वो कंफर्म्ड होती है कि दोस्ती है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: 80 के बाद 3-5% 2000 के बाद 0.5% दोस्ती
0: होती है।
1: बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप अपने बहन भाइयों से दोस्ती करें ताकि जो आड़े वक्त में आपको आ जाए और आपकी मुसीबत और मुश्किलात को हल करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो तीसरी बात ये है, ये जो बच्चे वालदैन है खासकर वाला मोहतरिमा,
0: जी जी
1: आजकल जो बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं,
0: जी जी जी जी,
1: ये वीकेंड उनके लिए बड़ी हेडेक है। वो हेडेक पूछो क्यों हेडेक है, कभी फलां दुकान कभी फलां दुकान, ये रेडीमेड वो रेडीमेड, ये रेडीमेड ये भाई ये पेन की एक जो है ना पांचा ऊंचा है एक पांचा नीचे है।
0: वाह जी वाह, आप
1: भाई ये रेडीमेड जो है ना इसका जो है एक कलर जो है वो कॉलर छोटा है और एक कॉलर ये कान तक पहुंच गया है। ओके बेटा
0: आपने मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बिल्कुल शुरू कुछ कॉल क्या चल रहा है,
1: मैं बेटा वजीर का प्रोग्राम सुनता हूँ।
0: चले जी थैंक यू वेरी वेरी मच,
1: स्टार्ट से लेकर एंड तक अल्लाह ताला आपको अपनी मान में रखे, हमारी दुआएं।
0: जी शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी अल्लाह हाफिज। अच्छा जी तो खान बिल्कुल सही था, दुनिया जो है ना बहुत तेजी से बदल रही है कि हमें खुद आइडिया नहीं होता कि किस तरह जो है ना जो दोस्तियां हैं फौरन से बदल जाती हैं, आपको पता नहीं चलता कौन इंसान जो है आपके साथ बस मतलब रखे हुए था कि मतलब ख़त्म, काम ख़त्म, दोस्ती ख़त्म। तो ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं तब जाके आई जब मेरे अम्मी अबू इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है ना, उससे पहले उनके अम्मियां भी यही कहती थी ना कि नहीं, जैसे सबको यही लगता था कि ज्यादा सबका एक कॉन्सेप्ट होता है कि दोस्त बस ना जो इंसान ज्यादा सही इंसान नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए आपको शुरू से कहा जाता था तुम्हें कम उठो बैठो, कम टाइम दो, कम काम करो। और मैनी ईयर्स बैक जब मैं स्कूल में हुआ करती थी या कॉलेज में थी तो तब ये ट्रेंड भी नहीं होता था, इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे कि आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रह सके। अब तो सारे दोस्त जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जिस वजह से ना आपको आर्टिफिशियल दोस्तियां रखने का भी ना मौका नहीं है ना, दी हमने उसके साथ बात नहीं करनी, दी हमारी दोस्त नहीं है। ऐसे होता था ठीक है। तो अभी वो आपके साथ आपकी दोस्ती नहीं हुई है, मतलब के लिए आपके साथ हेलो

0: Welcome back. This is your. तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8447 1। हमारे साथ हैं एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम। वेलकम टू द शो।
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल वजीए ठीक हूँ। आप कैसी हो?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगी?
1: हाँ मैं ये कहूँगी, वो क्या कहते हैं, क्या किसी ने कहा है, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता।
0: बिल्कुल।
1: हम जो है ना, दोस्तियाँ तो बना लेते हैं लेकिन उनको मतलब अधूरियाँ छोड़ देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: लेके नहीं चल सकते।
0: बिल्कुल,
1: तो दोस्त बनाए, अच्छे बनाए, जो सारी जिंदगी आपके साथ चले,
0: चले।
1: और मुश्किल वक्त में काम आए, अगर आपका कोई मसला है, कोई मुसीबत परेशानी आ जाए तो आपका साथ दें, आपके साथ साथ दें, आपकी मदद करें। ये नहीं कि मुश्किल वक्त दोस्त जो होते हैं ना छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं सब दोस्त।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो दोस्त वही होता है, उसे वही दोस्तों कहा जाता है कि जो मुश्किल वक्त साथ दे
0: दे जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो यही बात है।
1: तो जबरदस्त हो, बहुत ही अच्छा प्यारा शो कर रही है।
0: थैंक यू
1: जी। तो अगर हो सके ना कोई पुराना भी आप सदाधार भी प्ले कर।
0: हाँ हाँ हाँ, बताए जरूर, मैं कोशिश करूंगी। बताए कौन सा आप गाना रिक्वेस्ट करना चाहती है?
1: मैं फिर अब मुझे शो कर रही है।
0: थैंक यू
1: जी। तो अगर हो सके ना कोई पुराना भी आप सदाधार भी प्ले कर।
0: हाँ हाँ हाँ, बताए जरूर, मैं कोशिश करूंगी। बताए कौन सा आप

0: सारे रेडियो के पास है और आपका शो सुन रही हूं।
1: चले जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। ठीक है, तो मैं सॉन्ग प्ले करूंगी क्योंकि पीछे उनकी बरसी भी गुजरी है। ठीक है,
0: ठीक है, आप जो भी करोगे अच्छा ही प्ले करोगे।
1: चले जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके जी,
0: अल्लाह
1: हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये भी हमारे बहुत प्यारे, बहुत ही स्वीट अंदाज में कॉल करती है और उनके जो अल्लाह हाफिज है ना, वाह क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
2: अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाह बरकातुह।
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से?
2: मैं कमल नाज बात कर रही हूँ।
1: अच्छा जी, कमल कैसी?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं जी, हाँ आप कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ,
2: बहुत अच्छा, बहुत प्यारा शो हमेशा की तरह।
1: थैंक यू
2: जी, बहुत प्यारी बातें। और मैं आपके टॉपिक पे ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी इंसान के ऊपर मुश्किल वक्त आता है ना, तो फोन के रिश्ते भी ना हमें जवाब दे देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: वो भी काम नहीं आते और अल्लाह ताला वहाँ से मदद भेज देता है जहाँ से हमें कभी उम्मीद भी नहीं होती।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: और कोई गैर हमें अपना बन के दिखा देता है। और अगर रिश्तों में कोई अनबन हो भी जाती है, गलत फहमी हो भी जाती है, तो मैं कहती हूँ कि बात करो और उसको सुलझाओ, खामोश होके एक साइड पे नहीं हो जाना चाहिए, मतलब को सुलझाना चाहिए, उनके बात करने से ही तो बात बनती है।
1: और जितना देर आप चुप कर जाते हैं ना, यही मैं बात कर रही थी कि आप चुप कर जाते हैं ना, कि मेरा न्यूट्रल रहना बेहतर है, बस मैं चुप रहूं और कोई बात ना करूं, उससे ज्यादा खराबी पैदा होती है।
2: हाँ जी, तो ये मैं कहूँगी कि अगर आप किसी भी रिश्ते में आप हैं ना, कोई भी आपका अपना कोई पराया कोई फोन का रिश्ता है, तो अगर आपके दरमियान में कोई अनबन है ना, तो बात करो, उसको हल करो, उसका मसला ढूंढो कि वो क्यों हुई है, कि क्या वजह है, ये खामोशी क्यों है, ये नाराजगी क्यों है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इसके साथ साथ ना वो बात भी बिल्कुल सही है। और आजकल की जो हमारी न्यू जनरेशन है ना, वो तो रिश्तेदारों से बहुत ज्यादा बहुत पीछे पीछे ही रह, तो ऐसा
2: जी, बस थोड़ा ये अब थोड़ा सा होता है ना कि ये आजकल फास्ट दौर है और हर कोई ना अपने आप में मगन रहने वाले लोग हैं।
1: हाँ।
2: और वो बात नहीं रही कि रिश्तों को पहचानना, देखना कोई हमारा बड़ा है कोई आया गया है, और कुछ बड़े भी कुछ ऐसे होते हैं ना कि वो बात वो बड़ों में भी नहीं रही जो पहले बड़ों में होती थी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो मैं यही कहूँगी कि रिश्तों की कदर करो, इज्जत करो, ये रिश्ते बहुत कम मिलते हैं और बहुत नसीबों वालों को मिलते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: और मेरी तरफ से तमाम लिसनर्स को बहुत इज्जत एहतराम के साथ सलाम, और मेरे शमसी ग्रुप वालों को भी सलाम, सेहत तंदुरुस्ती की दुआ और आपके लिए भी खुसूसी दुआ। अल्लाह हाफिज़।
1: चले जी, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। कमल नाज बहुत कम कम हमें कॉल करती है ना, तो आज उन्हें बहुत
2: ना आज मिल गई ना, मिलती नहीं है ना।
1: अच्छा चलो, ये तो अच्छा हो गया। अच्छा जी, ये थी कभी आपने सोचा भी थोड़ा होगा, लेकिन होता है। तो जैसे कि हम शुरू थी, लेकिन जब वो दोस्त हुए थे मैं अगर कह भी देती थी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं आ रही है, तो वो घर आ गई कि चलो हम खाना

तो ऐसे होता है ना, कोई बहुत क्लोज रिश्ता आपसे दूर चला जाए तो आपको में रहते हैं थोड़ी देर तो

0: Did you do it? अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
1: थैंक यू, बड़ी मेहरबानी. आप सुनाओ, आपसे क्या हाल है?
0: बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसे हैं? आप कोयटा से?
1: बिल्कुल कोयटा से मलाखिल बात कर रहा हूँ. आपकी शाम सुनने बहुत अच्छा लग रहा है.
0: चले जी, शुक्रिया बहुत बहुत. क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल आती है आपकी शो भी माशाल्लाह जबरदस्त. आपने कुछ रिश्ते का इसी तरह बात कर रहा था.
0: जी जी जी जी.
1: अभी ये जो है हमारे रिश्ते, हमें सिर्फ मतलब तक हमें यूज नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि जब रिश्ते होगा तो आपकी जिंदगी वगैरह सब कुछ होएगा. अभी
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है.
1: कुछ लोग जो हम लोग मतलब तक होता है, जैसे हम लोग मतलब होता है हम लोग रिश्ते को याद कर देते, जैसे मतलब खत्म हो जाए तो फिर हम रिश्ते को भूल जाते हैं. बिल्कुल गलत बात है.
0: आपके कुछ हैं कोई पक्के दोस्त हैं आपके?
1: हाँ,
0: कोई कहते हैं ना कोई बहुत पक्के दोस्त हैं आपके?
1: बिल्कुल है आपके.
0: अच्छा अच्छा, तो फिर उन
1: बिल्कुल अच्छे दोस्त भी आपको सुकून जो आयात मिला खेल हिस्मत मिला खेली है हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते.
0: अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है क्या बात है. ये भी
1: बिल्कुल.
0: चलिए जी, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया.
1: अभी बहुत ज्यादा प्यार अपने. और बस अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे दोस्ती हो चाहे रिश्ता, हमें मतलब तक नहीं होना चाहिए. हमें एक दूसरे को दुख सुख में हमेशा शेयर आना चाहिए. अच्छा दोस्ती जब होगा तो भी अलग एक नियामत है.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने. चले जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़. ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मला खेल. और हमेशा बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, जैसे मैं कह रही थी पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी आपके पास वापस अट्रैक्ट होगी. ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव. अभी एक जबरदस्त ट्रैक प्ले करने

0: वेलकम बैक, दिस इज योर डेज जी। हमारे साथ एक कॉलर। अस्सलाम
1: जी। अस्सलाम।
0: वालेकुम।
1: हाँ शुक्रिया, माशाल्लाह आप ही अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, बहुत अच्छा है। अब्दुल हमीद फरुखाबाद हूँ।
0: जी जी जी बिल्कुल पहचान। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। क्या कहना
1: काफी, मैं कहना चाहूंगा साढ़े बुजुर्ग जेडे चल गए दुनिया को, वो ये कहते होंगे भी दोस्ती उस बंदे ना रखो जेड़ा इज्जत का साझा हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: हां जो भी किसी के घर जाओ ना दरवाजा खड़का दे, ਬਿਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਾਚੂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਨਿਆ ਹੋ ਜਾਣ ਕੱਪੜਾ ਲੈ
0: ਲੈਣਾ।
1: ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੰਨ ਵੰਨ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਜਾ ਵਾ, ਸਲੀਮ ਟੇਲਰ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਨੇ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ,
1: ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਠਾਠਾ ਆਇਆ ਹੁਣ।
0: ਚਲੇ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ,
1: ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਕਦੀ ਦੇਖੋ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਕਦੀ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਦਿਲ ਗਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਲਿਖੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਨ ਵਨ ਤੇ ਕਾਲਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇਹ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
0: ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। जी सर, कुछ कमेंट शामिल कर लेते हैं आज। वेरी वेरी मच, और कहते हैं इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साइन तबसम ने मैसेज किया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मैडम आसिम, मैडम आसिम साहिबा, वजीहा आसिम साहिबा, तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बात करने का अंदाज भी मुनफरद है, अल्लाह आपसे राज़ी हो, सलामत रहो, बहुत ज़बरदस्त शो जा रहा है, मैं पेरिस फ्रांस में आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, क्या बात है। सज्जाद अली का कोई सॉन्ग लगा दो, आपको और सब सुनने वालों को, आपकी पूरी टीम को मोहब्बतों भरा सलाम और दुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा साइन तबसम कि आप पेरिस में बैठ के मुझे सुन रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है आपको शो पसंद आया, और आई गेस आपने पहली दफ़ा शो में मैसेज किया है, तो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रेहाना खान ने हमें मैसेज किया है, रेहाना खान बखर से बहुत प्यारे प्यारे से हार्ट्स भेजे हैं, और कहती हैं, और एक और मैसेज किया है, उसमें कहा है उन्होंने, अस्सलाम वालेकुम, मैं रेहाना खान बखर से, वेलकम टू द शो, थैंक यू रेहाना। मोहम्मद हफीज़ रहमान बखर से उन्होंने हमें कहा ईद का, जनूबी बखर से, और सबको सलाम कहा, अब्दुल हमीद बर्फी वाले, एहसन खान लाहौर से, एम रज़ा चौधरी मुल्तान से, दुलिया सीनाज सकर्दू से, इकबाल मेहदी सकर्दू से, इकबाल मेहदी भी हमें शो सुन रहे हैं, मुझे ज़रा बताना सकर्दू का मौसम कैसा जा रहा है, प्लान कर, और ये जो सकर्दू

0: ही प्लान बना लेते हैं आने का, और उसकी जो बहुत बहुत ज्यादा है फिंजास कर दू मेरी, क्या ही बात है यार, स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़ देता है, क्या करूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो।
1: अस्सलाम रिया बेटा, आपको और तमाम सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम,
1: मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ, सलमाबाद लाहौर से।
0: अच्छा मोहम्मद सलमान भट्ट, आपने पहले भी शो में कॉल किया?
1: नहीं नहीं, मैंने पहले भी आपसे बात हुई है मेरी।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अब आपका नाम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने एंट्री इतनी अच्छी मारी है।
1: मैं आज ना सोच रहा था कि वो बचपन में जो पढ़ी है ना ट्राई अगेन कहानी, वो बड़ी काम आती है।
0: बिल्कुल,
1: बड़ा हौसला रहता है। दूसरा ये बात क्या थी कि बेटा रिश्ते तो कायम रखने चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ जो आपकी मोहब्बत खलूस और चाहत को भूल जाए ना, आप भी कोशिश करें उसे बुलाने की।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मोहब्बत और चाहत को भूल जाते हैं ना जो लोग, सब लोग ऐसे होते हैं, फिर आप भी कोशिश करें उनको बुलाने की,
0: बुलाने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए जितनी देर आप
1: यार मैंने ये किया था वो क्यों नहीं कर रहा, तो वो उसका नेचर ही ऐसी थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: मैंने बेटा एक देखे, मैंने एक बात सोची, मामूली सी एक बात है, आप किसी को कहें ये एक कोई ग्लास है, आपने टेबल के कोने पे नहीं रखना, दरमियान में रखना है, वो 40 साल गुजर जाते हैं वो कोने पे ही रखते हैं। उसके दरमियान में नहीं रखनी, ये आप तो नहीं जाती लोगों की, तो ये बस जो जैसा है उसको अल्लाह बस हदायत दे, हमें भी हदायत दे सबको।
0: जी जी बिल्कुल, ठीक है ना,
1: खुद ना किसी के साथ बुरा करें।
0: बिल्कुल,
1: ये ना सोचिए वो क्यों ऐसे करता है, वो करता है जो करने दे। खुद हम हैं, चाहिए हम किसी के साथ कोई ऐसी बात ना करें कि किसी का दिल
0: दुखे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव रखिएगा।
1: अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का हर चीज, अल्लाह ने बहुत नायतें उसकी, और आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है, मैं सुनता हूँ।
0: थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और आप जैसे जो पॉजिटिव ऐसे जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, जैसे आप पॉजिटिव बातें करें कि लोग जैसे भी
1: यही कोशिश की है किसी को ना कोई नुकसान ना दें, किसी का दिल ना दुख जाए।
0: क्या बात है क्या बात है,
1: अपना दिल दुखता था, अब सोचना छोड़ दिया है कि अब ठीक है, वो कुछ जैसा भी है जैसा भी।
0: बहुत बहुत अच्छा किया आपने, और सलमान भट्ट आपने ऐसे ही कह करना है, ठीक है ना, आपने किसी के ठीक है ना खुश रहे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया, ठीक है ना। चले थैंक यू अल्लाह हाफिज। तो जी आपके दिल में कुछ भी है, जरूरी नहीं है कि आपने ना बस एक ही चीज पे स्टिक रहना, ठीक है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, और किसी के साथ कुछ बात कर अगर आप कर लेंगे ना तो आपका दिल हल्का, और सबसे बड़ी बात कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ खड़े हैं, तो आप अपने आप को भी ट्रेस आउट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही रिहाना खान का मैंने मैसेज शामिल कर लिया था, चलिए एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, जी जी जी हेलो, हाँ जी दोबारा बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी हाँ जी बताए, ठीक है
2: दो तीन चम्मच बेसन के डाल देने, डाल दे और बड़े प्यार से उसको ना पलट गई, ये शायद थोड़ी पक जाएगी ना, तो इसको थोड़ा पलट देंगे ना, तो ये ना बेसन है ना रोटी के साथ पक जाएगा। तो इसको आस्ता आस्ता घुमाना शुरू कर दे, आस्ता आस्ते पकाए, तो ये ना बड़ी मजे की बेसन वाली रोटी बन जाएगी।
0: क्या बात है, ठीक है,
2: उनको पसंद है ना चटनी बनाई है। तो बेसन का हलवा एक पाव बेसन ले ले, तो लाल कर ले, ज्यादा लाल नहीं करना है, दो तीन लाठियां डाल,
0: इसकी कॉल जो उसमें कुछ कॉल ड्रॉप हो रही है। चलिए जी आप

0: वेलकम बैक, दिस इज़ योर दोस्त योर होस्ट आरजे वजीहा आसिम। आप सुन रहे थे एक ज़बरदस्त ट्रैक अदान ढोल की आवाज़ में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो ये थी फरी जी, हमें बहुत ज़बरदस्त सी उन्होंने रेसिपी शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी हमारे साथ मौजूद है एक और कॉलर, है वी गो। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल है वजीहा
0: जी? जी बिल्कुल ठीक ठाक, तुम कैसी हो? वेलकम टू द शो।
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक, मैं साजिदा बात कर रही
0: हूँ। हाँ साजिदा, पहचान लिया, कैसी हो?
1: हाँ जी मैं ठीक ठाक, जबरदस्त शो ना, इतना मजा आ रहा है बहुत ज्यादा।
0: थैंक यू थैंक यू, क्या कहना चाहूंगी, जल्दी जल्दी से टाइम बहुत कम है।
1: जी मैं दोस्ती के बारे में, टॉपिक के बारे में कहना चाहूंगी, जो मुंह पे हमारे मीठे होते हैं ना, वही हमें बाद में वो तंग मारते हैं। हर चेहरे के पीछे ना दूसरा चेहरा होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: यकीन करना, इंटरेस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। जिससे हम ज्यादा यकीन करते हैं वो हमें ना,
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो है ऐसा तो है ऐसा तो है। चलिए जी, थैंक यू आपकी कॉल के लिए। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। हम ये थी हमारी बहुत प्यारी सी बहुत अच्छी सी कॉलर। तो यहाँ पे मैं गाना प्ले करने जा रही हूँ जो कि हमें फरमाइश की थी साइम तबस्सुम ने सजाद अली की आवाज़ में, है यू गो। season 5.

जी शमीम, आप एक की फरमाइश पे नू झा की आवाज़ में एक ट्रैक।

0: जी वेलकम बैक. ये जी जी आज लिसनर्स ने जो जो फरमाइश की थी मैंने कोशिश की है कि मैं पूरी कर सकूं. और प्रोग्राम का टाइम तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंचने को है. एक कॉल ले लेते हैं जल्दी से. अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हाँ जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल.
1: राजू के ने पोते का नाम सुबह मैंने रखा था अहमद.
0: क्या बात है,
1: बहुत सारी दुआएं उनके लिए. अल्लाह पाक उनके बेटे को सेहत वाली जिंदगी दे, लंबी वाली जिंदगी दे.
0: आमीन आमीन आमीन.
1: आपके लिए दुआएं, आपके लिए भी दुआएं. अल्लाह हाफिज ईमान अल्लाह वसीम अहमद भाई के लिए भी बहुत सारी दुआएं. अल्लाह हाफिज.
0: अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी. और हमें मैसेज किया है कि जी आप दो शो क्यों नहीं करती जी. ये मैनेजमेंट जो है ना जल्द ये डिसाइड करेगी कि यू नो वी हैव टू फॉलो द स्केड्यूल. तो आई होप आप सबकी फरमाइशों को जो है ना रखा जाएगा नज़र में. और प्रोग्राम का टाइम अपने इख्तिताम को पहुंचता है. अपना बहुत ख़ास ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और अपने प्यारों का स्पेशली ख़ास ख़ास ख्याल रखें. इंशाल्लाह सांसें चलती रहीं, ये दिल धड़कता रहा. तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.

FM 101, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
1: 101 FM।
2: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
1: 101 FM।
3: This is FM 101.
0: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: ہمیں یہ کہتے نہیں سنا ہوگا ان کے علاج معالجے کے حوالے سے ہم نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ جی جس سے یہ تاثر قائم ہوا ہو کہ ہم ان کی صحت کو لے کے کوئی طنز کر رہے ہیں یا اس پر کوئی ایسی جملے بازی کر رہے ہیں. تو یہ ہر قیدی کا حق ہوتا ہے کہ اس کو صحت کی جو سہولیات ہیں, میڈیکل فیسلٹیز ہیں, وہ فراہم کی جائیں آئین قانون کے مطابق, اور وہ ان کو بھی فراہم کی جاتی رہی ہیں, کی جاتی رہیں گی. ہم کر رہے ہیں, پہلے بھی کر رہے تھے, اب بھی کرتے رہیں گے. اور یہ ایک حق ہوتا ہے جو ملتا ہے ہر قیدی کو ملتا ہے. مگر کیا کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل اسپیسیفائی ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس پہ کل وزیر قانون نے واضح کیا کہ ایک نظر ثانی کی درخواست دائر ہوگی. کیا ہر قیدی کو یہ حق حاصل ہے؟ اس حوالے سے ایک قانونی جو ہے وہ معاملہ ہے, اس پر نظر ثانی کی درخواست دائر ہوگی. مگر ہماری قیادت نے, ہم نے کسی ایک دن بھی ان کی صحت کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی. اور یہ کسی کے ساتھ بھی معاملہ صحت والا ہو سکتا ہے, مگر اللہ بڑے بول سے بچائے, اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا چاہیے. مجھے وہ یاد آتا ہے واشنگٹن میں کھڑے ہو کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ میں جا کے گھر کا کھانا تو بند کروں, میں دوائیاں تو بند کروں, اور مختلف جلسوں میں کہا کہ جی میں دیکھتا ہوں ان کو, اور یہ جب جیل جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, بڑے بول سے بچنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ہر وقت رحم مانگنا چاہیے کہ آپ جو تانے دیتے تھے اور جو سیاست کرتے تھے صحت کے اوپر, آج جب ایک کورٹ کا آرڈر آیا ہے تو ہماری جماعت کے مختلف لوگوں نے کل اس پر بات کی کہ بالکل پرائیویٹ ہاسپٹل کے حوالے سے ایک نظر ثانی کی درخواست دائر ہوگی, مگر علاج کے حوالے سے بالکل کوئی ابہام نہیں ہے. حکومت کا ایک ایگزیکٹو کا یہ فنکشن ہے کہ قیدی کو جو بھی جیل مینول کے مطابق صحت کی سہولیات ہیں وہ فراہم کرنی ہیں, وہ ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. اس میں کسی قسم کا نہ ایمبیگوٹی ہے نہ کوئی ابہام ہے, وہ کرتے آئے ہیں, کرتے رہیں گے. اور یہ جو بانیوں, بہت سارے تحریک انصاف کے بانیوں میں سے ایک بانی ہے, ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ یہ سیاست اس چیز میں نہ آئے. اور کورٹ نے بھی یہ کہا, ایون ملاقات کے حوالے سے, ملاقات پہلے ہوتی رہی, آپ کو یاد ہوگا کہ عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی, ہم یہ کہتے رہے کہ سیاست نہ کریں, سیاسی بیان بازی نہ کریں. کورٹ نے بھی یہ قدغن لگائی کہ سیاست نہ کریں. تو صحت کا معاملہ سیاست سے الگ رہنا چاہیے, اور حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھاتی رہے گی جو نبھا رہی ہے. تو میں طلال صاحب کو ریکویسٹ کروں گا مزید اس پہ روشنی ڈالیں.
1: بہت شکریہ جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ جس ادارے کا کام ہے اسی نے یہ کرنا ہے, کسی آرم ٹویسٹنگ سے, کسی دھمکی سے, ڈکٹیٹ کرنے سے, سڑک بلاک کرنے سے, جلسہ رکھنے سے, حملہ کرنے سے, نہ ملاقات ہوگی نہ کچھ اور ہوگا. اور آخر کار وہی ہوا. ہم نے بالکل حکومت کا موقف بڑا کلیئر تھا کہ جیل حکام جیل مینول کے تحت, یا پھر عدالت اس بات کا تعین کر سکتی ہے کہ ملاقات کب اور ہونی چاہیے اور کب نہیں ہونی چاہیے. وہی ہوا, یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کا حلف اٹھایا ہوا ہے. یہ وہی جج صاحبان ہیں جن کی سلیکشن کی جب میٹنگز ہوئیں جوڈیشل کونسل کی, تو اس میں پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر کے جو گفتگو کی وہ سب کے سامنے, نہ عدالت کو مانتے ہیں, نہ جج کو مانتے ہیں, نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں. اسی پارلیمنٹ کی گئی ترامیم اور اس سے بننے والی عدالت اور اس میں لگنے والے جج صاحبان, جو کہ 26ویں 27ویں ترمیم کا جنہوں نے حلف اٹھایا, آج انہی کے فیصلوں کو کہہ رہے ہیں روشنی کی کرن ہے, انصاف کا بول بالا ہے, وکٹری کے نشان بنا رہے ہیں, مٹھائی بانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سب کچھ بہت اچھا ہے. یہ اتنے چھوٹی سی ایک فیصلے پہ, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر قیدی کا حق ہے, ہر پرزنر کا حق ہے کہ اس کو علاج اور اس کو رہنے کی صحیح سہولت ملنی چاہیے, یہ اس پر ان کا. اس کے بعد یہ بار بار دیکھیے, ابھی تارڑ صاحب نے کہا کہ ہماری قیادت تو نہیں کرتی اس پر ڈسکشن کی ان کی بیماری پر. اور آپ کو یاد ہے कि दिन रात इनके स्पोक्स पर्सन हमारे कायदीन की रिपोर्टें लहरा के कहा करते थे कि ये देखो इसमें फलां चीज़ कम है कि ज़्यादा है। ये कोई एक एग्जाम्पल दे दें वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेकर हमारे किसी सियासी कारकुन तक के किसी ने इनकी रिपोर्ट्स को लहराई हो या पढ़ पढ़ के बताया हो। इनकी कम ज़र्फ़ी का ये आलम था कि बेगम कुलसूम नवाज को देखने के लिए कि वो बीमार हैं और हस्पताल में दाखिल हैं वहाँ बगैर इजाज़त के घुस गए थे वीडियो बनाने। हमारी क़यादत ज़र्फ रखती है, किरदार रखती है, किसी रिपोर्ट किसी चीज़ पर बहस ना की है ना करेंगे। इन्होंने क्या किया था, इनके स्पोक्स पर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, इन्होंने हर जगह उसे डिस्कस किया, कैबिनेट में डिस्कस किया, और फिर इस जिसको आज रिलीफ मिला है जिस कैदी को, इसने अपने डॉक्टर्स भेजे, जिन डॉक्टर्स ने मियां नवाज शरीफ की रिपोर्ट बनाई उनको उठाया गया, उनको इंटेरोगेट किया गया, उनके अकाउंट देखे गए, उन पर तशद्दद किया गया कि कहीं इसने गलत तो नहीं बनाई, और इनके अपने डॉक्टर्स ने जब कहा और उसके बाद कैबिनेट में फिर ये ठट्ठा लगाते हैं, फिर बीमारी को एक कमज़ोरी समझ के उस पर सियासत करना, ये ना हमारी क़्यादत का ज़र्फ है और ना हमारे कारकुनों का। इसके बाद एक और अहम बात जो अदालत ने बड़े नमाया अंदाज में कही, इनका किरदार देखते हुए, इनका सियासी कंडक्ट देखते हुए कि आप सियासत नहीं करेंगे, नहीं तो अदालत को कहने की क्या ज़रूरत थी, उन्हें पता था कि ये करेंगे, उन्हें पता था कि अब इनके पास इस्तीफों के बाद असेंबलियां तोड़ने 26 नवंबर 9 मई सब कुछ करने के बाद एक ही हथियार रह गया, हमदर्दी कार्ड, मेरे बच्चों को नहीं मिलने देते और मेरी बीमारी हमारी जान को खतरा है। उन्होंने कहा आप सियासत नहीं करेंगे और फिर मुझे बताए आप कौन सियासत कर रहे हैं, NRO से कौन जोड़ रहा है इस कल के फैसले को। इस फैसले को उन जज साहबान का शुक्रिया अदा करने की बजाय NRO से जोड़ रहे, गलत फहमी में है ये, कभी खुद ही कहानियां बनाते हैं, पहले हस्पताल जाएगा फिर बनीगाला जाएगा फिर नथिया गली जाएगा फिर पता नहीं कहां जाएगा, ये वापस वहां ही जाएगा जहां से आर आया है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप रिपोर्ट्स मुलायजा करें जो पेश की गई हैं, मैं उस पर बात नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर जवान की रिपोर्टें इसी तरह की, बाकी हर एक का हक है, अदालत ने अगर फेवर दी है तो अच्छा किया ताकि इनकी तसल्ली हो सके, इनको बहाना ना मिले, ये इस अपने इस कैदी उसकी सेहत पर अपनी सियासत और उसको एजेंडा ना बनाएं। एजेंडा पाकिस्तान में अपनी हुक्मरानी को क्यों नहीं बनाते, क्यों KP में अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाते, क्यों नहीं बताते कि 17 साल हो गए हैं, 4 CM बदल दिए हैं, क्या दिया है, क्यों नहीं बताते कि पाकिस्तान को आपने क्या दिया था। एजेंडा ऐसा बनाते हैं कि लोगों की इनकी परफॉर्मेंस से हट जाए। और उसके बाद बार बार यहाँ पर कुछ हमारे ऐसे वीलॉगर साहिबान हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हैं जिनका काम ही इस पे चलता है कि कैदी की जान को ख़तरा है, वो ज़िंदा नहीं रहा, वो पता नहीं कहाँ चला गया, वो कुछ दिन से जेल में नहीं है, वो इस तरह लगता है जैसे उसके बेड के नीचे रहते हैं उस जेल के अंदर, और क्योंकि डॉलर कमाने हैं झूठ बोलेंगे, लोगों को ऐसे सनसनीखेज बातें करेंगे, वो इस बात को कह रहे हैं कि तरमीम कोई करवाई जाएगी जिसमें वोट चाहिए। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की लोगों को बेहतर गवर्नेंस देने के लिए पाकिस्तान के रियासती इदारों ने और पाकिस्तान के सियासतदानों ने बड़े बेहतरीन फैसले किए हैं, पहले भी माजी में भी और आइंदा भी करेंगे। हमारे रियासतों के में हमारे इदारों के सरबराह कोई मुनाफिक नहीं है, सारे लोग बड़े क्लियर हैं, सारे लोग बड़े दयानतदार, और उनके सामने एक ही चीज़ है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के मसाइल को हल करना। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बाकी तमाम अदारों के सरबराह सब लोग एक इकट्ठे मिलके कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान को मसाइल से निकाल रहे हैं। इस तरह की बातें करके अपने जज्बात का इजहार करके अपने आप किसी ना किसी तरह खुद से कहानियां बना के कभी NRO की कभी तरमीम की आप सियासत कर रहे हैं इसी बीमारी पे, अदालत के दिए गए फैसले पर आप कल से कर रहे हैं, इसकी कहानियां ना बनाएं, कोई कहानी नहीं इसके पीछे। इसके पीछे अदालत ने एक रिलीफ दिया, उस पर सारे लोग समझते हैं कि वो देने का इख्तियार रखती है और किसी को इतराज़ नहीं। और दूसरी बात, सियासत आप कहते हैं हम करते नहीं हैं, ये कहानियां बनानी भी छोड़ दें, यहाँ सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और ये बहुत देर इसी तरह ही आपको ठीक चलता हुआ नज़र आएगा।
0: और जिस तरह दलाल साहब ने कहा कि ये जिस तरीके से एक तासर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी ख्वाहिश तो ज़रूर हो सकती है मगर वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह कल वज़ीर कानून ने भी इस पर बात की, तो प्राइवेट हॉस्पिटल के हवाले से हुकूमत ये समझती है कि बिल्कुल नज़रसानी की दरख्वास्त दायर होनी चाहिए। एक प्रेसिडेंट जो है वो इस तरह का सेट अगर होना है तो ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि तमाम कैदियों को क्या वो हक हासिल है या नहीं है। तो इस हवाले से हम ये समझते हैं कि ये एक कानूनी और एक सेहत का मामला है, इस पर सियासत ना की जाए और इससे गुरेज किया जाए। बहुत शुक्रिया।
2: वफाक वज़ीर इत्तला नशरियात अताउल्ला तारड़ और वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी हम गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने सेहत के मामले पर कभी सियासत नहीं की। बानी पीटीआई स्टेज पर खड़े होकर अपोजिशन को ताने दिया करते थे, बानी पीटीआई की बीमारी पर भी सियासत की गई। वफाकी वज़रा ने कहा कि हमने बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से कभी कोई बयानबाजी नहीं की, हमेशा बानी पीटीआई को आयन और कानून के मुताबिक सेहत की सहूलियात फराहम की गई, आइंदा भी बानी पीटीआई को सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तला ने कहा कि फैसले पर नज़रसानी का फैसला एक आईनी इख्तियार है और इस पर मुस्लिम लीग नून और हुकूमत ने इस फैसले के हवाले से नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने के हवाले से फैसला किया है। यह थी पीटीवी ताजा तरीन
3: दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।
4: लेकिन अभी भी जरा यही बताते हैं, मेरी कुछ पीसीबी के लोगों से भी बात हुई कि उनकी इंजरी की नोयत इतनी

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: कल कुछ नहीं जे सोचना थे सोच गज ही आज बरस पे कल होना बस।
1: इमारतों की छतों की सफाई मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाए। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जा दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: हाय, दिस इज FM 101।
3: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
4: दिस इज
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101।
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: आइए सामीन, अब समाप्त फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोजाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
3: हम बयान करेंगे, पारा है चौथा और सूरह आल इमरान है और आयत मुबारक 179। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मा कान अल्लाह लियज़रल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैह हत्ता यमीज़ल खबीसा मिन अत्तय्यिब व मा कान अल्लाह लियुज़ल्लियकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशाउ फआमिनू बिल्लाहि व रुसुलिही व इन तुमिनू व तत्तकू फलकुम अजरुन अज़ीम। सदकल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिनायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मा मैंने नहीं, काना है, कान अल्लाह अल्लाह है, लियज़रल्मोमिनीना के छोड़े, लियज़रल्मोमिनीना के ईमान वालों को छोड़े, अला मान तुम उस पर जो तुम अलैह इस पर हत्ता यहाँ तक के यमीज़ल ख़बीसा मिन तय्यिब के जुदा कर दे नापाक से पाक। तर्जमा यूँ बना कि अल्लाह मुसलमानों को इस हाल पर छोड़ने का नहीं जिस पर तुम हो जब तक जुदा ना कर दे नापाक से पाक को। वह माँ कान अल्लाहकुम अलल गैब, और अल्लाह की शान ये नहीं कि आम लोगो हाँ अलल गैब के तुम पर गैब खोल दे, वला किन अल्लाह और हाँ अल्लाह यज तभी चुन लेता है, यज तभी चुन लेना मिन रसूल ही अपने रसूलों में से, मैं ये शाओ जिसे चाहे, फा आमिनू पस ईमान ले आओ, बिल्लाह अल्लाह पर व रसूल ही और रसूल पर, व इन तुमिनू और अगर तुम ईमान लाओ, व तब तक हो और डरो अल्लाह से रेजगारी करो, फला को मजरूम अजीम तो तुम्हारे लिए बड़ा अजर है अल्लाह ताला के यहाँ। तरी नात है ये, इसकी शान जिले के एक बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पैदाइश से पहले मेरी उम्मत मुझ पर अपनी सूरतों में पेश की गई, जिस तरह के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर उनकी औलाद, और हमको ये भी इलम दिया गया कि कौन हम पर ईमान लाएगा और कौन ना लाएगा। ये सुनकर मुनाफिकीन ने मजाक उड़ाया और कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन लोगों को पैदा होने से पहले काफिर और मुसलमानों का इलम हो गया था और हम तो उनके साथ रहते हैं, ज़ाहिर में मुसलमान बने हुए हैं मुनाफिकों ने कहा, और दिल में हम कुफर रखते हैं, इन्हें तो पता ही नहीं और आप हमें पहचानते ही नहीं। इस पर नबी मोहतरम ख़ातमुन्नबीयीन इमाम अल-अंबिया अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए मेंबर पर और आपने खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया कि लोगों का क्या हाल है कि हमारे इलम में तान करते हैं, आज से क़यामत तक जो कुछ पूछना है जाओ पूछ लो, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मुझसे सवाल न करो तुम, हम तुमको उसकी खबर ना दें। इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा खड़े होकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह मेरा बाप कौन है? फरमाया हज़ाफ़ा। फिर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े होकर अर्ज़ करने लगे, या हबीबल्लाह हम अल्लाह की रबूबियत पर और आपकी रसालत पर और इस्लाम पर राज़ी हैं, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप तुम बाज आओगे, और मिंबर से उतरे। यानी इस तरह से हमें पता लगा कि हालांकि ये पहले जब आका तशरीफ़ नहीं भी लाए थे तो ये कहा करते थे अलमाए यहूद कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तशरीफ़ ले आएँ तो हम उन पर ईमान लाएंगे और वो बशारतें देंगे। इन्हें सब कुछ पता था इतनी बड़ी हस्ती तशरीफ़ लाएगी, मगर जब तशरीफ़ लाए तो वो अपने ज़ाती मुफाद के लिए और मुकर गए। हमारे आका मौला अलैहिस्सलाम को क़यामत तक की हर चीज़ का इलम अता फरमाया अल्लाह ताला ने, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो चाहो वो पूछो, और ये वही कह सकता है जिसका इलम मुकम्मल हो। और इसी के हम लोग जो घर की कोठड़ी में छुप कर काम करें वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र से गायब नहीं, दुरूशी बराए रास्त पहुँचता है वहाँ, आका सुनते हैं। क्योंकि जब दुरूशी का तर्जमा अगर गौर से सुने तो हम बराए रास्त भेज रहे हैं, उन पर नहीं जो गुजर गए, नहीं मौजूदा तौर पे भेज रहे हैं और क़यामत तक मौजूदा तौर पे भेजेंगे, आका मौजूद हैं। क्योंकि अब्दुल्ला के वालिद हज़ाफ़ा ही हैं और ये तो एक बिल्कुल छुपी हुई बात थी। बाप तो वो होता है कि जिस नुतफा से बच्चा पैदा हो, उसको मालूम करना उस ज़ात की शान है जिसकी निगाह आलम के ज़र्रा ज़र्रा पर। और बात तो ये है कि जिन आँखों ने खालिक़ आलम को मेराज में देखा हो, وہ عالم کو کیوں نہ دیکھیں گے. تو اسی طرح فآمنوا, پھر ارشاد فرمایا کہ ہم جسے چاہیں یجتبی, ہم چن لیتے ہیں من رسل, اپنے رسولوں میں سے, میں یہ شاؤ جسے چاہیں, فآمنوا, بس تمہیں موقع ہے بڑا اچھا, فآمنوا, بس آمنوا, بس ایمان لے آؤ باللہ, اللہ پر, و رسل ہی, اور اس کے رسول پر, ہاں رسولوں پر, تمام رسولوں پر ایمان, وَإِن تُؤْمِنُوا, اور اگر تم ایمان لے آئے, وَتَتَّقُوا, اور واقعی تم ڈر کے رہے, فَلَكُمْ أَجْرُ الْعَظِيمِ, تو اس کا کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ملے گا تمہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین, صدق اللہ العظیم.
2: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ, مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستان عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں, جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے. خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں, وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
0: شکریہ, آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
4: ٹیون ان ٹو ون ابو ایف ایم 101. گیٹ ریڈی فار نان اسٹاپ ہٹس, اٹس بیک ٹو بیک انگلش بینگرز ایوری ڈے فرام 3 PM ٹو 4 PM only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101। सुनते रहिए FM 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: Hi, this is FM 101.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: हालात चाहे जैसे भी हो, तालीम का सफर रहे जारी। न पेट्रोल का खर्चा, न आने जाने की फिक्र। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जहां कहीं भी बैठे किसी भी वक्त अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, CSNIT, एजुकेशन मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दाखिले जारी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.vu.edu.pk विजिट करें या 1288 पर कॉल करें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तालीम कहीं भी कभी भी।
3: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों, स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें, जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो, ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
4: This is FM 101.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
2: Dang, dang, and a catch, cut, dang, dang, and a catch, cut, dang, dang, and a

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: 32 रुपए से ज्यादा की कमी आप देखेंगे ओगरा चंद लम्हों के बाद अपनी कैलकुलेशनों को हतमी शक्ल दे के अवाम के सामने लेके आएगा। और इससे हमारे वो काश्तकार दोस्त जो ट्रैक्टर चलाते हैं, जो ट्यूबवेल चलाते हैं, वो स्टूडेंट्स जो बसों के अंदर सफ़र करते हैं, उनकी तकलीफ को मदम करने के लिए यकीनन कुछ ना कुछ उसके ऊपर मरहम रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा फैसला किया जाएगा, मैं अवाम को उसकी भी यकीन दहानी करवा दूं। देखें, हुकूमत ने कोई इस मुश्किल जो माहौल बना हुआ है उससे किनारा कशी इख्तियार करने के लिए अवाम को बिल्कुल लावारिस नहीं छोड़ा। ओगरा रियासत का एक इदारा है जिसकी बुनियादी मकसद ये है कि वो अवाम के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाए, पर इसके साथ साथ वो हकूमत के जो जायज़ मुतालबात हैं, क्योंकि हर हकूमत चाहेगी सस्ते से सस्ता ईंधन, टैक्स की कमी और ये सारी चीज़ों को सामने रख के अवाम के लिए सहूलत पैदा करे, पर इन सारे मामलात को बैलेंस करके और जो ऑयल सप्लाई की चेन है उसके जो जायज़ मुतालबात हैं, इन सारे स्टेक होल्डर्स के सामने अपने हकायक लेके आए और एक जुडिशियस फैसला करे। यही निज़ाम नेपरा के अंदर होता है, यही निज़ाम जो आपके बाकी रियासत के जो रेगुलेटर्स हैं उनके ऊपर होता है और हम उनकी हर हिदायत के ताबे हैं। इसमें कोई किनारा कशी इख्तियार नहीं कर रहा, कोई आवाम को लावारिस नहीं छोड़ा। तो जिस तरह वजीर आजम साहब ने आवाम का दर्द रखते हुए ये बड़ी रिलीफ, और मैं एक दफा फिर रिफाइनरियों का शुक्र गुजार हूं, उन्होंने जंग के अंदर भी एक महीने के लिए खाम तेल की बिना के ऊपर अपनी प्राइसिंग को हमारे साथ उस पर मुतफिक हुए थे और आज भी वो इसके ऊपर हमारे साथ उन्होंने लब बैक का है और हम इसके जरिए अवाम को ये सारे का सारा फायदा मुंतकिल करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो वजीर आजम साहब ने मुझे हिदायत दी है, मैं खुद अपनी टीम के साथ कराची रिफाइनरियों के पास जाऊंगा, उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा और उनके साथ वो सारे काम जिनको हम 70-80 साल में तरतीब नहीं दे सके। रिफाइनरियों की अपग्रेडेशन की बात आती है, आप जानते हैं हमारे पास लागड़ रिफाइनरी हैं जो अच्छा जो सावर क्रूड होता है, जो गाढ़ा क्रूड होता है, उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकती, जिसकी वजह से हमें महंगा क्रूड खरीदना पड़ता है और आवाम को उसकी वजह से महंगा डीजल और पेट्रोल फराहम करना चाहिए। उनके अपग्रेडेशन के लिए भी तैयारी करेंगे और अगले चंद दिनों के अंदर वजीर आजम साहब की सरबराही के अंदर वो काम जो 70 साल में नहीं हुआ, पाकिस्तान की रियासत को मजबूत करने के लिए रिफाइनरी अपग्रेड का, और इसके साथ साथ जो हम बॉन्डेड स्कीम्स और अपने जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे खाम तेल को अपनी सरदों पे हम किस तरह महफूज कर सकते हैं बॉन्डेड स्कीम्स के अंदर, उसको भी ऑपरेशनलाइज करेंगे और अगली नस्लों के लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो पाकिस्तान की कमजोरियां उनको मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर इंशाल्लाह ताला हर करके जाएंगे। आपसे पूरा मेरा सिर्फ गुजारिश ये, थोड़ा सा तहम्मुल रखें, आपकी तकलीफ का एहसास है, इंशाल्लाह ताला जिस जिस तरह स्पेस निकलती आएगी अवाम के ऊपर इंशाल्लाह ताला वो सारे का सारा बेनिफिट जो है वजीर आजम साहब के वादे के मुताबिक, हदायत के मुताबिक मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो अता साहब आप अगर इस पर कुछ ऐड करना चाहें।
1: थैंक यू जी। वजीर पेट्रोलियम जनाब अली परवेज मलिक साहब, आज वजीर आजम साहब ने सुबह एक इजलास की सदारत की, उसमें वज़ीर पेट्रोलियम, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और तमाम मुतल्लिका हुकाम मौजूद थे। और उस इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने यह हिदायत जारी की कि ऑयल रिफाइनरीज के साथ बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात किए जाएँ और जो रिलीफ मुमकिन हो वो रिलीफ अवाम तक मुंतकिल किया जाए, क्योंकि डीजल की जो पैदावार है वो मकामी तौर पर उसका बहुत बड़ा हिस्सा, जैसा अली साहब ने कहा, वो मकामी तौर पे उसको रिफाइन होता है और प्रोड्यूस होता है। तो उसमें आज इंशाल्लाह ताला अभी ओगरा कुछ देर के बाद 32 रुपए कुछ पैसे की जो कमी है उसका ऐलान करेगा। वज़ीर आज़म ने ये खसूसी हिदायत जारी की कि मुज़ाकरात किए जाएं और बड़ी मेहनत की वज़ीर पेट्रोलियम ने इन मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए। और देखिए, वज़ीर आज़म को हुकूमत को इसका बड़ा इदराक है, एहसास है मुश्किलात का, और जो जंगी हालात पैदा हुए उससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर गईं, तो जब जब मुमकिन हुआ अवाम को रिलीफ मुंतकिल करने के लिए वज़ीर आज़म ने सब्सिडी भी दी, टारगेटेड सब्सिडी भी दी, 130 अरब रुपए की लागत से मुश्किल तरीन हालात में पेट्रोल की कीमतों को बढ़ने से रोका। तो ये

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: बनाने में मदद देने के लिए शोबा सेहत से हर मुमकिन तआवुन किया जाएगा।
1: जर्मनी ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया है कि वो गजा में फलस्तीनियों की शहादत पर गैर इंसानी बयानात और तबसरे करने पर इसराइल के कौमी सलामती के वजीर पर पाबंदी आयद करे।
0: भारत ने पाकिस्तान को पेश की इत्तला दिए बगैर बगलियार डैम के गेट्स खोल दिए हैं।
1: नौरोजा सिंधी थिएटर फेस्टिवल आज कराची आर्ट्स काउंसिल में शुरू हुआ।
0: पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला क्रिकेट टेस्ट लीड्स में जारी है।
2: दिस इज FM 101.1।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
4: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।
5: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो।
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन, एक घंटा।

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

dance music, and then dance magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: रात के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने यकीन जाहिर किया है कि अक़वामे मुत्तहिदा के साथ पाकिस्तान की करीबी शराकतदारी को मुसलसल फरोग हासिल होगा। नायब वज़ीर आज़म और मोरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा ने टेलीफोन पर बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा और कसीरु जहती उमूर पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा है कि तेल साफ करने वाले कारखानों ने डीजल की कीमतों में तकरीबन 32 रुपये फी लीटर कमी करने पर इत्तेफाक किया है।
2: This is FM 101.
3: मूसलाधार बारिश और शदीद झालावारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती है और खतरा बन सकती है। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
4: Hi, this is FM 101.
5: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
6: E-level with zero tuition fee, 100% future.
7: There's music, and then there's magic. One above FM 101.
8: Coming up next, RJ Talk. On your radio dial, keep it locked. Coming up next, RJ Talk. On your radio dial, keep it locked.

0: और राइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 10:48 और आज है जी 19 अगस्त 2026 के सिन FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आज डॉग्स एंड आई डोंट नो मुझे आज क्या बात करनी है। ब्लैंक, टोटली ब्लैंक, ये भी एक फील है वैसे। थैंक यू वेरी मच जी, जिन लोगों ने लाइव पे ज्वाइन किया और उन सबका बहुत शुक्रिया जी। आप लोग लाइव पे आए, मुझे मैसेज किया, और जिन लोगों ने पहली मरतबा सुनना शुरू किया है फॉर दैम आई कैन टेल, आप लाइव मेरी देख सकते हैं जी। फेसबुक पे सर्च करें RJ DOX डॉक्स लिखेंगे तो मेरी लाइव आ जाएगी, वहाँ पे आके आप कमेंट कर सकते हैं। और माइंथ्रापिस्ट आपका शुक्रिया, फिजा राजपूत आपका शुक्रिया, कवलनाथ साहब आप फरा हैं, और कौन है हमारे साथ, गुलाब हैं, थैंक यू वेरी मच जी। तबीयत नासाज लग रही, नहीं नहीं तबीयत में साज पूरा है, ऐसी कोई बात नहीं है। नासाज लग रही, तबीयत में साज पूरा है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। एनीवेज यू कैन कॉल मी 04221111 0411 1111 0001, आप इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। और अपने मोबाइल से मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है आपने। अगर आपके पास इंटरनेट की रसाई नहीं है तो आपने 101 लिखना है, राइट मैसेज ऑप्शन में जाके स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है, इसको भेज देना है 4471 पे, ठीक है जी। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही। आरजे ज़ुबिया शफीक आई हैं, कैसी हैं आरजे ज़ुबिया शफीक, आप खैरियत से हैं, ठीक हैं। ज़िमल है हमारे साथ, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। इकरा है, हम इसरा आलमगीर से सुन रही हैं, आपका बिल्कुल सलाम पहुंच गया जी, मेरे तक भी पहुंच गया, ज़िशान भाई तक भी पहुंच जाएगा। सैयद मोहम्मद अली ज़िया आए हैं, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। और माइंड थेरेपिस्ट, मैं फ़र्स्ट टाइम सुन रहा हूँ आपको, बड़ी बात है आपकी। अरबाब अली जी, चाहे तो शीशा बन जा, जी चाहे पैमाना बन जा, अच्छा है, बहुत अच्छा कलाम है। बीएच कलर सूट्स यू टुडे, थैंक यू वेरी मच सर, लव यू सर, लव यू। किसी ने तो तारीफ की मेरे पहने हुए रंग की। अच्छा, मेहर हैं, मेहर फातिमा हमें सुन रही हैं और सलाम करती हैं और कहती हैं मैं बिल्कुल ठीक नहीं, मैं वेन में इंजेक्शन लगवा के, सारे वेन में ही लगवाते हैं, और किधर लगना है, मतलब मसल में तो नहीं लगेगा, हाँ ताकत वाला लग जाता है। कोई नहीं, गेट वेल सून, हुआ क्या आपको। सना राजपूत है लाहौर से, इस्लाम आज खैरियत है, आपकी आवाज़ आज ठीक नहीं लग रही, मैं गला एक्सचेंज की था आज के सना। शाहजेब शाहू, इस्लाम के हवाले का सलाम। चांद, हाय अल्लाह जी चांद, ठीक है जी। हर शख्स ने परखा ऐसे, सारे इम्तहान हम पर फर्ज हों जैसे, आ हा वाह वाह क्या बात है। और सना राजपूत कहती हैं, और कब अच्छे बच्चे बन के टाइम पे आना स्टार्ट करेंगे, जब मेरे पास कोई ऐसी ताकत आएगी, जब मैं बच्चा बनने के काबिल हो जाऊंगा, तब मैं ज़रूर अच्छा बच्चा बन के टाइम पे आऊँगा। कॉल ले रहा हूँ मैं, टॉपिक मुझे नहीं समझ आ रही। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बड़ी मेहरबानी, कौन बोल रहे हो?
1: शुक्र आज फोन गलती नाल ही मिल गया, जा बस तुक्का ही लगा हैगा वा।
0: हां मिल गया, मिल गया।
1: आज ते पता नहीं 2 महीने बाद, पता नहीं 2 महीने बाद गल हो रही है। मैं अर्शद राही गल करदा पया, 115 जीम दे दयालगढ़ मिलत रोड ससलाबाद तो, मैं कहता नु याद ही कर लिए
0: सर। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: लेकिन अज लगदा ताडा गला खराब आ, जा अज तुसी किते ठंडा पानी पी लिया, जा कोई दावत खा ली अज।
0: आज आज मैं पूरा बकरा खा लिया,
1: पूरा बकरा
0: ही। नहीं वो एक्चुअली
1: अच्छा लगा है गल करके, अक्सर ही कॉल मिलाई दिए, लेकिन जदों कॉल मिलाई है उदों नंबर बिजी, उदों नंबर
0: सर। आज आज आज मैं करने है, मैं वैसे ही सोच रहा था आज मैं क्या ही बात करूं, चलें आप लोगों की मैं आज कॉल ही लेता हूं। आज डॉक्स वाइब्स ने हाय कहा, ओ बस कर दो माइंड थेरेपी, खुदा कलाम लो माड़ा, बस करो यार।
1: आखरी
0: बारी कदों रोए सी वैसे? आखरी बारी कदों रोए सी?
1: इंसान ते रोंदा ही रहिंदा हैगा, जदों दिल करदा ओदी बंदा रोंदा
0: पैंदा। केड़ी गल ते रोए सी?
1: ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗੁਲਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਫੇਰ?
0: ਚਲੋ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ।
1: ਓਹੋ ਪਿੰਡ ਵੇ ਤੇਰਾ ਓਹੀ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ, ਓਹੋ ਪਿੰਡ

0: हेलो जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:19 और आज है जी 19 अगस्त 2026 के सिन FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, जिसमें आपका मेरा साथ होता है बुध और जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। माजबीन ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम आरजे डॉक्स। वालेकुम अस्सलाम। लगता है रोटी पानी करके ना आप 11 बजे फारिग होती हैं। क्या मेरे सामने खूबसूरत सी तहरीर मोहसिन नकवी साहब की, मज़ेदार। अब तेरी याद से वहशत नहीं होती मुझको, गो जख्म खिलते हैं पर रजियत नहीं होती मुझको। अब कोई आए चला जाए मैं खुश रहता हूं, अब किसी शख्स की आदत नहीं होती मुझको। ऐसे बदला हूं तेरे शहर का पानी पीकर, झूठ बोलूं तो नदामत नहीं होती मुझको। है अमानत में खयानत सो किसी की खातिर, कोई मरता है तो हैरत नहीं होती मुझको। ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। एनीवे जी, यू कैन कॉल मी 042-111-0101-1000-1001. मेहर फातिमा कहती हैं SMS है जी, सर पूरा दिन बस पड़ी रह गई, कोई होश नहीं था, अम्मी कहती रह गई पूरा दिन, अब उठ के दवाई ले कर आई हूँ। सर खफा का ओ एस टी लगा दें, ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करती हूँ। खफा का ही ओ एस टी करना है डेडिकेट। आई एम नॉट वेल, वॉज स्लीपिंग, गेट वेल सून माजमीन जी। अच्छा जी, अभी ट्यून किया, पता नहीं रोने धोने की बातें क्यों चल रही हैं यहाँ पे, मुझे भी नहीं पता क्यों चल रही हैं, आप बताएं क्यों चल रही हैं। और कहती है हाँ जी, शेख रशीद के फॉलोअर जो हुए तभी तो गर्ल्स तारीफें करती हैं आपकी, हाय हाय जलन हो रही है। इनकी भी तारीफें कर दे, कोई बात नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। मैं लाहौर से साजिदा बात कर रही
0: हूँ। जी साजिदा जी।
1: हाँ जी, मुझे बड़े प्यार से कहते हैं साजिदा जी।
0: जी साजिदा जी, बताइए जी, कैसे हैं आप जी?
1: हाँ जी, जबरदस्त। और जो टॉपिक आपने रखा है और टॉपिक के बारे में कहना चाहूंगी, आज मैंने सुबह ना फजर
0: किधर रखा, मैंने मैं रख के भूल गया हूँ, किधर पड़ा हुआ टॉपिक?
1: हेलो,
0: मैंने कहा टॉपिक किधर रखा है, मैंने मैं रख के भूल गया हूँ, कहाँ पे पड़ा?
1: ये आपके पास पड़ा, आज पास पड़ा हुआ है,
0: मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा,
1: मिल जाएगा।
0: जी
1: तो मैं ना नमाज में ना जो तन्हाई थी, वो होता है सुबह का टाइम।
0: अच्छा,
1: यानी कि ना तो वो जब ने तो दुआ के लिए ना हाथ उठाए तो पता नहीं मुझे समझ नहीं आई, अक्सर मैं बहुत ही रोती हूँ दुआ में ना, इतना रोती हूँ यकीन करे, ऐसे जैसे बच्चों की तरह रोती, ना तो कोई देखता है, और वो अल्लाह ताला के साथ एक अलग ही मेरा रिश्ता जुड़ा होता है, और मैं रोकर जो मांगती हूँ यकीन करे उस दिन या उस टाइम मेरा पूरा हो जाता है।
0: आपने ना कल सुबह उठ के काम करना है, आपने तकरीबन 20 करोड़ रुपया मांगना है, 10 अपने लिए 10 मेरे लिए, ठीक है?
1: ठीक हो गया।
0: जिस दिन मिले कोई नहीं, आप 15 रख लेना, 5 मुझे दे देना, ठीक है?
1: नहीं पैसे की बात नहीं है, मैं पैसा
0: पैसे, पैसे वाली नहीं है,
1: मैं पूरा कर देती।
0: इसके अलावा फिर बाकी दुआएं पूरी होती, पैसे नहीं मिलते क्या?
1: और मैं सलाम कहना चाहूंगी।
0: वालेकुम
1: सलाम। नहीं मैं कॉलर को।
0: अच्छा अच्छा,
1: सलाम कहना चाहूंगी और छोटे तारीख को, रिमशा को, विस्मा को, और अनिला जी को, अगर सुन रही है अनिला जी भी लाज बनाए, और उस्ताद जीड़ा को।
0: अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपका सलाम पहुंच गया, थैंक
1: यू। सलीम दर्जी, अगर सुन रही है सलीम दर्जी को भी मेरी तरफ से सबको बहुत ज्यादा सलाम, बहुत ज्यादा दुआएं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत सारे सलाम मौसूल हुए थे। अच्छा जी, फरा अफजाल साहिबा कहती हैं, सायरा जी आप जैसे प्यारे लोगों के लिए तो हजूर पाक ने ही जन्नत की बशारत दी है, दुआ में हमें भी याद रखें ज़ायरा जी, आपके लिए मैसेज है। सुहेल अब्बास ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। सैयद मोहम्मद अली ज़िया, डॉग्स भाई माय वाइफ सेइंग थैंक यू टू यू फॉर विशिंग अस, यू आर ऑलवेज वेलकम। यार मुझे अच्छा लगा था, यकीन करें, और मेरी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह आप दोनों को इसी तरह से खुश रखे। यू सेड सेकंड एनिवर्सरी बट इट वॉज 22nd, ओह माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आप दोनों के साथ को इसी तरह से कायम रखे और इसी तरह से आप दोनों खुश रहें। फिदा राजपूत, जो तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा कि जिसकी खूबसूरती मांद पड़ी हो। हाँ जी, ठीक कह रही हैं आप। चांद आज कॉम्ब नहीं किया, नहीं आज मैं कह एन जी जाने की करना है, दवा करो कंघी करके। मैं कंघी करना भी काम है, मैं तो दिल कर रहा था मैं ना मशीन फिरा दूँ फिर सर पे, वो रिलैक्स रहता बंदा, जिमें दिल करे बाल रखो तो चले जाओ, नहीं बालों पर क्या कंघी करनी है। बस ठीक है, जिन्हें नहीं पसंद करना उन्हें कंघी वाला भी पसंद नहीं आता। फिदा कहती है बहुत सी सॉन्ग पहले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, बट जब ये आपने प्ले किया तब से ये सॉन्ग मेरी प्लेलिस्ट में ऐड है। थैंक यू वेरी मच जी फिदा जी। अली ज़िया, शी लाइक्स द डेडिकेटेड सॉन्ग वेरी मच आफ्टर लिसनिंग 10 times। सर थैंक यू, आपका भी उनका भी, और वो आपकी तरफ से ही था। एंड आयशा, सर अक्सर एंग्जाइटी भी इंसान को रुला देती है, इंसान बहुत ही बेबस महसूस करता है तो आंसू निकल आते हैं, कभी कभी तो लेना चाहिए वो कहते हैं ना, रो लेना चाहिए वो कहते हैं ना, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। वाह वाह वाह वाह, अच्छी बात की आयशा। एंजाइटी क्यों होती है, अब ये भी बताएं ना मुझे, एंजाइटी की वजह क्या है। फिजा राजपूत काफ़ी ज़्यादा फूल, ये किसको भेज रही हैं आप, चलें जिसे भी जा रहे हैं कॉल ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो।
2: वालेकुम सलाम। हेलो
0: जी। जी सर कैसे हैं?
2: असद साहब
0: जी जी,
2: मैं मोहम्मद सलमान बाट सलमाबाद लाहौर से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं जी बाट साहब आप?
2: क्या आप ठीक हैं?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक जी, आप खैरियत से हैं?
2: अब मैं भी ठीक फिट फाट अल्लाह का शुक्र, अल्लाह आपको भी सेहत तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी दे और तमाम परेशानियों से बचा के रखे सबको।
0: आमीन हम सबको। आमीन आमीन।
2: आप तो सारे आज तो सारे कल कह रहे हैं कि आप थके थके लग रहे हैं, बार इंसान है इंसान थक भी जाता है, क्या हो गया इसमें?
0: अच्छा नहीं, हाँ जाहिर है इंसान थका ही रहता है।
2: और
0: मेरे साथ एक मसला है, अगर मुझे टाइम मिल जाए ना थोड़ा सा कहीं सोने का और उसके बाद उठ के खास तौर पे शो करने आना हो तो फिर तो शदीद किस्म की थकावट का एहसास नमूदार हो जाता है मेरे चेहरे पे, और यही मसला है मेरे साथ।
2: नहीं बच्चे अपने लिए भी टाइम निकाला करें, 2-3 घंटे अपने लिए आराम के लिए जरूर टाइम निकाला करें।
0: सही कह रहे हैं सर, डन हो गया सर, जो आप फरमाए जैसे आप कहें वैसे कर रहे
2: हैं।
0: बट साहब कह रहे थे 2-3 घंटे निकाल लिया करे कट्ठे ही। ओके ठीक है सर। और फरा कह रही है उमरा कर रहे हैं, जब मैं उमरा करके आया था उसके बाद मैंने बड़ा अरसा टिंडी रखी है, पता है मैं बाल आते थे मशीन फिरवा देता था, आते थे फिरवा देता था, मज़ा आता था। पीरजादा गुलाम मुश्तबा शाह साहब हैं, यू बेसबब खामोशियाँ उससे बहुत उलझा नहीं करते, जो रोग दिल को लग जाए फिर सुलझा नहीं करते, रखते सफ़र जो बांध लें हम सफ़र कहकर, बीच रास्तों में यूं फिर छोड़ा नहीं करते, आके एक बार जो बस जाएं रगे जा में, निगाहे जहां में फिर उसको रुसवा नहीं करते, नाम मोहब्बत पे शराकत दारी होती नहीं जायज, सो इंतखाब यार के बाद यार फिर बदला नहीं करते। ओए होए क्या कह रहे हैं आप, छागे छागे छागे। अहमदा चौधरी साहब आपका लाइफ में मैसेज पड़ा। फाजिल शहजाद खोखर साहब आए हैं, इस्लाम किया वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? नुमान नजीब भाई, मैं आलिमा बन रही हूँ, क्या बात है लाडो जी, आलिमा बन रही है, कल नूं तुसी फतवा मेरे ते ही पहले लाना है। रेडियो ते आंदा है, गाने चलांदा है। अच्छा जी, मुनव्वर अब्बास साहब ने सलाम किया, लाहौर के मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। मरीना बिलाल का मैसेज पढ़ा, नज़ीर खोसो साहब हैं, कल्ब मोमिन ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा फयाज़ साहिबा सलाम करती हैं, सीरत फातिमा हैं, हुमैरा फयाज़ साहिबा मैं ठीक हूँ, सीरत फातिमा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका शो बेहतरीन है, सॉन्ग सिलेक्शन भी माशाल्लाह बहुत खूब, अल्लाह पाक हमेशा आपको हैप्पी रखे। कोई अच्छा सा सॉन्ग हमारे लिए लगाइए, आपके लिए लगा देंगे अगला गाना, आप सुन लीजिएगा। पर खफा का गाना केड़ा सी सुनने हैं, देखने हैं। ओ साहेब ही सॉन्ग प्ले कर दे, फिजा चाहती क्या हो तुम हैं, कितने के गाने लगवाने हैं तुमने, लगाते हैं। मोहब्बत खुद मोहब्बत का सिला है, लेकिन कोई इंसान है क्या बेनियाज मुद्दा होना, लेकिन हाँ कोई आसान है क्या बेनियाज मुद्दा होना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बरकत जमाली साहब बहुत शुक्रिया जी। अकबर खान साहब हैं कराची से, सुनते हैं, बड़े प्यारे लिसनर हैं, बहुत अच्छे लिसनर हैं, इनकी कॉल नहीं आजकल मिलती, आपका बहुत शुक्रिया। पैगाम आया, रेहाना खान है बखर से सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया जी। और नज़ीर खूसो आपका मैसेज आया, आप बहुत पसंद कर रहे हैं अकबर खान साहब, आपका भी शुक्रिया। हर इंसान ने परखा ऐसे सारे इम्तहान हम पर फर्श हो जैसे, बस स्लो होता जा रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर। कॉल ले रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम,
3: कैसे हैं सर जी, आप ठीक हैं?
0: अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं।
3: सर तारिक कृष्ण अगला
0: जी, जी तारिक भाई पहचान लिया मैंने,
3: बिलीव करें बड़ा मजा आता है आपका प्रोग्राम, सर्दी में बड़ा मजा आता है यकीन करें, गर्मियों में आता है लेकिन सर्दियों में तो बड़ा एंजॉय करता हूँ।
0: सर आप फ्रिज में बैठ के सुन लिया करें।
3: नहीं यार फ्रिज में रात को भी मैं ये सुन रहा था फैमिली के साथ, नीला कंदी खुल के फोन कर रहा घर में, खुल के उनकी सारे सुते हैं ते मैं रात आराम नहीं गल करनी,
0: खुल के किवें होता मैं को पटे नाल
3: बचा, मैं जरा वो जा भाई से कॉल कर रहा था ना रात को, अच्छा तो बड़ा स्लो स्लो बात कर रहा था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: तो नीला भी कह रही जरा खुल छुल के गल करा करो।
0: अच्छा
3: मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करनी थी
0: जी, करें
3: काइंडली, आपसे रिक्वेस्ट है
0: जी
3: कि नीला पी को इनवाइट करें अपने प्रोग्राम में।
0: हाँ मैंने तो कहा जुमे रात वाले दिन आ जाए, जिसने आ जाए जो मेरे पुराने सुनने वाले हैं,
3: ऑफर है?
0: हाँ जी आ जाए, आ जाए।
3: चले मैं नीला पी का पहले वेट करूंगा, नहीं तो मैं पहुंच जाऊंगा।
0: जी जी आ जाइए, क्यों नहीं,
3: मैंने ज्यादा बातें नहीं करनी, मैं आपको मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है आपसे।
0: आप बताएं आखिरी दफा कब रोए थे?
3: मैं रोया था जब मेरी अम्मी की टेस्ट हुई थी 2 साल पहले,
0: उसके बाद नहीं रोया आप?
3: नहीं फिर रोना मैं रोता नहीं, अब यकीन करें बस खत्म हो गया रोना,
0: में ना
3: बस अब दिल पत्थर हो गया मेरा,
0: दिल पत्थर हो गया, मुझे भी यही लगता था मेरा पत्थर हो गया, लेकिन पत्थर नहीं होया यार, आ जाता रोना फिर आ जाता।
3: नहीं बस वो कभी कभी फिर जब सोचता हूँ ना अकेले में,
0: हाय चलें ठीक है बिल्कुल,
3: फायदा को सलाम दीजिएगा महबूब साहब को, और कराची वाले भाई साहब नहीं आ रहे जो गाने सुनाते हैं आपको बड़े लंबे लंबे,
0: अंसारी साहब
3: शायद इंसारी
0: आ जाएंगे,
3: सबे बारी है वो।
0: आ जाएंगे अभी आ जाएंगे,
3: इट्स ओके, थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़,
3: अल्लाह हाफिज़।
0: मोहम्मद आयान है, कहते हैं लिसनिंग फ्रॉम फैसलाबाद, सर थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हमदुल्ला मलखेल है कोयटा से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आयान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। जब इंसान के अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है तो आंसू आ जाते हैं, बस कभी इंसान के आगे ना आंसू निकले, कभी किसी इंसान के आगे, मेरा ख्याल है कभी किसी के आगे रो भी लेना चाहिए। और अली जिया कहते हैं सर रहमान अनवर साहब अभी तक नाराज़ हैं क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नाराज नहीं है, ऐसे के आगे ना आंसू निकले, कभी किसी इंसान के आगे, मेरा ख्याल है कभी किसी के आगे रो भी लेना चाहिए। और अली जिया कहते हैं सर रहमान अनवर साहब

0: नाराजगी हमारी आपसे कोई भी नहीं है। तो चीज़ें कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, डोंट वरी। अच्छा आप ठीक कह रहे हैं, अब आंसू आते क्यों है ना, एंजाइटी है तो एंजाइटी क्यों है, स्ट्रेस है तो स्ट्रेस क्यों है, किस चीज़ की वजह से आपको आंसू आते हैं बताएं। इकरा है, अस्सलाम वालेकुम इकरा फ्रॉम रावलपिंडी, वालेकुम अस्सलाम, अच्छी बात। अच्छा जी, इस दुनिया में हर चीज़ महंगी है, पाने से पहले और खोने के बाद। क्या खूबसूरत बात कर दी लड़की तुमने, छा गई हो तुम, बहुत ही खूबसूरत बात, आई लाइक इट। 04-2111-0101 आप मुझे कॉल कर सकते हैं जी, 04-2111-0001। हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम,
1: शमीम फ्रॉम कराची,
0: कैसे हैं शमीम साहब?
1: अभी के 3 एपिसोड डिस्कस करना चाहूंगा आपसे।
0: एपिसोड?
1: हाँ 3 एपिसोड आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा।
0: कौन से ड्रामे के?
1: नहीं अभी का जो ड्रामा है आरजे डॉक्स का।
0: अच्छा मेरे ड्रामे के ना ना करें, सारों को पता चल जाएगा, ये तो बस चंद लोगों के लिए
1: नहीं, ड्रामा नहीं, आपका शो सुन रहा था तो ख्याल आया कि कॉल लगाऊं, तो सर खुला कि कॉल लगाऊं, बड़ी यानी कि जुए शेर लाने वाली बात है ये, तो इसलिए सर खुला कॉल लगाई।
0: अच्छा जी,
1: कॉल लगाई तो बेल बजी, जब बेल बजी तो दिल चाह के अपने आप को नोचूं।
0: अच्छा
1: ठीक है, जब कॉल मिल गई और आपने हेलो कहा तो दिल चाह के अपने बाल नोचूं।
0: आए ओए होए होए, फिर नोचे नहीं आपने बाल, लेकिन एक काम करना, बाल नोचते हुए पहले आपने कैमरा सामने रखना है, वीडियो बनानी है, बाल नोचेंगे फिर उस वीडियो को ना आपने अपलोड करना है। आपको पता है इस तरह की वीडियोस को आजकल बहुत ट्रेंड मिलता है, वायरल होती हैं, ये काम आपने जरूर करना है, वायरल होनी चाहिए वीडियो। कैप्शन आप कुछ भी दे दें कि मेरी कॉल मिल गई, मैं सोच ही नहीं, सोच रहा था कि पता नहीं मिलती नहीं मिलती, लेकिन मिल गई, आज मैं खुशी से बाल नोच रहा हूँ, क्योंकि जिसे कॉल कर रहा था उसके तो नोच नहीं सकता, वो दूर है।
1: अच्छा अभी जो बात कर रहे थे आपके, आपको 20 करोड़ मांगे हैं,
0: हाँ
1: 10 करोड़ मुझे ले लेना, जब 2 करोड़ तो 5 ही ले लेना, 15 रख लेना,
0: 15 रख लेना।
1: तो अभी मुझे एक वो याद आ गया था, जोग ना कराची में
0: जी,
1: तो एक आदमी दो आदमी मस्जिद में दुआ कर रहे थे, एक को जमीन की पेमेंट देनी थी 5 लाख।
0: अच्छा जी,
1: तो अल्लाह से दुआ मांग रहा था 5 लाख की, अल्लाह मुझे 5 लाख दे दे।
0: अच्छा,
1: तो उसके पीछे बंदा बैठा था, उसके घर में खाने को नहीं था, तो वो चिल्ला चिल्ला गया था कि अल्लाह मुझे 500 दे दे, मेरे घर में खाने को नहीं है। तो 5 लाख वाला मुड़ा जेब से 500 रुपए निकाल के उसको दिए, बोले यार तू तो दफा हो जा,
0: तू तो जा, मेरी बात तू कितने दरमियान में आ रहा, तू तो जा भाई,
1: अब अल्लाह को मेरी बात,
0: मेरी बात सुन ले तू जा।
1: अब एक छोटी सी कंट्रोवर्शियल
0: जी, कंट्रोवर्शियल ज्यादा ना सुना दीजिएगा।
1: हाँ छोटी सी
0: हाँ छोटी सी,
1: कसम है सीएम पंजाब की,
0: नहीं यार मेरा प्रोग्राम बंद करा देना यार,
1: नहीं अरे आप कसम खा रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: कसम है सीएम पंजाब की, बड़े दुख में हम लोग।
0: अच्छा,
1: कसम है सीएम पंजाब की, बड़े दुख में हम लोग, और कराची के यूनिवर्सिटी रोड 5 साल से नहीं बना, तो आ गए हैं FWO के लोग।
0: अच्छा आ गए हैं ना, बस ठीक है, आप माफी दे दें हजूर, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, आप ना मेरे शो के पीछे पड़े हैं, बस कर दें,
1: कसम खाइए मोहब्बत से, कसम खाइए
0: मोहब्बत से खाएं, हमारे लिए सारे ही बराबर हैं, ठीक है आप मरवा ना देना।
1: अच्छा, पता
0: लगे कि दौरान शो इधर बंदे एंटर हुए हों, चले आ जाए आपके लिए गाड़ी आ गई लेने आपको, और मैं कह रहा हूँ आखिरी सलाम कबूल करें, शमीम साहब थे जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी। अच्छा जी ओके, सना राजपूत, आज के दिन मेरे घर कजन पार्टी थी, तो मैंने उनको अपने आप से कैसे मिलते हैं या बता रही थी कि एक कज़न ने मुझसे पूछा तुमने ये सब कहाँ से सीखा है, मैंने बताया उनको आरजे डॉग से, तो वो आज आपका शो सुन रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि जब टीचर खुद लेट आए तो स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इसीलिए कहता हूँ कि मेरी क्लास में सिर्फ वो स्टूडेंट एक्सेप्टेबल हैं जो मेरी तरह

0: लेट आते हैं। हाँ जी, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था मैं भी लेट जाता था। मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए टीचर लगा हूँ वो जो लेट आते हैं, वरना बेचारे लेट आने वालों का बड़ा नुकसान होता था। जिस तरह से मैं लेट जाता था, हमारे टीचर बहुत कुछ पढ़ा चुके होते थे और कहते थे हुन नहीं मैं पढ़ाना, जो मैंने पढ़ा दिया अपने क्लास फेलो से पूछ लेना। उनसे बंदा क्या ही पूछे, मैंने जाकर पूछना हाँ क्या पढ़ाया, वो अगू कहता सी तुमने कौन सा पढ़ना है, छोड़ो जो भी पढ़ा दिया तुमने कौन सा पढ़ना है, तुम तो पेपर से भी एक दिन पहले पढ़ोगे तो दफा करो। तो यही सीन है ना पैर। तो इसलिए जो लेट आते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए लेट आने वाले टीचर भी होने चाहिए। ये एक नई कैटेगरी है। ओके, अच्छा फिर मैसेज आया जी, आज शहर थे हम। अच्छा जी, इकट्ठे ही इतने सारे लोग, हम तस्निया में चले गए आप। अच्छा, सोचा था आज मैसेज करके बताएंगे कि कुछ ऐसा करो कि मूड जो ऑफ है वो ठीक हो जाए। तो आपने तो भाई कमाल ही कर डाला, अभी पता चल रहा है कि टॉपिक रोने धोने का। ओए चलो रो के दिखाओ फिर, ये देखो ना फ्रेश कर दिया, एक नया टॉपिक दे दिया रोने धोने का। बंदा आपको क्या ही कहे, आई एम स्पीचलेस। जो दिल में आए कह ले, बड़ी दुनिया कहती आप भी कह ले। एक हैं टॉप ऑफ द टॉप आरजे, दूसरे आप द बिगेस्ट आरजे इन द वर्ल्ड। हाँ ये लाइन अच्छी कही आपने, जो मैं मानता नहीं हूँ लेकिन मुझे अच्छी लग रही थोड़ी थोड़ी। ज़रा मज़ा नहीं आ रहा मुझे आज, है ना, मुझे भी बिल्कुल नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी कर लेना चाहिए, हर वक्त मज़े की तलाश में नहीं होना चाहिए। कभी ऐसे भी गुजारा कर लेना चाहिए। सलमान रफीक साहब है लाहौर से, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। अरबाब अली, अच्छा यहाँ पे आबिश सरताज ने एक मुझे पोइट्री भेजी थी, आई वॉन्ट यू टू सेंड दैट पोइट्री अगेन इफ़ यू आर देयर। चाहत कहाँ पाने की चीज़ है, ये तो सब पे लुटाने की चीज़ है। ओ यार मार पै जाती है ना, बंदा कहे कि मैं तुमसे भी उतनी मोहब्बत करता हूँ जितना उससे करता हूँ, और उससे भी उतनी करता हूँ जितनी तुमसे करता हूँ, तो एक बड़ा मसला बन जाता है। दो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज रीडिंग अ बुक, और अक्सर उसका जिक्र करता हूँ, किताब मीरदाद, आई वाज रीडिंग दोज पैराग्राफ्स जहाँ पे लिखा हुआ था कि ये मोहब्बत की तकसीम तुम किस तरह से कर सकते हो। किसी पूरे दरख्त की शाख पे इतने सारे लगे हुए पत्तों में से किसी एक पत्ते को अपनी मोहब्बत का हकदार कैसे ठहरा सकते हो, जबकि उस शाख पे लगे हुए तमाम तर पत्ते क्या तुम्हारी मोहब्बत के हकदार नहीं? क्या उनको उसी तरह शाख ने संभाला नहीं जिस तरह उस एक पत्ते को संभाला है जिससे तुम मोहब्बत का इजहार करते हो? फिर वो तना कि जिसने सारी शाखों को संभाला, फिर वो ज़मीन के जिसने इस दरख्त को उगाया, क्या वो भी तुम्हारी मोहब्बत की हकदार नहीं? फिर पढ़ के मैं हंसने लग गया, मैं कि ये फ़लसफ़ा बहुत अच्छा है वैसे, अगर ये बंदा समझा सके ना। फिर बंदा कहे देखो मैं तुमसे भी इतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी उससे, फिर उससे भी उतनी, फिर सारों से ही उतनी, चारों से ही उतनी। ओके आई लाइक इट। लुटा दे उम्र तो डॉक्स मोहब्बत के खेल में, किस्मत में कहाँ वो तेरी आने की चीज है। क्या यार क्या कह रहे हो तुम लड़के, चाहत कहाँ पाने की चीज है, ये तो सब पे लुटाने की चीज है। कुट पुआण वाले काम ने पाए जान ताड़े, आप मार पढ़वाएंगे मुझे। अच्छा ऐसी बातें ना किया करें, बाज आ जाएं, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा यहाँ पे किधर है, हमें तो मज़ा आ रहा है कसम से, आज साइकोलॉजी के सर याद आ गए। ही सेड बच्चों हमने पढ़ना नहीं है बस बातें करनी है, है ना। ये भी एक पढ़ाने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, लेकिन वो पढ़ा फिर भी रहे होते हैं। साइमर रफीक साहब लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम आरजे डॉक्स। वालेकुम सलाम, शो अच्छा है, टॉपिक सर तबीयत ख़राब है, पेरेंट्स पास नहीं होते तब रोना आता है, वो बहुत याद आते हैं, फिर अल्लाह ताला से हिम्मत मांगती हूँ, रो कर सकून होता है। बिल्कुल ठीक है, गुड़िया मलिक हैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, कैसे हैं भाई? मैं ठीक हूँ। आप पलकों की हद को तोड़ कर दामन में आ गिरा एक आंसू, मेरे सबर की तौहीन कर गया। ओए पलकों की हद को तोड़ कर दामन में आ गिरा एक आंसू, मेरे सबर की तौहीन कर गया। क्या बात है, अब्दुल नूर हाशमी साहब ने SMS किया, आदाब कह रहे हैं तस्लीम जी। रोना है इस कदर के आंखें गुलाब हैं, लगता है वो शख्स शब भर सोया नहीं, रोया है इस कदर के आंखें गुलाब है, लगता है वो शख्स शब भर सोया नहीं। क्या बात है जी। आयत फातिमा लाहौर से, टीयर्स एंड इमोशनल, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आपका आँख में पढ़ता हूँ। गाना लगाते हैं, इस पर बात होने वाली है, ये थोड़ा सा डिस्कस करने वाला मौजू है कि आंसू आते क्यों हैं एक्चुअली, व्हाई डू वी क्राई, हम रोते क्यों हैं, रोने की वजह क्या है। आपके पास बहुत सारे मामलात होते हैं, कभी किसी गम के ऊपर रो रहे हैं, हंसते हंसते भी इवन आंसू निकल आते हैं, बहुत ज़्यादा शदीद हंसी आई और आंसू निकल आए। तो आंसू के मल्टीपल रीजन होते हैं, एनजाइटी, स्ट्रेस, लेकिन रूट कॉज क्या होता है? रूट कॉज कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है एक ही होता है, इस पे बात करते हैं, आते हैं, जाना नहीं है किधर। कॉल ले लूं पहले, कॉल लेके फिर चलते हैं गाने पे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: कौन है हमारे
1: जी? सत्य हाल है जी, मैं इदरीस अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से।
0: कैसे इदरीस साहब? इदरीस साहब अरबाब अली कह रहे हैं सर, आज आपको चक्कर आ रहे हैं माइक पे, फिर भी अच्छा लग रहा है। तुम्हें कैसे पता मुझे चक्कर आ रहे हैं? जी इदरीस साहब कैसे हैं?
1: मैं नहीं, माइक आपको देख के नहीं मैं कैसे, तो मैं एक ब्लाइंड आदमी हूँ।
0: अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं इदरीस?
1: मैं लाहौर सदरजाग।
0: ओके, क्या करते हैं आप?
1: मैं फारिग, बस आपका शो सुनता और बाकी एफएम वालों का शो सुनता।
0: अच्छा, तो आपको कैसा लगता है इतने सारे बंदों की बातें सुनना?
1: अच्छा लगता है।
0: क्यों, क्या वजह, क्या अच्छा लगने वाली बात होती है इनमें?
1: जब इंसान कुछ कर ना सके, बाहर कहीं जा ना सके, कहीं आ ना सके, तो उसने अपने दिल को बहलाने के लिए कोई ना कोई तो ऐसा काम करना ही होता है।
0: हाँ।
1: जिससे उसका दिल लगा रहे।
0: ओके, बिल्कुल। ए,
1: मैंने मतलब पाकिस्तान में काफी शहर घूमे है, अभी सऊदी अरब गया हूँ, सऊदी अरब की तैयारी भी की है, उमरा भी किया है, लाकर कर देखा, सरकार का रोजा देखा है, लेकिन अब मुझे नजर नहीं आता, मेरी नजर चली गई है किसी वजह से। अब मेरा दिल भी अभी भी करता है कि बाहर निकलू कहीं जाऊं, लेकिन अब अपने दिल को बहलाने के लिए कोई तो काम करना पड़ता।
0: वाह वाह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
1: लेकिन ये है कि बस मैं मायूस नहीं होता।
0: ओके, और सारा दिन फिर करते क्या हैं, किस तरह से गुजारते हैं सारे दिन को आप?
1: मेरी बीवी है, दो बच्चे हैं मेरे,
0: माशाल्लाह,
1: अल्लाह पाक ने दो बेटियां दी है बोल जैसी,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह।
1: जब कुछ लाजवाब दिल लगे तो फिर बीवी की डांट सुन लेता हूँ।
0: फिर उसके बाद आप सोचते नहीं है मैंने शादी क्यों की?
1: नहीं नहीं, मैं ये नहीं सोचता।
0: अच्छा,
1: बस यही सोचता हूँ कि यार अगर मैं बाहर निकल सकता
0: तो मुझे रोज इतनी डांट ना सुननी पड़ती।
1: नहीं, रोज वाला यही काम नहीं है।
0: अच्छा, कभी कभी होती है,
1: कभी किसी टाइम जब ऐसे बिला वजह नहीं डांट होती, वो किसी टाइम ऐसे जान मुझे छेड़ दो मजाक से, ऐसी से बहुत प्यार।
0: डांट सुनने के बाद आपको कभी रोना तो नहीं आया?
1: मैंने आपको बताया, मैं ना अब दिल रोता है, अब आंखें नहीं रोती। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं रोया हूँ ना, कोई आप डेढ़ साल पहले रोया, जब मेरी सर्जरी के बाद मेरा एक दोस्त मुझे मिल लिया।
0: अच्छा,
1: तब मैं रोया।
0: अच्छा,
1: उसके बाद अब आंखें नहीं रोती, अब दिल रोता है। किसी भी दिल इतना छोटा हो गया है, छोटी सी बात पे रोना, दिल वो करते हैं नर्वस हो जाते।
0: कोई नहीं, परेशान नहीं होना, ठीक है। जब वेला हो नहीं रहा तो वेला
1: आपका भी प्रॉब्लम सुनता हूँ। आपको मैंने 14 अगस्त वाले दिन भी सारा सुना है, और ये जो आप कहते ना कि आप लेट आते हैं, मुझे नहीं लगता आप लेट आते, मुझे लगता है आप आके ना चेक करते हैं कि कौन कौन लाइन पे आ गया है मुझे सुनने के लिए, कौन कौन बेताब बैठा है।
0: हाँ, जो तो बंदे आ गए ना वो तो मैं जाने।
1: आप प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं और करके बैठ के देखते रहते हैं कौन कौन ऑनलाइन हो गया।
0: सर ठीक
1: है, जब तब हो जाते हैं तो फिर आप
0: सर आप के
1: जो आपने 14 अगस्त वाले दिन जब देखो आपने हर प्रोग्राम में आपने वो कहते हैं पार्टिसिपेट किया।
0: यस यस, मैंने बहुत तंग किया लोगों को।
1: हाँ जी, आपने ऐसे होता था कि जैसे आपका घर ये जो क्या कहते हैं
0: रेडियो है, रेडियो
1: ये आपका जो रेडियो स्टेशन है इसके घर के साथ है, इसके साथ है या ऑफिस के अंदर ही है, इस तरह आप पहुंचे।
0: थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया।
1: अल्लाह पाक सब दुआएं आप सब के लिए, अल्लाह पाक सब
0: थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू
1: आपके लिए भी, सबके लिए, मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे भी सेहत दे।
0: बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।
1: बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत मजा।
0: ओके सर, अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह
1: हाफिज़।
0: अहमद भट्ट सर जी की हाल चाल, हाल चाल वेल, तुसी सुनाओ हाउ यू। और बरकत शाह, मैं आपकी बातें बहुत गौर से सुनता था, मैं आपको बहुत पुराना सुनने वाला हूँ, मैं अभी सऊदीया में हूँ। अच्छा, मेरी बातें सुनते सुनते उधर पहुँच गए हैं, क्या बात है। अहमद अबू बकर जान, सलाम बॉस, वालेकुम सलाम, क्या हाल है। और अहमद भट्ट, क्या बात है जी, क्या बात है, छा गए आप। और अभी यहाँ पे एक गाना लगाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं और फिर उसके बाद आके बात करते हैं। आपको रोना आता क्यों है, खफा का ओएसटी कैसा हो, सुन लेते हैं। मेहर फातिमा ने मैसेज किया था कि वो ज़रूर प्ले कीजिएगा। हिदायत फातिमा, आपका भी ये भी मैसेज शामिल करते हैं। देर इज़ अ मिस्ट्री एंड द हिस्ट्री, देर इज़ ऑलवेज समथिंग व्हेन यू क्राई। Why do we cry? It's 11:50 p.m. on the dial, 19th of August 2026. This is Aziz Dogs from the studio of FM 101. Don't go anywhere. I'll catch you back after this track from Khafar Drama. Oh, batti tur gayi je. Pata nahi transmission vich jaan wali je.

0: 101 हमारे दिल की आवाज आपके दिल की धड़कन।
1: FM 101 The sound of new millennium.
2: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: FM 101 The sound of new millennium.

0: FM 101, हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन।
1: FM 101, the sound of new millennium.
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: FM 101, the sound of new millennium.

0: FM 101, The Sound of New Millennium.
1: सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
0: FM 101, The Sound of New Millennium.

तुम्हें अगर उसके होने पर यकीन है तो फिर किसी भी शय के होने की खुशी या ना होने का गम बेमानी है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं।

मेरे बस में हो तो कभी कहीं कोई शहर ऐसा बसाऊं मैं, जहां फाख्ताओं की फड़फड़ाहट से नगमाए राज़े हयात में, झनझनाती सांसों की झांझरें छनक उठें तो धनक के रंगों में भीग जाएं हवास तक। जहां चांद मान ना हो कभी, जहां चांदनी की रिदा बने, मेरी बांझ धरती के बासियों का लिबास तक। जहां सिर्फ हुक्मे यकीन चले, जहां बेनिशा हूं कयास तक, जहां आदमी के नितको लब पे ना शहरे यार का खौफ हो, जहां सरसराए ना आदमी की रगों में कोई हरास तक। जहां वहम हो ना दिलों में वहम का सहम हो, जहां सच को सच से हो वास्ता, जहां जुगनुओं को हवा दिखाती हो रास्ता, जहां खुशबुओं से बदलती रुत को हसद ना हो, जहां पस्तियों से बुलंदियों को कभी कद ना हो, जहां ख्वाब आंखों में जगमगाएं तो जिस्म जहां के सभी दरीचों में तीरगी का गुजर ना हो, कोई रात ऐसी बसर ना हो कि बशर को अपनी खबर ना हो, जहां दाग दाग सहर ना हो, जहां कश्तियां हो रमा दमा तो समुंदरों में भंवर ना हो, जहां बरगोबार से अजनबी कोई शाख कोई शजर ना हो, जहां चहचहाते हुए परिंदों को बारिशों के अजाब का डर ना हो। मेरे बस में हो तो कभी कहीं कोई शहर ऐसा बसाऊं मैं, जहां तेरी मेरी मोहब्बतों पे गमे जहां का असर ना हो, रहो रस्म दुनिया की बंदिशें गमे जात के सभी जायके, सिमे कायनात की तलखियां किसी आंख को भी न छू सकें, जहां मेरी सांस की ताजगी तेरी चाहतों के कमल में हो, तेरा हुस्न मेरी गजल में हो, जहां कायनात की एक सदी शबो रोज के किसी पल में हो, जहां नौहाए गमे जिंदगी मेरी हिचकियों से आया ना हो। जहां लौहे खाक पे उम्र भर किसी बेगुनाह का, किसी बेगुनाह के खून का कोई दाग कोई निशान ना हो, कोई शहर ऐसा कभी कहीं जहां धूप छाओं गले मिलें, जहां बांझ रुत में भी गुल खिलें, जहां चाक हो कोई पैरहन न सुखनवरों की जबां कटे, ना जमीरे लौहो कलम हो सैदे सितमगरा, ना गदागरी का रवाज हो, न सिपाह लश्कर अहले हर्फ के लब सिलें, कोई शहर ऐसा कभी कहीं जहां चाहतों के हुजूम में कभी गीत अमन के गांव में, जहां जिंदगी का रिज्ज पढ़ूं जहां बेखलल गुनगुनाऊं मैं, जहां मौज मौज की ओट में तू किरण बने मुस्कुराऊं मैं। मेरे बस में हो तो कभी कहीं कोई शहर ऐसा बसाऊं मैं।

प्रोग्राम में शामिल रहती हैं बहुत सी बातें और आप तो जानते हैं। हर बात का आगाज एक ख्याल से होता है, ये ख्याल ही तो है जो अल्फाज के ताने बाने को जोड़ता है। ऐसी बहुत सी बातें जो ख्यालात से होते हुए अल्फाज का रूप धार लेती हैं। ऐसे बहुत से किस्से, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो मंजिल तक पहुंचने की जुस्तजू में नामुकम्मल, अधूरी, यौलीदा दामन रह जाती हैं। इनमें आंसुओं की वो कतारें भी शामिल हैं जो मन के कैनवस पे किसी खास का धुंधला शख्स बनाती हैं, मिटाती हैं हर वो ख्याल जो दर्द की शिद्दत की कैफियत में खुदी तक पहुंचा देता है, अपने आप से मिलवा देता है, हकीकत का रास्ता दिखला देता है। इस प्रोग्राम में शामिल रहता है। आज के प्रोग्राम में भी कोई ना कोई टॉपिक मेरे और आपके दरमियान गुफ्तगू की वजह ज़रूर बनेगा। कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होगी जिसको आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू की वजह बनाएंगे, आपसे बात करेंगे।

0: FM 101, The Sound of New Millennium.
1: सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.
0: FM 101, The Sound of New Millennium.

जी हाँ, एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं तमाम सुनने वालों को जहां जहां तक मेरी आवाज सुनी जा रही है। लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, सियालकोट, सरगोदा और जहां जहां पे पूरे पाकिस्तान में 101 की फ्रीक्वेंसी के ऊपर मुझे सुना जा रहा है, सभी सभी खूबसूरत समातों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं।

के साथ साथ पूरी दुनिया में जहां पे भी हमें सैटेलाइट के थ्रू सुना जा रहा है, सभी सभी खूबसूरत समातों को एक बार फिर दिल की गहराइयों से रहमान अनवर आदाब कहता। इस प्रोग्राम का नाम है अधूरी बातें, जो मुकम्मल बातों से ज्यादा वजनी होती हैं, ज्यादा भारी होती हैं, ज्यादा जरूरी होती हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं, ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे हमें पहुंचकर ये महसूस होने लग जाता है कि इससे आगे अगर बात और थोड़ी सी आगे निकल जाती तो क्या होता। अगर वो कुछ देर के लिए मेरी बात और सुन लेता या फिर मेरी मुकम्मल बात सुन लेता तो फिर हमारा ये ताल्लुक कहां पे होता। अगर मैं कुछ देर के लिए अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता तो शायद सब मामलात बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाते, सब चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती। ये मेरे अंदर इतनी जल्दी क्यों है? आखिर मुझे कहां पहुंचना है? आखिर मैं किस रेस में हूं? मैं भाग क्यों रहा हूं? इस तेजी की, इस जल्दी की, इस कोशिश की आखिर वजह क्या है? इंसान अपनी सोच की, ख्याल की गहराइयों में जैसे जैसे उतरने लगता है, जैसे जैसे वो अपनी जात के मुख्तलिफ छुपे हुए पहलू खोलने लगता है, तलाश करने लगता है, उसे अपने हर इमोशन की वजह मिल जाती है, हर इमोशन का मतलब समझ में आ जाता है। लेकिन ये सब का सब जो सोचना होता है, ये बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में ऐसे जो सोचते हैं, उनको उंगलियों पर गिना जा सकता है, उनकी तादाद बहुत कम होती है। लेकिन वो दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं, दूसरों से अलग होते हैं। उनके सोचने का, उनके बात करने का, उनके चीज़ को, सवाल को, किसी परेशानी को, किसी उलझन को समझने का जो नज़रिया होता है वो डिफरेंट होता है। इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में जब जब कोई तजुर्बा हासिल करते हैं, अपनी ज़िंदगी में जब जब वो किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से आगे आम इंसान को कोई रास्ता नज़र नहीं आता, वो वहां पे पहुंचने के बाद बहुत खुश होते हैं, वो बहुत सरशार होते हैं, एक अजीब सी फख्र की कैफियत होती है उनके अंदर कि हाँ, अब यहां से चैलेंज मिला है, अब यहां से देखना है कि मैं किस तरह से आगे रास्ता तलाश करता हूं, किस तरह से आगे बढ़ता हूं। ये सब अपने आप के अंदर चल रहा होता है, ये सब हमारी जात के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी होती है, ये हमारी अपनी जात के मुतालिक हमारी सोच होती है। और जब हम कभी परेशान होते हैं, जब हम कभी अपने बारे में कुछ नेगेटिव प्रस्पेक्टिव सुनते हैं, अपनी ज़ात के बारे में कोई मनफी पहलू हमारे सामने आता है, तो हम अपने आप को दिलासा देने के लिए तब्दील ना करते हुए अपनी ज़ात को कोई ना कोई ऐसा तजुर्बा, कोई ना कोई ऐसी वजह, कोई ना कोई ऐसा बहाना जो हमारे दिल को मुतमईन कर जाए कि नहीं, ये जो बात हमारी जात के बारे में हमें सुनने को मिली है ये सही नहीं है, इसका बहाना मेरे पास ये मौजूद है, मेरे पास ये वजह मौजूद है, नहीं मैं ऐसा नहीं हूं। हमारी जिंदगियों में बाज़ुकात ऐसा होता है, या मैं ये अक्सर ये कहूं कि हर इंसान के साथ ऐसा होता है तो ये भी गलत नहीं होगा,
बहुत कम लोग होंगे जिनके साथ ऐसा ना होता हो कि उनकी ज़ात के बारे में, उनके अपने आप के बारे में जब कोई दूसरा इंसान शायद कोई ऐसी बात कहता है जो उनको पसंद नहीं होती, जो वो सुनना नहीं चाह रहे होते, लेकिन सच्चाई पर मबनी होती है, तो वो उसको मानने से इनकार कर देते हैं। वक्त गुजरता चला जाता है, वक्त आगे से आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आता है जिंदगी में, कोई एक इंसान ऐसा आता है जो हमें ये महसूस कराता है, जो हमें ये एहसास दिलाता है कि हम अपने आप को तब्दील कर लें, हम अपने आप को बदल लें। वो नहीं कुछ भी कहता, पहले वो कुछ नहीं कहता, बस उस इंसान से वाबस्ता जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे एहसासात होते हैं, वो खुद ही हमें अपने अंदर से कुरेदना शुरू करते हैं, वो खुद ही हमें अपने अंदर से झंझोड़ना शुरू करते हैं, अंदर से वो थप्पड़ मारते हैं, हमारे न नजर आने वाले चेहरे के ऊपर तमाचे रसीद करते हैं, कहते हैं कि हां बदलना पड़ेगा, तुम्हारी जात के अंदर बहुत सी कमियां हैं, खामियां हैं। इंसान कोशिश करता है अपनी कुछ आदतें, अपना लहजा, अपना रवैया, और फिर अगर उस इंसान के अंदर गुस्सा भी टूट टूट के भरा हुआ हो, अपने गुस्से का अंदाज भी, अपनी खामोशी का एहसास भी, बाज़ुकात तो अपनी पूरी पर्सनैलिटी बदलने की कोशिश करता है। हम सोचते हैं शायद अगर मैं थोड़ा सा बदल जाऊं तो ये जो रिश्ता है ना, मैं इसमें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होऊंगा, या फिर लफ्ज शायद गलत हो गया, कमतरी नहीं, एहसास निदामत का शिकार नहीं होऊंगा। उसको बताने से पहले मेरी अपनी खामियां अगर मैं तब्दील कर लूं, अगर मैं अपने आप को ठीक कर लूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगेगा, ये रिश्ता, ये ताल्लुक बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ने लगेगा। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगते हैं। पहले एक आदत बदलते हैं, फिर अपनी कोई पसंद छोड़ देते हैं, अपनी गुस्से की कैफियत, अपनी नाराजगी या नाराजी छुपाना सीख लेते हैं, अपने अंदर उमड़ती हुई, अपने अंदर बदलती हुई ख्वाहिशों को खामोश करवा देते हैं। और फिर अचानक एक दिन आईने के सामने खड़े होकर ये पूछते हैं, मैंने उसे तो नहीं खोया, लेकिन क्या मैंने खुद को खो दिया है? ये जो सामने आईने के अंदर जो इंसान खड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्या ये वाकई में मैं हूं या ये कोई और है? शायद यही वो मुकाम होता है, शायद यही वो मोड़ होता है, यही वो जगह होती है जहां मोहब्बत और इंसान के दरमियान ताल्लुक की गहराई का एहसास महसूस होता है, जहां इंसान अपनी जात को फरामोश कर देता है, एक ऐसी लकीर खींच देता है जो नजर नहीं आती लेकिन मिटाई भी नहीं जा सकती। बाज़ुकात हमारी जिंदगी में ऐसा हो जाता है, कोई इंसान ऐसा आ जाता है। आज हम जो सवाल आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आज जो हम बात आपके साथ करने वाले हैं, क्या हमें किसी दूसरे इंसान के लिए खुद को बदलना चाहिए? क्या हमें किसी दूसरे इंसान के लिए अपनी जात के अंदर, अपने आप के अंदर तब्दीलियां पैदा करनी चाहिए?
आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपका ख्याल क्या है? आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं हमारे और आपके दरमियान राब्ते के कुछ तरीकेकार हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर आप लिखेंगे 101, स्पेस देकर अपना नाम, अपना पैगाम और उसे भेज देंगे 4471 4471।

इसके साथ साथ दूसरे तरीके का सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फैन पेज है facebook.com/fm101 लाहौर। आप हमारे फेसबुक के पेज के कमेंट सेक्शन में अपने होने का हमें एहसास दिला सकते हैं और लाइक कर सकते हैं हमारी पोस्ट को। हमने आपके लिए बड़ी मोहब्बत से एक पोस्ट डिजाइन की है और वहां पे जाके लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने होने का हमें एहसास दिलाइएगा। आज का शेर है, हाय हाय अफसोस कराए के मकानों वाले, हाय अफसोस कराए के मकानों वाले, खदशाए कूच से गमले भी नहीं रख पाते। बात जरा ज्यादा गहराई वाली है, हम इसको जहां पे भी लेके जाना चाहें जा सकते हैं। अल्फाज जो हैं वो बाज़ोकात एक से होते हैं लेकिन उनके मफहूम तब्दील भी हो जाया करते हैं। जैसे रोको रोको मत जाने दो, या फिर रोको मत जाने दो, एक ही तरह के अल्फाज हैं लेकिन मफहूम तब्दील हो जाता है। बस हल्का सा स्ट्रेस पोज और अल्फाज तब्दील नहीं हुए, एहसास तब्दील हो गया है, ख्याल तब्दील हो गया है, अप्रोच डिफरेंट हो गई। लाइव कॉल्स आज प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बना पाऊंगा, आप हमें ऑफ एयर कॉल कर सकते हैं 042 लाहौर का सिटी कोड है 042-111-00101 हमारे और आपके दरमियान रابطे का नंबर। आप चाहें तो अपने दिल की बात कॉल पे मुझे बता सकते हैं या फिर मैसेजेस के थ्रू हमें अपने होने का एहसास दिला सकते हैं। क्या हमें किसी दूसरे इंसान के लिए खुद को बदलना चाहिए, यह आज का मेरा सवाल है। 4471 के पैगामात मैं सबसे पहले पढ़ता हूं। एक ट्रैक और है जो कि मैंने अभी सुना नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है कि अच्छा है। अलविदा अलविदा। डर यह भी होता है कि अगर हम तब्दील नहीं करेंगे तो कहीं वो हमें छोड़कर चला ना जाए। बाज़ोकात लोग अपनी जबान से लफ्ज़ अलविदा नहीं कहते। ओके, अलविदा, दोबारा मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन उनके एक्शन से कभी कभी एहसास होने लगता है कि जैसे वो कहीं दूर हो गए हैं, कहीं कहीं छोड़ कर जाने वाले हैं, या फिर ये इंदिया दे रहे हैं, इस्तारा दे रहे हैं कि पता नहीं बात क्यों हो रही है। वजह थोड़ी सी डिफरेंट है, बात करने का जो एक तरीक़ेकार है उस तरीके में एहसास किस तरह का शामिल है। हमारे न्यूरॉन्स जो हमारे दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं हमारे दिमाग में, जो रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को, दिमाग प्रोसेस कर रहा होता है, न्यूरॉन्स ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, सेंड कर रहे होते हैं, और बार बार उनमें से बहुत सारे ख्यालात को रोक भी रहे होते हैं, नज़र उस तरफ जा नहीं रही होती, अल्फाज जबान पर जो लेके आने हैं दिमाग प्रोसेस कर रहा होता है न्यूरॉन्स के ज़रिए से कि कौन सी बात ज़रूरी है जो अल्फाज के ज़रिए जबान से आवाज़ की सूरत में पहुंचानी है बाहर। ये प्रोसेस जो है इतनी तेज़ी से हो रहा होता है, इतने माइक्रो सेकेंड्स के अंदर तमाम चीज़ें तब्दील हो रही होती हैं, एक एक लम्हे के लिए जो हमारी आंखों के ऊपर जो वीडियो चल रही है, मैं किस तरह से ये बयान करूं कि वो कितना खूबसूरत इंजीनियर है, वो जो हमारा तख्लीककार है, जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको तख्लीक किया है, अंदर से वो न्यूरॉन्स कह रहे होते हैं कि ये जो एहसास है, गुज़िश्ता जो इन्फॉर्मेशन है, जो पास्ट की इन्फॉर्मेशन है, फ्लैशबैक है, जो उसके नतीजे में उस इंसान से जब तुम पहले बात किया करते थे तो एहसास डिफरेंट होता था,
लेकिन अब जब तुम बात कर रहे हो तो वो डिफरेंट हो चुका है, तब्दील हो चुका है। ये वक्त के साथ बदलने वाली तरजीहात की एक किस्म भी हो सकती है, मौसम के बदलने की जिस तरह से एक आदत है। जैसे बाज़ औक़ात बादल आते हैं लेकिन बरसे बगैर गुजर जाते हैं, अब उसका रवैया थोड़ा सा सर्द हो चुका है, रवैया थोड़ा सा कूल्ड है। लगता है कि जैसे उसे तुम्हारे एहसास की गर्माइश मोम नहीं कर रही है, तुम्हारे एहसास की गहराई उसे महसूस नहीं हो रही है, या फिर वो ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है। दिमाग गुज़िश्ता इन्फॉर्मेशंस के कई जवाब हमारे दिमाग में ही हमें दे रहा होता है, हमें बता रहा होता है कि उसकी इस तरह से बात करने की ये वजह हो सकती है। हो सकता है कि वो अलविदा अपने अल्फाज में ना कहना चाहता हो, अपने अंदाज से, अपने एक्शन से ये एहसास दिलाना चाहता हो कि अलविदा।

0: FM 101, हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। FM 101, the sound of new millennium.

थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत से, इतने एहसास से मुझे सुनने के लिए। जब आपकी एहसासात आपकी आवाज़ में, आपकी ज़बान में हमें, या फिर आपके मैसेजेस की सूरत में हम तक पहुंचते हैं, तो हमें बहुत अच्छा एहसास मिलता है। हमारे लिए, हम यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, हम किसी भी रंग में ढल जाते हैं, कोई भी रंग हमें नज़र आए, हमें पसंद आए, हमारी ज़ात में कहीं ना कहीं उसका हिस्सा शामिल हो, तो हम उसमें अपने आप को गूंध लेते हैं, बदल जाते हैं। आपकी तरफ से जब ऐसे मैसेजेस मौसूल होते हैं कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो हम आपके रंग में ढल जाते हैं, आपकी आवाज़ में हम अपनी आवाज़ शामिल कर रहे होते हैं, जो जो आप बोल रहे होते हैं दिल में वही लफ्ज़ निकल रहे होते हैं, तो ये एहसास बहुत नुमाया एहसास देता है, बहुत खूबसूरत एहसास देता है कि सुनने वाले उसी जगह पे मौजूद हैं, उसी रास्ते पे हैं, उसी सफ़र में हैं जहाँ पे हम हैं, उसी आसमान पे हैं। बहुत अच्छा एहसास मिलता है। आपका बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बतों के लिए, इतनी चाहतों के लिए, इतने खूबसूरत मैसेजेस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 4471 पे आपके मैसेजेस में आज मैं ऐसे करूँगा कि आपके कुछ मैसेजेस 4471 से और कुछ फेसबुक से मैं आपके साथ साथ पढ़ता चला जाऊँगा। आप जो भी अपने एहसासात आपके ख्यालात की सूरत में परवाज कर रहे हैं और आप वो पहुँचाना चाहें, तो आप वो लिखकर हमारे फेसबुक कमेंट सेक्शन में या फिर 4471 पर हमें भेजते रहिएगा। हम साथ साथ आज आपके पैगामात भी पढ़ते रहेंगे। आप गीन हमारे साथ हैं, कह रही हैं कि तुम्हें भूलने की कोशिश में हर रोज़ तुम्हें याद करने की आदत पड़ गई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फायज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान, जब आप बोल रहे होते हैं तो मुझे ये एहसास मिल रहा होता है कि आपके ऊपर ये चीज़ बीती है। कोई इतनी खूबसूरती से लफ्ज़ कैसे अदा कर सकता है और इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकता है। बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने अल्फाज को मुकम्मल तौर पर अदा करें, पूरे पूरे अल्फाज बोलें। पता नहीं, बाज़ औक़ात ऐसा भी लगता है कि आप की ज़ात के अंदर कुछ चीज़ें बिल्कुल मेरी ज़ात के जैसी हैं। इसलिए आपका प्रोग्राम यहाँ इस्लामाबाद के अंदर बहुत गहरी खामोशी में सुनते हुए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस्मा हमारे साथ हैं फ्रॉम मरी। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। रेडियो सुन के सुकून मिला आज मुझे। सोशल मीडिया ऐप्स इंसान को थका देती हैं, ये दुनिया इंसान को थका देती है। दूर कहीं आज मुझे रेडियो 101 स्टेशन सुन के अच्छा फील हुआ, पीसफुल, बिकॉज एक वक्त था जब 101 मेरा फेवरेट था बिफोर 5 ईयर्स। 16 साल की एज में स्टार्ट किया था सुनना अधूरी बातें। मुझे अब तन्हा रहना अच्छा लगता है, लोगों से दूर रह के सुकून मिलता है। आपके अंदर कोई ऐसा इमोशन ट्रिगर हुआ है इसमें जिसने आपको दूसरों के ऊपर यकीन से मुनहरिफ कर दिया है, यानी इनकारी हो गई हैं आप। ऐसा हो जाता है हमारी ज़िंदगी में, और इसके बाद जो सफ़र शुरू होता है इसमें, वो अपनी ज़ात की तरफ शुरू होता है, अपने आप से मुलाकात का सफ़र शुरू होता है, अपने ऊपर यकीन करने का एहसास और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता हो जाता है। इसके बाद फिर हम अपनी ज़ात पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, और करना भी ऐसे ही चाहिए, है ना। थैंक यू वेरी मच इसमें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और मैसेज है इस्मा का, कह रही है मरी कुछ दुख, इस्मा मरी से हैं, कुछ दुख इंसान को खामोश कर देते हैं, कुछ ट्रॉमास लाइफ में बहुत बुरे होते हैं,
دل روتا ہے، زبان خاموش، آنسو ختم۔ ہاں، دل روتا ہے، اندر ہی اندر گھٹن کا احساس بھی محسوس ہوتا ہے، زبان خاموش ہو جاتی ہے، آنسو باہر کی جانب ختم نہیں ہوتے۔ آنسو اس میں کبھی بھی، یہ خدا نے ایک خاص طریقہ بنایا ہے، نمکین طریقہ، وہ اندر کی جانب بہ جاتے ہیں اور دل کو ہلکا کر دیتے ہیں، یا پھر دل کو دھو دیتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ بہرحال، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کے میسیجز مجھے موصول ہو رہے ہیں 4471 پر۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل نیٹ ورک فیس بک کے اوپر ہمارا آفیشیل فین پیج facebook.com/FM101 لاہور، میری پوسٹ وہاں پہ پن کر دی گئی، آپ چاہیں وہاں پہ پوسٹ کو لائک کر سکتے ہیں اور کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹس کے ذریعے سے ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر علینا ہمارے ساتھ ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کچھ سال پہلے ایک کلام پڑھا تھا اور وہ مجھے اتنا پسند آیا تھا کہ میں کیونکہ آپ کے سارے پروگرام ریکارڈ کرتی ہوں تو وہ میرے پاس موجود تھا، میں نے ایک ایک لائن سن کر وہ پوری کے پورے کلام کو میں نے لکھا ہے۔ اب میں نے غلط لکھا ہے یا صحیح لکھا ہے، لفظ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن طریقہ کار تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو پلیز پڑھ دیں۔ اچھا، لگتا ہے کہ یہ میں نے کہیں نظم پڑھی ہے، یاد نہیں آ رہا کس شاعر کی۔ رات کا سمندر ہے، رات بھی محبت کی، بات کا اجالا ہے، بات بھی محبت کی، گھات کی ضرورت ہے، گھات بھی محبت کی، نرم گرم خاموشی، سہج سہج سرگوشی، چور چور دروازے، کون چھپ کے آیا ہے، آرزو نے جنگل میں راستہ بنایا ہے، جھیمتے ہوئے آنگن نے درخت سے مل کر کچھ نہ کچھ چھپایا ہے، آسماں کی کھڑکی میں سکھ بھری شرارت سے چاند مسکرایا ہے، چاند مسکرایا ہے، چاندنی نہائی ہے، خوشبوؤں نے موسم میں آگ سی لگائی ہے، عشق نے محبت کی آنکھ چومنا چاہی اور ہوا کے حلقے میں شوق سی نزاکت سے شاخ کسمسائی ہے، رات کا سمندر ہے، رات بھی محبت کی، بات کا اجالا ہے، بات بھی محبت کی، بات کے سویرے میں زندگی کے گھیرے میں روح ٹمٹمائی ہے، وصل جھل ملایا ہے، دل نے بند سینے میں حشر سا اٹھایا ہے، کون کون چھپ کے آیا ہے۔ کون چھپ کے آیا ہے، یہ مجھے بتانا، میں نے اس میں شاعر کا نام ضرور لکھا ہوگا، بہت بہت عرصے بعد یہ دوبارہ، تھینک یو ویری مچ۔

मेरा बहुत प्यारा सा भाई है उस्मान, इन दिनों इस्लामाबाद में है और एक जॉब कर रहे हैं और खास से परेशान हैं। अनवर भाई, अस्सलाम वालेकुम, बहुत सख्त तकलीफ़ में हूँ। बस मैं ये दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी, हर मुश्किल को ख़त्म कर दे, आपके लिए रास्ते बनाए। नज़र रखिएगा, रास्ता आपके सामने कहीं ना कहीं मौजूद होगा। ज़रूरी ये होता है कि हम वो रास्ता पकड़ लें, इख्तियार कर लें। वो आंचल, वो कोई भी हाथ हो सकता है जिसको हम पकड़ लें, लेकिन बाज़ औक़ात हम अपने उसूल, अपने अंदर की कुछ तजुर्बात की रोशनी में हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उसको नहीं मदद के लिए पुकारना चाहिए, ऐसा नहीं। बाज़ औक़ात वो रास्ते आपके सामने इल्हाम की सूरत में दिल के अंदर भी उतारता है, आपको बस देखना होता है कि कौन सा रास्ता है, या फिर हर रास्ते को मुंतखब करके सही रास्ता मिल सकता है। माही हमारे साथ हैं दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 101 की बहुत खूबसूरत आवाज है आरजे फरहान खान, थैंक यू वेरी मच, सलामत रहें। आरजे मुस्तफा, बहुत बहुत शुक्रिया। आरजे निमरा मसूद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, सलामत रहें, आबाद रहें। आरजे मसूद अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आयशा हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शाद मेरा बहुत प्यारा भाई इस्लामाबाद से, बहुत शुक्रिया। आमिर लियाकत मुल्तान से, मेरा बहुत प्यारा सा भाई है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। ठीक है, साथ साथ आपके मैसेजेस जो हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा हम बनाते रहेंगे। अब्दुल नूर हाशमी रिवाज गार्डन से हमारे साथ हैं, 4471 के पैगामात हैं। रहमान जी आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल नूर हाशमी भाई सलामत रहें, आबाद रहें। 1:13, एक और मैं ट्रैक प्रोग्राम का हिस्सा बना रहा हूँ। लाइव कॉल्स मैं आजकल प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बना रहा। आप अगर कॉल करना चाहें मुझे ऑफ़ एयर कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या हमें किसी दूसरे इंसान के लिए अपने आप को बदलना चाहिए, अपने आप को तब्दील करना चाहिए या नहीं। 0421100101 हमारे और आपके दरमियान राब्ते का नंबर है। ये वाला ट्रैक दिल कर रहा है आज सुनने का। इन दिनों वैसे कैफियत इसी तरह की है कि मैं झूम रहा हूं, सरशारी की कैफियत है। बदलने का एहसास भी खुद को तकवीयत दे रहा है, अपने अंदर एक ताकत महसूस कर रहा हूं, जैसे हर चीज से लड़ने की ताकत, जैसे किसी भी नहज पे, किसी भी मुकाम पे पहुंचने की ताकत। मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर ये मौजूद है। हाँ, अगर अभी मेरे पांव सलामत हैं, मैं सांस आराम से ले सकता हूँ, मेरे दोनों हाथ बिल्कुल सलामत हैं, मेरी आंखें सलामत हैं, आवाज़ मेरी ज़बान से अदा होती है, मैं किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला नहीं हूँ, तो सब कुछ ठीक है। मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ कदम बढ़ाना है। आजकल ये जो कैफियत है ये बड़ी खूबसूरत है, आप भी महसूस कर रहे होंगे।

0: FM 101, हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन।
1: FM 101, the sound of new millennium. सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। FM 101, the sound of new millennium.

बजाहिर ये सवाल ऐसा लग सकता है कि बहुत सिंपल है, ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ये एक आम सा सवाल है जो अक्सर रेडियो ब्रॉडकास्टर्स पूछ चुके हैं, लेकिन हर इंसान के दिमाग की सोच की ख्याल की वसत डिफरेंट होती है, अप्रोच डिफरेंट होती है। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस वक्त जो इस सवाल के मुख्तलिफ नुकात हो सकते हैं, ख्यालात हो सकते हैं, सवालात हो सकते हैं, वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। चाहे जितना भी ये सिंपल सवाल हो, लेकिन अगर इसके अंदर थोड़ा सा और ज्यादा गहराई में उतरने की कोशिश करें, उतरकर देखने की कोशिश करें, इसके पीछे कहीं ना कहीं मोहब्बत का पहलू भी नजर आएगा, खौफ का पहलू भी नजर आएगा, इसमें अटैचमेंट भी महसूस होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी इसमें महसूस होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो इन सब चीजों में सबसे नुमाया है वो इंसान की अपनी शनाख्त है, और वो भी महसूस होगी। हमेशा जो तब्दीली होती है, जरूरी नहीं कि वो बुरी हो। कभी कोई इंसान हमारी जिंदगी में आता है और हमारी वो खामियां हमें दिखा देता है जिन्हें हम बरसों से इग्नोर कर रहे होते हैं। हमें एहसास होता है कि हम बहुत जल्द गुस्सा करने लग जाते हैं, हम दूसरों को सुनने की बजाय सिर्फ जवाब देना जानते हैं। हमारी ईगो हमारी जात से भी बड़ी है, या शायद हमने अपनी ईगो को मोहब्बत से भी बड़ा बना दिया है। दूसरे के जज्बात को समझने से पहले हम फैसला सुना देते हैं, और फिर अचानक एक दिन कोई आईना दिखाता है, वो कहता है आप में ये चीज अच्छी नहीं। इस बार पहली मर्तबा हम डिफेंसिव हो जाते हैं, थोड़ा सा अपने अंदर हम ये महसूस करने लगते हैं कि ये तो मेरे ऊपर एक चोट मार रहा है, ये तो मुझे शायद तोड़ने की कोशिश है। फिर अचानक एक अंदर ख्याल पैदा होता है कि ये वो डिफरेंट है, थोड़ा सा वो ठीक कह रहा है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम अपने ही फिलोसफिकल थिंकिंग को अपनी जात के अंदर शामिल होता हुआ महसूस करते हैं, जबकि वो एक ख्याल है, वो किताब में पढ़ी हुई एक कहावत हो सकती है, किसी दूसरे इंसान का तजुर्बा हो सकती है, लेकिन हम तो डिफरेंट हैं, हम तो अलग हैं। हमें जो ये चोट पड़ी है, हमें थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा है, हमें थोड़ा सा डिफेंसिव होना पड़ा है, लेकिन फिर भी कह तो वो सही रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ख्याल है ये सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह नहीं कर रहा, ये हमारी जात को हमसे दूर नहीं कर रहा, हम अपनी जात को खो नहीं रहे। इस ख्याल को खोना नहीं कह सकते हम, इसको इनाम समझ सकते हैं हम, इसको रिवॉर्ड समझ सकते हैं हम। सेल्फ ग्रोथ के हवाले से किसी ने हमारे ऊपर दाव लगाया है, किसी ने हमारा हाथ पकड़ने की कोशिश की है, किसी ने हमको बताने की कोशिश की है, लेकिन मसला जानते हैं कहां से शुरू होता है? सबसे बड़ा मसला यकीन करें, मसला वहां से शुरू होता है जब हम अपनी खामियां नहीं बल्कि अपनी जात बदलने लग जाते हैं, अपनी जात को बदलने की कोशिश करने लगते हैं। अपनी जात के अंदर वो जो एक बड़ा नर्म लतीफ और रूहानी एहसास है, वो जो अमरे रब्बी है, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते, और हमें लगता है कि हम उसे बदलना है, जबकि हमें इस डिवाइस के अंदर मौजूद जाहिरी तौर पर नजर आने वाली खामियों को बदलने की कोशिश करनी होती है। बहरहाल

बिस्मा हमारे साथ मौजूद रहीं ऑफियर कॉल पे, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्मा, सलामत रहें, आबाद रहें। पहले आपने ये कहा कि ये सैड टॉपिक है, जब मैंने थोड़ा सा आपको बताया तो फिर आपने ये कहा कि नहीं शायद मैं सैड हूँ, मुझे इसलिए सैड लग रहा है ये टॉपिक। फिर आपने ये बताया कि मेरी वालिदा कभी कभी मुझे ये कहती हैं कि तुम्हारे अंदर ये खामी है वो खामी है, अपने आप को बदल लो, तो वो हमारे भले के लिए कहती हैं, हमें बदलना चाहिए। बहुत शुक्रिया बिस्मा आपने मुझे कॉल की, सलामत रहें आबाद रहें। इसके साथ साथ हमें इरम की कॉल आई। इरम बहुत शुक्रिया, आपने कहा कि फर्स्ट टाइम मैंने आपको सुना है, और यकीन करें उर्दू और आपकी मतलब लहजा, आपका मफहूम बात का ये था कि आपका जो लहजा है वो खूबसूरत है। कराची से आपका ताल्लुक है और ड्राइविंग के दौरान आप मुझे सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और उन्होंने ये कहा कि वो जो अक्सर आरजेस कहते हैं ड्राइविंग के हवाले से, वो आज आपने ज़रूर कहना है, क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने कहते ऐसा सुना। जी हाँ, मैं भी वो कहा करता हूँ कि ड्राइविंग के दौरान जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो प्लीज़ सीट बेल्ट का इस्तेमाल इसलिए करें कि ये आपकी ज़िंदगी की हिफाजत करने की कोशिश करती है, ना कि आपको चलान से बचाती है, ठीक है ना। बहरहाल अब तो काफ़ी देर हो गई, उसके बाद भी हमने कई ट्रैक्स शामिल किए, तो अभी पता नहीं आप ड्राइव कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, आप सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गुलिस्तान जौहर की तरफ कहीं आप सफर कर रही थी, आपने मुझे ये बताया था, बहुत शुक्रिया। और सवाल के जवाब के हवाले से आपने ये बताया था कि मैंने अपनी जात को चेंज किया है, मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी खामियां थीं जो मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे ये तब्दील करनी चाहिए, जब लोग मुझसे दूर होने लगे उन खामियों की वजह से, इरिटेट होने लगे मेरी जात की वजह से, तब मैंने अपने आप के अंदर चेंजेस की। सो मुझे ऐसा लगता है कि चेंज कर लेना चाहिए अपने आप को, और मेरी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान आया था और वो अभी भी मेरी साथ का हिस्सा है, मेरे साथ शाम मतलब कार में भी मौजूद है। फिर आपने उनकी तरफ मोबाइल बढ़ाया, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने भी तारीफी अल्फाज कहे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इरम और उमर आपको अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे, एक साथ रखे। सीरत फातिमा हमारे साथ हैं सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर, हमारे ऑफिशियल इरम और उमर आपको अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे, एक साथ रखे।

डेडिकेट किया है, ठीक है ना। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी दुआएं आप दे रहे थे, हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। यकीन करें कि हम जब किसी के हक में पॉजिटिव रहते हुए जब कोई दुआ करते हैं तो वो सबसे पहले हमारी अपनी ज़ात के लिए कबूल होती है। तो ये बात याद रखा करें कि जो भी आप दुआ कर रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं वो सबसे पहले आपके लिए है। और ऑस्ट्रेलिया से मुझे अब उन्होंने बताया कि उनके वालदैन उनको बेबी कहा करते थे, तो इसलिए वो यही नाम मतलब कि बताना चाहती हैं। सो बेबी ने हमें कॉल की ऑस्ट्रेलिया से, और बहुत खूबसूरत ख्यालात थे आपके बदलने के हवाले से। उन्होंने ये बताया कि इंसान को जब बदलना होता है और किसी ख़ास शख्स के लिए बदलना होता है तो उसमें मोहब्बत शामिल होती है, तो हमें ज़रूर बदलना चाहिए। और जो इतना खूबसूरत रिश्ता है अगर अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाया है किसी इंसान को, और आप उस रिश्ता इस्दवाज में बन चुके हैं, तो आपको उस इंसान के लिए भी बदलना चाहिए। अगर आपके अंदर कुछ ना कुछ खामियां हैं, कोई ना कोई ऐसी बात है, आपको बदलना चाहिए। वरना मोहब्बत में तो कोई किसी को बदलता नहीं है। दो लोग जब मोहब्बत में होते हैं तो वो एक दूसरे के रंग में रंगे हुए होते हैं, उनको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू था बेबी। बहरहाल बाज़ औक़ात ऐसा होता है, दो लोग जो मोहब्बत में आते हैं वो ज़रा डिफरेंट होते हैं, लेकिन लिखा होता है, तय होता है, मुलाकात का वक्त तय होता है, मुलाकात होती है, बात होती है, और फिर वो एक साथ होना तय होता है। इसलिए उसके बाद इंसान के अंदर जो कुछ चेंजेस आते हैं उनमें ये भी चेंज होता है कि हाँ, मेरे अंदर तो बहुत सी खामियां हैं यार, मुझे अपने आप को चेंज करना, मुझे उसके काबिल बनना, वो इतनी अच्छी है, वो इतना अच्छा है, मैं अपने आप को चेंज करूंगा। बाज़ औक़ात तो इंसान इसी डर में उससे मुकम्मल बात नहीं कर पाता, और ये सिर्फ उसकी अपनी ज़ात का एक आईना होता है, तस्वीर का उसका रुख होता है। जो दूसरा रुख है, वो जो दूसरा इंसान है, वो कहाँ गया? इसमें दोबारा से मैं का एक अंसर भी आ जाता है। आप अपनी ज़ात के बारे में बता भी सकते हैं, ताकि उस इंसान को जिससे आप ये सोचकर थोड़ा सा दूर हो रहे हैं कि मेरे अंदर तो बहुत सी खामियाँ हैं, ये मैं है जो आपकी है, ये अगर ख्याल आपके जहन में आया है तो आप बदल चुके हैं। ये ख्याल अगर आपके जहन में आया है तो आप उसके लिए अपनी ज़ात के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां कर चुके हैं। सो अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको खौफ आ रहा है, तो वो खौफ उससे शेयर कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, तुमसे मिलने से पहले मेरी ये आदतें थी, मेरे अंदर ये चीज़ें शामिल थी, अब जब तुमसे मिला हूं तो वो बुरी लगने लगी हैं। पहले उनके बुरा या अच्छा होने के बारे में मैंने सोचा नहीं था, अभी आगाज है। तो ये जो मेरे और तुम्हारे दरमियान एक ताल्लुक है, ये जो एक गहरा एहसास महसूस हो रहा है, जो और ज्यादा गहरा होता जा रहा है वक्त के साथ, इसके बहुत ज्यादा गहरा होने से पहले कि ये बाद में अगर तुम इनकार करो तो मैं मुकम्मल टूट जाऊं, तो पहले बता दूं कि मेरे अंदर ये चीज़ें थी, अब बताओ तुम्हें रहना है या नहीं रहना है, तुम्हें रुकना है या नहीं रहना है। दोनों तरफ से बात कर रहा हूं। अच्छा, सीरत फातिमा कह रही है कि हमें गिफ्ट की है जिंदगी, गिफ्ट की है, उसकी बेकदरी गुनाह है, अपने लिए और अपनों के लिए इंसान को बदलना चाहिए। ठीक है, उसामा बिन इमदाद हमारे साथ हैं, बहुत पुराने लिसनर हैं, बहुत प्यारे भाई हैं, और बहुत अरसे से सुन रहे हैं, हमेशा मैसेज करते हैं, बहुत अच्छा एहसास मिलता है। जद्दा से सुन रहा हूँ, जद्दा कॉर्निश पे बैठा हूँ, और एक तरफ समुंदर की तेज लहरें और दूसरी तरफ आपकी धीमी आवाज़ बहुत लुत्फ दे रही है। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज रहमान भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद। उस्मान, ओह माय गॉड, सच में मैं तो वो मंजर महसूस कर रहा हूं, मैं तो वो जो लहरें साहिल से आके हल्का सा टकराती हैं,
उस आवाज को महसूस कर रहा हूँ।

उस टकराने से पहले, उस टकराव से पहले वो जो लहरें आ रही होती हैं साहिले समुंदर की तरफ, मैं तो वो भी महसूस कर रहा हूं। सामने आसमान पे चांद भी है या नहीं है, एक तरफ तो आवाज है, दूसरी तरफ समुंदर की लहरें हैं। और सामने आसमान पर अगर सितारे भी हैं, अगर चांद भी नजर आ रहे हैं, बाकी सारी बर्की कमकमे जो ये आर्टिफिशियल रोशनियां हैं, अगर ये मौजूद नहीं है तो बहुत अच्छा एहसास है, बहुत खूबसूरत एहसास है। मैं वहां पे आऊंगा तो तुमसे बात करूंगा उस्मान, फिर वो मिलकर देखेंगे मंजर। वैसे ये मेरा मेरा ख्वाब है कि मैं अगर जाऊं तो सबसे पहले उस मुल्क में जाऊं, सऊदी अरब। फैसल अब्बास हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम टू द शो फ्रॉम लाहौर। बहुत शुक्रिया फैसल अब्बास, दिल भेजा आपने। मासूम लड़की हमारे साथ हैं, इट्स मी इस्मा। अगर अच्छा, आपके 4471 पे भी पैगाम आता है इस्मा, बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पे भी मैसेज किया। इस्मा कह रही है, अगर आप किसी से अनलिमिटेड मोहब्बत करते हो तो आपको चाहिए कि आप खुद को उसके लिए बदल लो, जैसा वो चाहता है वैसे बन जाओ। मैंने नहीं बदला था खुद को, शायद इसलिए आज मैं अज़ियत में हूँ। मैंने खो दिया वो सब जो मुझे खोने से डर लगता था। इसका एक दूसरा एंगल भी हो सकता है इसमें, इसका एक दूसरा एंगल भी हो सकता है। गुफ्तगू, बात बात करना, बदलने से मुराद ये भी हो सकता है कि आपने बातचीत ही खत्म कर दी हो, तो फिर इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं। अगर मोहब्बत का एहसास उसने भी आपको मुकम्मल नुमाया दिया था, वो भी उसी जगह पे मौजूद था, तो फिर आधी गलती उसकी भी शुमार करते हैं। अली अब्बासी हमारे साथ हैं, नाइस शो, स्टे ब्लेस्ड, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस्लाम मेरा बहुत प्यारा भाई इस्लाम गुज्जर हमारे साथ कह रहे हैं, इस्लाम सर आज फिर हसन कूज़े अगर वही अंदाज से हो जाए, ख्वाहिश है। यार इस्लाम, ये मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है ना? इसके बाद जब मैं ये हसन कूज़े अगर पढ़ूंगा तो एक साल बीत चुका होगा, अगर मैं यहाँ पे रहा 101 पे, एक साल के बाद दोबारा पढ़ूंगा। बहुत बहुत बहुत बार पढ़ चुका हूँ मैं, लेकिन अब तुमने रिक्वेस्ट की है, इतनी मोहब्बत से कहा है कि ख्वाहिश है, तो मैं ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ तुम्हारे लिए।

इस्लाम आज इसका चौथा हिस्सा पढ़ रहा हूँ। हसन कूजागर के चार हिस्से हैं जिनमें मैं अक्सर पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ता रहता हूँ। इनमें से एक हिस्सा मैंने शामिल करना बंद कर दिया था, लेकिन अभी चौथा हिस्सा पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? जहांजाद, कैसे हजारों बरस बाद एक शहर मदफून की हर गली में मेरे जामो मीना गुलदा के रेजे मिले। जहांजाद, कैसे हजारों बरस बाद एक शहर मदफून की हर गली में मेरे जामो मीना गुलदा के रेजे मिले हैं कि जैसे वो इस शहर बर्बाद का हाफिजा हूं। हसन नाम का एक जवां कूजागर एक नए शहर में अपने कूजे बनाता हुआ, इश्क करता हुआ, अपने माजी के तारों में हमसे पिरोया गया है, हम ही में कि जैसे हम ही हों समोया गया है। कि हम तुम वो बारिश के कतरे थे जो रात भर से हजारों बरस रिंगती, रात भर एक दरीचे के शीशों पे गिरते हुए सांप लहरें बनाते रहे हैं, और अब इस जगह वक्त की सुबह होने से पहले ये हम और ये नौजवान कूजागर एक रोया में फिर से पिरोए गए हैं। जहांजाद, ये कैसा कोहना परस्तों का अंबुआ कूजों की लाशों में उतरा है। देखो, ये वो लोग हैं जिनकी आंखें कभी जामो मीना की लिम तक न पहुंचे। यही आज इस रंगो रोगन की मखलूक के बेजा को फिर से उलटने पलटने लगे हैं। ये इनके तले गम की चिंगारियां पा सकेंगे जो तारीख को खा गई थी। वो तूफान, वो आंधियां पा सकेंगे जो हर चीख को खा गई थी। इन्हें क्या खबर किस धनक से मेरे रंग आए, मेरे और इस नौजवान कूजागर के। इन्हें क्या खबर कौन सी तितलियों के परों से, इन्हें क्या खबर कौन से हुस्न से, कौन सी जात से, किस खद्दो खाल से मैंने कूजों के चेहरे उतारे। ये सब लोग अपने असीरों में हैं। जमाना जहांजाद अफजू जदा बुर्ज है और ये लोग उसके असीरों में हैं। जवां कूजागर हंस रहा है, ये मासूम वहशी के अपने ही कामत से यौलीदा दामन है जो, या किसी अजमत नारसा के। इन्हें क्या खबर कैसा आसेब मुबर्रम मेरे गार सीने पे था जिसने मुझसे और इस कूजागर से कहा है, हसन कूजागर जाग, ए हसन कूजागर जाग, दर्दे रिसालत का रोजे बशारत तेरे जामो मीना की तशना लबी तक पहुंचने लगा है। यही वो निदा जिसके पीछे हसन नाम का ये जवां कूजागर भी पयापे रवा है, जमा से जमा तक, खिजा से खिजा तक। जहांजाद, मैंने, हसन कूजागर ने बेआबां बेआबां ये दर्दे रिसालत सहा है। हजारों बरस बाद ये लोग रेजों को चुनते हुए जान सकते हैं कैसे कि मेरे गिलो खाक के रंगो रोगन तेरे नाजुक आजा के रंगों से मिलकर अबद की सदा बन गए थे। मैं अपने मसामों से हर पूर से तेरी बाहों की पेनाइयां जज्ब करता रहा था कि हर आने वाले की आंखों के माबद पे जाके चढ़ाऊं, ये रेजों की तहजीब पालें तो पालें, हसन कूजागर को कहां ला सकेंगे, ये उसके पसीने के कतरे कहां गिन सकेंगे, ये फन की तजल्ली का साया कहां पा सकेंगे जो बढ़ता गया है जमा से जमा तक, खिजा से खिजा तक। जो हर नौजवान कूजागर की नई जात में और बढ़ता चला जा रहा है, वो फन की तजल्ली का साया कि जिसकी बदौलत हमा इश्क है हम, हमा कूजागर हम, हमा तन खबर हम, खुदा की तरह अपने फन के खुदा सर बसर हम। आरजुएं कभी पायाब तो सरयाब कभी, तैरने लगते हैं बेहोशी की आंखों में कई चेहरे जो देखे भी ना हो, कभी देखे हो किसी ने तो सुराग उनका कहां से पाए, कि सेइफा हुए अंधुआ के आदाब कभी, आरजुएं कभी पायाब तो सरयाब कभी। ये कूजों के लाशें जो इनके लिए हैं किसी दास्ताने फना के, वगैरह वगैरह हमारी अजा है,
हमारी तलब का निशा है। ये अपने सुकूत अजल में भी ये कह रहे हैं, वो आंखें हम ही हैं जो अंदर खुली हैं, तुम्हें देखती हैं, हर एक दर्द को भांपती हैं, हर एक हुस्न के राज को जानती हैं कि हम एक सुनसान हुजरे की उस रात की आरजू हैं, जहां एक चेहरा दरख्तों की शाखों की मानिंद एक और चेहरे पे झुककर हर इंसान के सीने में एक बरगे गुल रख गया था, उसी शब का दुस्दीदा बोसा हम ही हैं। कमरे की दूसरी तरफ, शीशे की दूसरी तरफ मुझे वसीम अहमद साहब नजर आ रहे हैं। वसीम भाई सलामत रहें, खुश आमदेद कहते हैं आपको। एक ट्रैक शामिल कर रहा हूं, वापस आता हूं, आपके पैगामात पढ़ूंगा और फिर उसके बाद इजाजत है।

बहुत मुश्किल काम है। नाम बताना बहुत मुश्किल है। बाय द वे, आपकी जो पैगामात मुझे मौसूल हो रहे हैं फेसबुक पर, वो मैं शामिल करने जा रहा हूं। और यस, जल्दी से हम आपके पैगामात पढ़ेंगे सारे के सारे। गुलाब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक गुलाब, आप कैसे हैं? मासूम लड़की कह रही है जो ये पढ़ लेगा उसको समझ आ जाएगी। ठीक है। ताहिरा मसूद हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। मासूम लड़की इस्मा हमारे साथ कह रही हैं, 21 साल की एज में इतने दुख मिले हैं, कभी सोचा भी नहीं था मैंने। मुझे लगा था बड़े हो के अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीऊँगी, लेकिन ज़िंदगी के इम्तिहान ही ख़त्म नहीं हो रहे। कम एज में इंसान को दुख क्यों मिलते हैं? उसे निखारने के लिए, उसे बड़ा बनाने के लिए, उसे जिंदगी समझाने के लिए, जिंदगी को गुजरने या गुजारने के लिए या जीने के लिए जो हमें चाहिए होता है, स्ट्रांग बनाने के लिए। लोग इतने बेहिस क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपनी कदर नहीं कर रहे होते। ताहिरा हमारे साथ कह रही है, मुद्दत से खामोशी है, चलो आज मर चलें, 2-4 दिन तो घर में जरा अंजुमन रहे। रीड फेसबुक कमेंट ब्रदर, कल हमारे घर पर महफिल है, मुझे अब सोना है। उज़्मा एजाज हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम आरजे रहमान, सलामत रहें, आपका शो बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आयशा खान हमारे साथ हैं, कभी उसके लिए जिंदगी को ना बदलो जैसे आप जिसे आपकी कदर ना हो, उसके लिए बदलो जो आपसे मोहब्बत करते हैं, या जिसे आप मोहब्बत करते हैं उसके लिए बदलो। ठीक है। ताहिरा मसूद तालियां बजा रही हैं, पता नहीं किस वजह से। बहरहाल ताहिरा कह रही हैं कि दिल पे ऐसे भी अजाबों को उतरते देखा हमने, चुपचाप उसे खुद से बिछड़ते देखा, उसको सोचा तो हर एक सोच में खुशबू उतरी, उसको लिखा तो हर एक लफ्ज महकते देखा, याद आ जाए तो काबू नहीं रहता दिल पर, वरना दुनिया ने कहा हमको तड़पते देखा, तेरी सूरत को फकत आंख नहीं तरसी है, रास्तों को भी तेरे याद में रोते देखा, हम मोहब्बत के लिए आज भी दीवाने हैं, यह अलग बात कि तूने नहीं मुड़के देखा, दिल सुलगता है तो मसूद निखर जाता है, मौजज़ा ये भी तेरी याद में होते देखा। उज़्मा एजाज हमारे साथ हैं, कह रही हैं, कुछ जख्म वक्त नहीं देता बल्कि वो लोग देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। जिंदगी का यही तल्ख सबक हमें मजबूत भी बनाता है और ये सिखाता है कि असल सहारा सिर्फ अल्लाह की जात है। ठीक है। उज़्मा एजाज कह रही हैं कि पहुंचे जो सरे अर्श तो नादार बहुत थे, पहुंचे जो सरे अर्श तो नादार बहुत थे, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार बहुत थे, घर डूब गया और उन्हें आवाज भी न दी, हालांकि मेरे सिलसिले उस पार बहुत थे, छत पड़ने का वक्त आया तो कोई नहीं आया, दीवार गिराने के रजाकार बहुत थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उज़्मा ने बहुत सारी शायरी भेजी है। एक और है कि रंजे फिराक यार में रुस्वा नहीं हुआ, इतना मैं चुप हुआ कि तमाशा नहीं हुआ, ऐसा सफर है जिसमें कोई हम सफर नहीं, रास्ता है उस तरफ, रास्ता है इस तरह का जो देखा नहीं हुआ, मुश्किल हुआ है रहना हमें उस दियार में, बरसों यहां रहे हैं ये अपना नहीं हुआ। ठीक है। मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त तुझसे मिलने की आरजू की है, तुझे तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरी खुशबू से गुफ्तगू की है, जॉन एलिया।

मलिक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी हमारे साथ, मोहतरम जनाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। आपने कहा मनीना बिलाल कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम आरजे रहमान, वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सलाम सर, आज फिर अच्छा ये मैंने पढ़ लिया था। अच्छा ये वो पैगामात हैं जो मैं अपनी आईडी पे पढ़ रहा हूँ। आईडी का नाम है रहमान अनवर और आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। अमन शाल भट्ट हमारे साथ हैं, स्टाइलिश प्रिंस हमारे साथ हैं, मरियम महमूद थैंक यू वेरी मच, अनूदुल इशराफ, मरीना बिलाल, निमरा मसूद साहिबा, ताहिरा मसूद, उस्ताद नियाज अली बहुत बहुत शुक्रिया, राना अवैस, मलिक वसीम आवान, महजबीन थैंक यू वेरी मच। सो मैंने कोशिश की है कि मैं आपके सारे के सारे मैसेजेस जो हैं वो पढ़ लूँ। अगर कोई मैसेज रह गया और मेरी नज़र नहीं गई तो इंतहाई माजरत। अताउल्ला हमारे साथ, माही थैंक यू वेरी मच, फरहान भाई, मुस्तफ़ा थैंक यू वेरी मच, फहद बहुत बहुत शुक्रिया, निमरा साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, रोज़ीना, रोज़ीना वन वन की बड़ी खूबसूरत आवाज़ रही हैं, आरजे रोज़ीना में सुन रही, थैंक यू वेरी मच, सजावल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, मियाँ जाहिद बहुत बहुत शुक्रिया, आमिर लियाकत, शाद यूसुफ, मसूद भाई, बाजी आयशा मुझे सुन रही हैं भक्कर से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, शाहिद नियाज अवान थैंक यू वेरी मच, आज यार हम बट बहुत बहुत शुक्रिया, नीस जट थैंक यू वेरी मच, मैमूना बाजी मुझे सुन रही है मंडी बहावुद्दीन से, बहुत शुक्रिया, इकरा थैंक यू वेरी मच, महविश मुझे सुन रही हैं गुजरांवाला से, बहुत बहुत शुक्रिया, सल्फिया थैंक यू वेरी मच, एहसन आफरीदी मुझे फैसलाबाद से सुन रहे हैं, जिले शाह बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बाजी नुसरत मुझे सुन रही हैं लाहौर में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, फराज थैंक यू वेरी मच, मोहसिन अली हनी बहुत बहुत शुक्रिया, अजीम जट थैंक यू वेरी मच, सलमान थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर नदीम थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर सुमायरा बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जिशान थैंक यू वेरी मच, सिद्रा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, रजा बहुत बहुत शुक्रिया, अली थैंक यू वेरी मच, वन वन की बहुत खूबसूरत आवाज़ है, आरजे अली रजा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये कुछ आपके नाम पैगामात और वसीम भाई तशरीफ ला चुके हैं, इजाज़त लेने का वक्त आन पहुंचा है, कोई बात बुरी लगी हो तिफले मकतब समझकर ये सोच कर कि अभी सीखने के अमल में हूँ दरगुजर कर दीजिएगा या फिर माफ़ कर दीजिएगा, बड़े लोग हैं आप, लेकिन अगर कोई एक बात किसी एक इंसान के लिए भी मशल राह हो गई तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आने का प्रोग्राम करने का मकसद पूरा हो जाता है। इस टॉपिक को अधूरा छोड़े जा रहा हूँ, कल के प्रोग्राम में आके इसके कुछ और हिस्से आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कल रात 12 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लोकल प्रोग्राम होता है, और आखिर में जाते हुए ये वाला ट्रैक सजाद अली और फरहीन रजा जाफरी की बहुत खूबसूरत आवाज़ है, बड़ा खूबसूरत ट्रैक है। मैं ज़मीन से एक दिन आसमां को आऊँगा, तुम पहले आसमां पर मेरा इंतज़ार करना, अल्लाह हामी नासिर।

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا
1: دس از ایف ایم 101
2: ٹریپل 1 ٹریپل 101 FM.

0: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
1: दिस इज एफएम 101।
2: Smile and dial 111 111 FM.

तुम जमाना आशना, तुम जमाना आशना, तुमसे जमाना आशना, तुम जमाना आशना, तुमसे जमाना आशना, और हम अपने लिए भी अजनबी ना आशना। तुम जमाना आशना, तुमसे जमाना आशना, और हम अपने लिए भी अजनबी ना आशना। रास्ते भर की रफाकत भी बहुत है जाने मन, रास्ते भर की भी रफाकत भी बहुत है जाने मन, वरना मंजिल पर पहुंचकर कौन किसका आशना। तुम जमाना आशना, तुमसे जमाना आशना, और हम अपने लिए भी अजनबी ना आशना। रास्ते भर की रफाकत भी बहुत है जाने मन, वरना मंजिल पर पहुंचकर कौन किसका आशना। अब कि ऐसी आंधियां उठी कि सूरज बुझ गए, अब कि ऐसी आंधियां उठी कि सूरज बुझ गए, हाय वो शमे के झोंकों से भी थी ना आशना। अब कि ऐसी आंधियां उठी कि सूरज बुझ गए, हाय वो शमे के झोंकों से भी थी ना आशना। मुद्दतें गुजरी इसी बस्ती में लेकिन अब तलक, मुद्दतें गुजरी इसी बस्ती में लेकिन अब तलक, लोग ना वाकिफ फिजा बेगाना, हम ना आशना। हम भरे शहरों में भी तन्हा है जाने किस तरह, हम भरे शहरों में भी तन्हा है जाने किस तरह, लोग वीरानों में कर लेते हैं पैदा आशना। हम भरे शहरों में भी तन्हा है जाने किस तरह, लोग वीरानों में कर लेते हैं पैदा आशना। खल्क शबनम के लिए दामन कुशा सहराओं में, क्या खबर अबरे करम है सिर्फ दरिया आशना। अपनी बर्बादी पे कितने खुश थे हम लेकिन फराज, अपनी बर्बादी पे कितने खुश थे हम लेकिन फराज, दोस्त दुश्मन का निकल आया है अपना आशना। दोस्त दुश्मन का निकल आया है अपना आशना। तुम जमाना आशना, तुमसे जमाना आशना, और हम अपने लिए भी अजनबी ना आशना। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामईन, 101 FM पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियोज से ये आवाज है आपके अपने मेजबान वसीम अहमद की। प्रोग्राम आपका जाना पहचाना गुंचे शौक, मेरा आपका साथ होता है हर बुध की शब यानी बुध और जुमेरात की शब में रात के 2 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक। प्रेम बेस करता है शायरी के ऊपर, ज़्यादातर हम इसमें कोशिश करते हैं कि आपकी पसंद की जो शायरी है वो प्रोग्राम में शामिल की जाए, खूबसूरत पोइट्री जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा बने और आप उसमें भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करें। और आप माफ़ कीजिएगा, और आप माशाल्लाह से भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करते भी हैं, तो मेरी हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि जब आप प्रोग्राम में आएँ तो अपने मैसेजेस के थ्रू, अपने कमेंट्स के थ्रू आप अपने खूबसूरत अशआर हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। और जब आप हमारे साथ बातचीत करें यानी टेलीफोन पे लाइव कॉल्स में या फिर कॉल्स में, तब भी आपके पास कोई खूबसूरत शायरी अगर मौजूद होगी तो प्रोग्राम का रंग और ज़्यादा निखर जाएगा और ज़्यादा खूबसूरती प्रोग्राम में आ जाएगी। हमेशा की तरह कुछ बातें हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, कुछ ज़िंदगी के बारे में, कुछ रियलिटी के बारे में,
कुछ हकीकतों के बारे में, कुछ तन्हाई के बारे में, कुछ मोहब्बत के बारे में, कुछ महसूसात के बारे में, कुछ एहसासात के बारे में, क्योंकि ये टाइम होता है जिसमें हम अपने आप से बात कर सकते हैं, अपने आप से सवाल कर सकते हैं, अपने आप से जवाब मांग सकते हैं, अपने दिल में झांक के देख सकते हैं कि हमारे दिल में कौन मौजूद है, किसको हम देखना चाहते हैं, कौन हमारे दिल से निकल चुका है, कौन आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिल से दूर हो रहा है और कौन आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिल के करीब होता जा रहा है। किसकी याद हमें हमा वक्त तरसाती है, तड़पाती है, किसको हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं और वो भूलता नहीं है। कहते हैं कि कुछ जुदाइयां जो होती हैं वो फासले पैदा नहीं करती, कुछ जुदाइयां फासले पैदा नहीं करती, इंसान के अंदर एक मुस्तकिल मौसम पैदा कर देती हैं, एक ऐसा मौसम जो साकतो जामद होता है, ना उसमें कभी बहार आती है, ना उसमें कभी खिजां आती है, ना उसमें कभी आंधियां चलती हैं, ना कभी उसमें बरसातें होती हैं, बल्कि जिस तरह से वो सोचता है वैसे वैसे वो मौसम बदलते जाते हैं, मगर एक मौसम मुस्तकिल मौसम होता है और वो मौसम होता है याद का मौसम, प्यार का मौसम, दिल में किसी को बसाए हुए एक लतीफ एहसास हमेशा अपने साथ मौजूद होता है और वो उसी मौसम में उसी मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसी मौसम में रहना चाहता है, चाहे कोई कितनी ही दूर क्यों ना चला जाए, कितने ही पास क्यों ना हो और कितनी ही जुदाई दरमियान में ना आ जाए, मगर फिर भी उन्हें फासले जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते। इंसान के अंदर जो एक मौसम ठहर जाता है वो वही मौसम होता है जिसमें हम जब दिल चाहता है अपने दिल के अंदर झांक के देखते हैं और हमें वो मौसम भी वही मिलता है, वो शख्स भी वही मिलता है जिससे हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, या वो माजी की खूबसूरत यादें जो दिल के अंदर छिपी होती हैं उन्हें हम देखते रहते हैं, कभी कभी उन्हें जख्मों की तरह कुरेदते भी रहते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी जुदाई हो गई है, बज़ाहिर हम एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, मगर ऐसा होता नहीं है असल में। वो कहते हैं कि जिनको हम याद करते हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वो भी हमें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं, या अगर कोई हमें याद कर रहा होता है तो हमारे दिल में उसकी याद उसी वक्त आती है, उसी वक्त हम उसे भी याद कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो मोहब्बत का सिलसिला है ये एक दूसरे की रूह के अंदर जो रूह पहुंच जाती है ना, ये उनके मिलाप का सिलसिला है। बज़ाहिर हम कितने दूर क्यों ना हों, बज़ाहिर हम एक दुनिया के एक कोने पे हों और दूसरा दूसरे कोने पे हो, मगर फिर भी वो मुलाकात जो है वो मौजूद होती है, वो मौसम मौजूद होता है। सुनते रहिए 101.5 पाकिस्तान, अपने मेज़बान वसीम अहमद के साथ रात का ये खूबसूरत पहर। खूबसूरत पहर इसलिए कि इसमें आपके लिए बहुत सारी पोइट्री मेरे पास मौजूद होती है, बहुत सारी शायरी मेरे पास मौजूद होती है, कुछ नायाब किस्म के सॉन्ग्स भी मौजूद होते हैं, कभी हम गज़ल भी प्ले करते हैं, कभी हम गीत भी प्ले करते हैं, तो आपकी पसंद का गाना भी हम कोशिश करते हैं कि अगर वो हमारे प्रोग्राम की थीम के साथ मैच कर रहा हो तो हम उसे भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सबसे पहले है राबते का जो सिलसिला है वो मैं बता दूं कि कौन सा है। एक तो है जनाब फेसबुक का, जिसका पता है www.facebook.com/fm101lahore। दूसरा सिलसिला है जनाब एसएमएस का, आप एसएमएस हमें कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, 101L लिखेंगे, बल्कि अभी आप क्योंकि इंटरनेशनल शो हैं तो आप लिखेंगे 101, उसके बाद स्पेस देंगे, अपना पैगाम लिखेंगे और उसे भेज देंगे 4471 पे। आई रिपीट, टाइप 101 स्पेस योर नेम योर मैसेज और उसके बाद आप उसे सेंड करेंगे 4471 पे, यानी 4471 पे।
इसके बाद जो बारी आती है टेलीफोन नंबर की, जो कि है 04211100101, यानी एक 042-111-00-101। पाकिस्तान से बाहर से अगर कॉल करेंगे तो हमारा टेलीफोन नंबर होगा इस तरह से, आप मिलाएंगे 0092, उसके बाद 42, फिर 111-00-101। इस तरह आपकी कॉल हम तक पहुंच जाएगी और हम आपसे आपकी पसंद की पोइट्री सुन पाएंगे, आपकी पसंद की बातें सुन पाएंगे। वैसे तो बहुत सारी बातें हम आपसे करते हैं, अभी हमारे साथ करते हैं, और हमेशा की तरह कोई एक टॉपिक भी हमारे पास होता है जिसको हम डिस्कस करते हैं, कुछ ज़िंदगी की सच्चाइयों और हकायक के ऊपर मबनी होता है, कुछ सोचों के ऊपर मबनी होता है, कुछ हम सोचते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं उन चीज़ों के बारे में, मगर कभी कभी सोचते हैं, हमें हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम उनके बारे में सीरियसली कहीं बैठ के, तन्हाई में बैठ के कभी अपने आप से बात भी कर लें, कभी उन चीज़ों के बारे में भी सोच लें जिनके बारे में हम अक्सर ख्याल करते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ है, टाइम मिलेगा तो सोचेंगे, टाइम मिलेगा तो बात करेंगे, वो टाइम ही नहीं मिलता। उन्हीं बातों को हम आपके साथ शेयर करते हैं और आपके लिए खूबसूरत शायरी भी लेके आते हैं कि शायद उन बातों को सुन के, उन बातों को महसूस करके आप कुछ कह सकें या अपने आप से मुलाकात कर सकें। वक्त बताता चलूँ, 2:26 का अमल है, सुबह के 4 बजे तक मेरा आपका साथ है और प्रोग्राम में शामिल करते हैं आपके लिए पोइट्री और मोहब्बत की बात है, और मोहब्बत की बात जो होती है वो सबसे खूबसूरत बात होती है। अगर सबसे खूबसूरत चीज़ है दुनिया में हम देखें तो हमारे दरमियान जो चीज़ सबसे खूबसूरत होती है वो होती है मोहब्बत, और फिर उसकी यादें। ज़रूरी नहीं, कहते हैं, कहने वाले कहते हैं कि जनाब जो मोहब्बत और किस्मत आपस में आम तौर पे नहीं मिलती, जिनसे हमें मोहब्बत होती है वो हमारी किस्मत में नहीं होती, ऐसा क्यों होता है? आप बता सकते हैं इसके बारे में, अगर बताना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। और हम उन यादों को कभी दरख्तों पे मुंतकिल कर देते हैं, हमें तभी एहसास होता है जब दरख्तों के ऊपर नाम लिख रहे होते हैं, जब हम दरख्तों को कुरेद के अपना नाम लिख रहे होते हैं, जब हम उन पगडंडियों पे चल रहे होते हैं जिनके ऊपर हमें पता होता है, एहसास होता है कि शायद अगली दफ़ा हम यहाँ इकट्ठे शायद ना आ सकें, मगर वो यादें, वो बातें हमेशा दिल में मौजूद रहती हैं। कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, हमें भी है याद आज तक वो नज़र से हरफ़े सलाम लिखना, वो चांद चेहरे, वो बहकी बातें, सुलगते दिन थे महकती रातें, वो चांद चेहरे, वो बहकी बातें, सुलगते दिन थे महकती रातें, वो छोटे छोटे से कागजों पर मोहब्बतों के पयाम लिखना, वो चांद चेहरे, वो बहकी बातें, सुलगते दिन थे महकती रातें, वो छोटे छोटे से कागजों पर मोहब्बतों के पयाम लिखना, गुलाब चेहरों से दिल लगाना, वो चुपके चुपके नजर मिलाना, वो आरजुओं के ख्वाब बुनना, वो किस्सा नातमाम लिखना, मेरे नगर की हसीं फिजाओं कहीं जो उनका निशान पाओ, मेरे नगर की हसीं फिजाओं कहीं जो उनका निशान पाओ, तो पूछना ये कहाँ बसे वो, कहाँ है उनका कयाम लिखना, खुली फिजा में, खुली फिजाओं में सांस लेना, अबस है अब तो घुटन है ऐसी के चारों जानिब शजर खड़े हैं सलीब सूरत तमाम लिखना, गई रुतों में हजन हमारा बस एक ही तो ये मशगला था, गई रुतों में हसन हमारा बस एक ही तो ये मशगला था, किसी के चेहरे को सुबह कहना, किसी के चेहरे को सुबह कहना, किसी की जुल्फों को
शाम लिखना, हमें भी है याद आज तक वो नजर से हर्फ़े सलाम लिखना, कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। मनमोहन एफएम पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन, आपके खूबसूरत पैगाम हम तक पहुंच रहे हैं, आपके पैगाम, आपकी ऑफर कॉल्स का बहुत शुक्रिया। आपके जब कमेंट्स मुझ तक पहुंचते हैं तो यकीन मानिए कि अगर आप आसमान की जानिब निगाह उठा के देखें तो जो सितारे आपको नज़र आ रहे हैं ना, आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स मेरे प्रोग्राम में ऐसे ही होते हैं कि जैसे अंधेरी रात में चमकते हुए सितारे और चाँद होता है ना, बिल्कुल वैसे ही आपके मैसेजेस जो होते हैं वो प्रोग्राम को खूबसूरत बना देते हैं। हर दफ़ा मैं यही मिसाल देता हूँ आपको और यकीनन आपको इस मिसाल को सुनने का मज़ा आता होगा। कहते हैं कि अगर हमें किसी से मोहब्बत है, किसी से प्यार है, तो हम उनको ये कह देते हैं कि आप हमसे हज़ारों मील दूर हैं, किसी और शहर में, किसी और जगह पर हैं। हम कहते हैं कि रात को चाँद को देखिएगा, चाँद में आपका चेहरा नज़र आएगा, मुझे और मेरा चेहरा नज़र आएगा आपको। बिल्कुल ऐसी ही बात है आपके और हमारे दरमियान, जो मोहब्बत का सिलसिला है, जो प्यार का सिलसिला है, वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो प्रोग्राम में शामिल रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, और आपके कमेंट्स का, आपके कॉल्स का, ऑफियर मैसेजेस का, सभी का मुझे इंतज़ार रहता है। कहते कि जब एक दूसरे से जुदाई हो जाती है, कुछ लोग जुदा हो जाते हैं, कुछ वक्त ऐसा आ जाता है कि जिसमें जुदाई सामने आ जाती है और लोग उसको क्या कहते हैं कि जी हमारी मजबूरी थी। अरे मोहब्बत हो और मजबूरी जो है वो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं मौजूद होती है, मगर कुछ लोग मजबूरी को जुदाई का बहाना बना लेते हैं। बहार रुत में उजाड़ रास्ते, तका करोगे तो रो पड़ोगे। मोहसिन नकवी का कलाम पेश कर रहा हूं। बहार रुत में उजाड़ रास्ते, तका करोगे तो रो पड़ोगे, किसी से मिलने को जब भी मोहसिन सजा करोगे तो रो पड़ोगे। बहार रुत में उजाड़ रास्ते, तका करोगे तो रो पड़ोगे, किसी से मिलने को जब भी मोहसिन सजा करोगे तो रो पड़ोगे। तुम्हारे वादों ने यार मुझको तबाह किया है कुछ इस तरह से, तुम्हारे वादों ने यार मुझको तबाह किया है कुछ इस तरह से कि जिंदगी में जो फिर किसी से दगा करोगे तो रो पड़ोगे। लोग मोहब्बत में दगा भी तो करती है ना, मोहब्बत में दगा दिल को तड़पा देने वाली बात है। तुम्हारे वादों ने यार मुझको तबाह किया है कुछ इस तरह से कि जिंदगी में जो फिर किसी से दगा करोगे तो रो पड़ोगे। मैं जानता हूं मेरी मोहब्बत उजाड़ देगी तुम्हें भी ऐसे, मैं जानता हूं मेरी मोहब्बत उजाड़ देगी तुम्हें भी ऐसी कि चांद रातों में अब किसी से मिला करोगे तो रो पड़ोगे। मैं जानता हूं मेरी मोहब्बत उजाड़ देगी तुम्हें भी, मैं जानता हूं मेरी मोहब्बत उजाड़ देगी तुम्हें भी ऐसी कि चांद रातों में अब किसी से मिला करोगे तो रो पड़ोगे। बरसती बारिश में याद रखना तुम्हें सताएंगी मेरी आंखें, बरसती बारिश में याद रखना तुम्हें सताएंगी मेरी आंखें, किसी वली के मजार पर जब दुआ करोगे तो रो पड़ोगे। बहार रुत में उजाड़ रास्ते, तका करोगे तो रो पड़ोगे, किसी से मिलने को जब भी मोहसिन सजा करोगे तो रो पड़ोगे। किसी से मिलने को जब भी मोहसिन सजा करोगे तो रो पड़ोगे।

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

हर एक तमन्ना ना तुमसे मिलते ना ऐसे होते। अभी आपने मेहदी हसन की खूबसूरत आवाज़ में एक नायाब गीत सुना। आपके लिए हम ये नायाब गीत ढूंढ के लाते हैं ताकि आप इन गानों को सुन सकें और इनको एंजॉय कर सकें, और ये आपके लिए नए भी हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों की पुरानी यादों को भी ये ताज़ा कर देते हैं। तो मुझे यकीन है कि आपको ये गाना पसंद आया होगा मेहदी हसन की आवाज़ में। मनोमन एफ एम पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन, प्रोग्राम आपका जाना पहचाना गुंजा शौक, और हमारा आपका साथ है सुबह के 4 बजे तक। अभी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं मोहम्मद शहजाद, लाहौर से हमारे बहुत रेगुलर सुनने वाले, बहुत प्यारे हमारे साथी, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और एक गाने की फरमाइश इन्होंने की है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनकी पसंद का गाना प्रोग्राम में शामिल हो पाए। और इसी तरह से अब्दुल हमीद फारूकाबाद में से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, कह रहे हैं जी आपकी खातिर हम जाग रहे हैं, तमाम लोगों को सलाम दे दीजिएगा। हनीला जी को उन्होंने खास तौर पे सलाम भेजा है, मोहम्मद शहजाद का जिक्र किया इन्होंने, तो बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सीमा जी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं और सीमा जी ने हमें बताया है कि उनकी तरफ जो है वो ट्रांसमिशन की कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो हम कोशिश करते हैं आपकी जो शिकायत उसको दूर किया जा सके, और आप भी ज़रा कोशिश कीजिएगा कि एंटीना अपने रेडियो सेट का एंटीना ज़रा सही करके उसको चेक करें, उसकी साइड बदल के देखें, और उम्मीद है कि आपको ट्रांसमिशन सही सही मिल जाएगी। प्रेम आपके जाना पहचाना जी गुंचा शौक, और गुंचा शौक में हम आपके लिए बहुत सारी गज़लें, बहुत सारी नज़में, बहुत सारे शार लेके शामिल होते हैं। और इंसान की सबसे जो मुश्किल मुलाकात किसी दूसरे इंसान से नहीं, कहते हैं कि उसकी जो सबसे मुश्किल मुलाकात होती है ना, खुद अपने आप से होती है। हम सब लोगों से मिलते हैं, सब लोगों से बातें करते हैं, सब लोगों की बातों को सुनते भी हैं, लोगों के लिए हम बाज़ुकात हम सोचते हैं, और कुछ लोगों ने ऐसी बात कही होती है कि वो हमें अच्छी नहीं लगी होती, या किसी ने हमें तंज किया होता है, टोंट किया होता है, किसी ने हमारे दिल को दुखाया होता है, तो हम उसको दिल में लेके बैठे होते हैं, उसके बारे में सोच रहे होते हैं, मगर अपने आप से बस यही सबसे बड़ी मुश्किल है कि अपने आप से मुलाकात नहीं हो पाती। जब अपने आप से मुलाकात नहीं हो पाएगी तो हम दूसरे बंदे का, हम उसकी बातों का जवाब कैसे दे पाएंगे। और जब हम अपने आप से मिलते हैं तो फिर सभी बातों के जवाब हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो है इंसान की अपने आप से मुलाकात। दूसरे इंसान से मुलाकात तो होती रहती है, वो इसका ना मुश्किल काम नहीं है, खुद अपने आप से अगर जो मुलाकात होती है वही असल मुलाकात है, और उसी का हमें टाइम नहीं मिलता है। कभी अपने आप के साथ मुलाकात करके देखिए, बहुत सारे ऐसी बातें जो कि हम दूसरे के साथ दूसरे के कंधे पे सर रख के कहना चाहते हैं, कभी कभी रोने को दिल चाहते हैं, हम रोना चाहते हैं, अपने आंसू जो हैं वो हमारे तड़प रहे होते हैं निकलने के लिए, हम अपने आप को अपनी आंखें जो हमारी आंखें होती हैं वो आंसुओं को बहाने के लिए बेताब होती हैं, वो दुख जो हैं वो आंसुओं तक पहुंच जाते हैं, आंखों तक पहुंच जाते हैं, आंसू बन जाते हैं, और हमारा दिल चाहता है कि कोई ऐसा कंधा मिले, कोई ऐसा शख्स मिले कि हम उसके साथ अपने दुख जो हैं वो बाँट सकें, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा कंधा भी हमें नहीं मयस्सर होता, फिर हमें अपने आप से मुलाकात करनी पड़ती है। तब ही तो हम अपने आप से मुलाकात करते हैं, अपने आप को अपने गम अपने दुख सुनाते हैं, अपने आप के साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपने आप से सवाल करते हैं, अपने आप को जवाब देते हैं। ज़िंदगी इसी का नाम है, अगर हम अपने आप से मुलाकात कर लें, इस मुश्किल चीज़ को हल कर लें, तो यकीन माने फिर दिल का बोझ, आंसू जब बह जाते हैं निकल जाते हैं तो इंसान का दिल जो है वो हल्का हो जाता है, दिल का बोझ हल्का हो जाता है, बहुत सारे दुख जो हैं उनको तसल्ली मिल जाती है, बहुत सारी बातें जो हैं दिल के अंदर ठहराव आ जाते हैं, जो पहले ठहराव पैदा नहीं हो रहा होता दिल के अंदर। ज़िंदगी शायद मंजिल का नाम नहीं।
इंसान जिस रास्ते पर चलते हुए खुद को समझता है, जिस रास्ते पे चलते हुए हम अपने आप को समझ रहे हैं, वही जिंदगी है। अगर हम ये समझे कि जनाब मैं फलां मंजिल पे पहुंचूंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं इम्तिहान पास कर लूँगा, मैं स्कूल पास कर लूँगा, मैं यूनिवर्सिटी पास कर लूँगा, मैं जॉब हासिल कर लूँगा, मैं कारोबार कर लूँगा, तो वो शायद ज़िंदगी उसका नाम नहीं है, मंजिल का नाम नहीं है। जिस रास्ते पे हम चल रहे होते हैं, खुद को समझ रहे होते हैं, वही ज़िंदगी है। अगर हम अपने आप को समझ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पे, ज़िंदगी के रास्ते पे चल रहे हैं, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस पे चलते हुए अपने आप को समझ रहे हैं, तो वही हमारी ज़िंदगी है, वही हमारी ज़िंदगी है और वही हमारी ज़िंदगी है। इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी शायद मंजिल का नाम नहीं, इंसान जिस रास्ते पर चलते हुए खुद को समझता है वही उसकी ज़िंदगी होती है। अपने आप को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी हम अपने आप को बिल्कुल नहीं समझने की कोशिश करते, हम एक ख्याल में, एक ख्वाब में अपने आप को लेके बैठे रहते हैं। कुछ लोग माजी की यादों में बैठे रहते हैं, सारी ज़िंदगी उसी में गुजार देते हैं। कुछ लोग मुस्तकबिल के सुनहरे सपने देखते हैं, उसमें गुजार देते हैं। मगर ज़िंदगी शायद मंजिल का नाम है ही नहीं। जो रास्ता हमें अपना आप समझा दे, वही हमारी मंजिल है, वही हमारी ज़िंदगी है। कभी उनका नाम लेना, कभी उनकी बात करना, कभी उनका नाम लेना, कभी उनकी बात करना, मेरा ज़ौक उनकी चाहत, मेरा शौक उन पे मरना। वो किसी की झील आंखें, वो मेरी जुनू मिजाजी, वो किसी की झील आंखें, वो मेरी जुनू मिजाजी, कभी डूबना उभर कर, कभी डूब कर उभरना। वो किसी की झील आंखें, वो मेरी जुनू मिजाजी, कभी डूबना उभर कर, कभी डूब कर उभरना। तेरे मंचलों का जग में ये अजब चलन रहा है, न किसी की बात सुनना, न किसी से बात करना। तेरे मंचलों का जग में ये अजब चलन रहा है, न किसी की बात सुनना, न किसी से बात करना। शबे गम न पूछ कैसे तेरे मुब्तला पे गुजरी, शबे गम न पूछ कैसे तेरे मुब्तला पे गुजरी, कभी आह भर के गिरना, कभी गिर के आह भरना। वो तेरी गली के तेवर, वो नजर नजर पे पहरे, वो तेरी गली के तेवर, वो नजर नजर पे पहरे, वो मेरा किसी बहाने तुझे देखते गुजरना, वो मेरा किसी बहाने तुझे देखते गुजरना। कहाँ मेरे दिल की हसरत, कहाँ मेरी नारसाई, कहाँ मेरे दिल की हसरत, कहाँ मेरी नारसाई, कहाँ तेरे गेसुओं का तेरे दोष पर बिखरना। चले लाख चाल दुनिया हो जमाना लाख दुश्मन, चले लाख चाल दुनिया हो जमाना लाख दुश्मन, जो तेरी पनाह में हो उसे क्या किसी से डरना। वो करेंगे ना खुदाई तो लगेगी पार कश्ती, वो करेंगे ना खुदाई तो लगेगी पार कश्ती, है नसीर वरना मुश्किल तेरा पार यूं उतरना। कभी उनका नाम लेना, कभी उनकी बात करना, कभी उनका नाम लेना, कभी उनकी बात करना, मेरा ज़ौक उनकी चाहत, मेरा शौक उन पे मरना। मेरा ज़ौक उनकी चाहत, मेरा शौक उन पे मरना। एक और खूबसूरत गीत आपके लिए मेहदी हसन की आवाज़ में मेरे पास मौजूद है, उसे प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। पलट के वापस आऊँगा, आपकी लाइव कॉल का सिलसिला शुरू करूँगा।

0: वहशत। ओके ओके ओके ओके ओके जनाब। शर्म दहशत झिझक परेशानी, शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेते आप वो जी, मगर ये सब क्या है, आप वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते। जो ने लिया का खूबसूरत शेर आपकी नज़र मैंने किया। और जनाब सीमा जी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, तमाम सुनने वालों को सलाम। और इन्होंने एक गाने की फरमाइश की है और गाना मुझे गया भूल, मैं चूँकि मैंने लिखा नहीं था, अगर मुझे याद आ गया तो मैं इसे प्ले करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जनाब हक नवाज़ रावलपिंडी से। हक नवाज़ आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं, हमारा प्रोग्राम खूबसूरत हो जाता है आपके आने से, तो आप हमारे प्रोग्राम में बाकायदगी से आते हैं और आइंदा भी आपने बाकायदगी से आते रहना, कहीं नहीं जाना। कुछ आपके कमेंट्स हैं जो मुझ तक पहुँचे हैं उनको मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। अगर आपके पास इस वक्त सहूलत है फेसबुक की तो आप भी ज़रूर कमेंट कीजिए, आपके कमेंट से प्रोग्राम जो है वो खूबसूरत हो जाता है, वरना फीका फीका सा होता है। तो आपके आप बताते हैं कि प्रोग्राम को लाइक किया है नुमान आदिल ने, जिशान अली ने, मोहम्मद तुफैल अहमद तनोली ने, और आर के मुगल ने, हमीद गुल ने, जुगनू जूनियर ने। तो आपके पसंद का बहुत शुक्रिया, और आपके जो कमेंट्स हैं उनको प्रोग्राम में हमें शामिल करेंगे। और इससे पहले कि हम आपके फेसबुक के कमेंट्स की जानिब बढ़े, मेरे पास आपका एक SMS पहुंचा है, और ये SMS हमारे बहुत रेगुलर बहुत ही प्यारे हमारे लिस्टनर हैं, हमारे कॉलर हैं जनाब अब्दुल नूर हाशमी रिवाज गार्डन लाहौर से, कहते हैं आदाब वालेकुम अस्सलाम। और एक और मैसेज हम तक पहुंचा है जहांगीर अली का, और जहांगीर अली ने कहा कि जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जहांगीर अली हूँ। बहुत शुक्रिया जहांगीर अली, अगर आप अपनी लोकेशन जगह भी लिखते कि आप किस शहर से हमें कॉल मैसेज SMS कर रहे हैं तो हमें और ज़्यादा खुशी होती है। निवेद आपको दिल की गहराइयों से हम वेलकम कहते हैं। तो जनाब हमारे जो प्रोग्राम में आपके फेसबुक के कमेंट्स हैं उनको मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा, इसके बाद हम आपसे लाइव बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। तो जनाब हमीद गुल साहब हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, सलामत रहें हमेशा, बहुत शुक्रिया हमीद गुल साहब। पहले नंबर पे आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, यकीन मानिए दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा। और आपने जो शेर भेजा उसमें पहला लफ्ज़ फूल है, फूल सहराओं में खिले होंगे, फूल सहराओं में खिले होंगे, चाक पैराहन के सिले होंगे। ओके जी, फूल किधर चला गया, हाँ जी, फूल सहराओं में खिले होंगे, चाक पैराहन के सिले होंगे, इतने चेहरे तो मुझको याद नहीं, आप कहते हैं तो मिले होंगे। वाजिबा क्या बात है, कहाँ रहती हैं जनाब आपको इतने चेहरे याद, हम ही कहते हैं कि हम मिले हैं आपसे। बहुत शुक्रिया आपका जनाब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपको दिल की गहराइयों से मैं वेलकम कहता हूँ। हमारे बहुत अच्छे लिस्टनर हैं अमित गुल साहब, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छी पोइट्री सुनाते हैं, जब आते हैं तो छा जाते हैं। शाहिद खान FM 101 इस्लामाबाद से, शाहिद खान आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने के लिए, और आपने प्रोग्राम में मैसेज भेजा है, आपने लिखा है अस्सलाम वालेकुम मोहब्बत, और मोहब्बत की कम्प्लीट तस्वीर जो माजी हाल और मुस्तकबिल तीनों की आयनेदार होती है, जो आज भी मौजूद है। वी शुड ट्राई टू आर बेस्ट टू फाइंड आर लव। क्या बात है जनाब, बिल्कुल हमें कोशिश करते रहना चाहिए अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए। शाहिद खान आपको दिल की गहराइयों से वेलकम कहता हूँ FM 101 लाहौर में, आप 101 इस्लामाबाद से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। शाहिद खान वेलकम टू माई शो, एंड अगेन दोबारा भी ज़रूर मेरे प्रोग्राम में शामिल रहिएगा, मुझे बहुत दिली खुशी हुई आपके मैसेज की। हमीद गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया। जिशान अली अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम कराची, जिशान अली कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, कराची से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, आपको दिल की गहराइयों से वेलकम कहूँगा। नुमान आदिल कहते हैं السلام علیکم، نائس پوئٹری فرام کراچی، نعمان عادل، ویلکم ٹو لاہور اینڈ ویلکم ٹو مائی شو۔ آج تو کراچی سے ماشاء اللہ سے ذیشان بھی آئے ہیں، نعمان بھی آئے ہیں، اور شاہد خان نے ایک دفعہ پھر السلام علیکم، ان کا میسج دوبارہ سے منزل، ہاں ماضی حال اور مستقبل تینوں کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اوکے جی، آپ کا میسج دوبارہ سے میں ملا شاہد خان، تھینک یو اگین۔ اور اسی طرح سے آپ کا ایک اور دفعہ میسج ہے، جگنو جونیئر السلام علیکم سرکار، ویلکم جی این او، بہت شکریہ جگنو جونیئر تھوڑا، شاہد خان سبحان اللہ، بہت شکریہ شاہد خان، تھینک یو ویری مچ۔ طاہرہ مسعود نے ہمیں پوئٹری بھیجی ہے، طاہرہ مسعود آپ کا بہت شکریہ، آپ کی پوئٹری میں پروگرام میں شامل کرتا ہوں۔ عشق پاگل کر گیا تو کیا کرو گے سوچ لو، آج میں نے یہ سنانی تھی، آپ نے مجھے بھیج دی ہے، اور چلے ابھی اس کو شامل کر لیتے ہیں۔ عشق پاگل کر گیا تو کیا کرو گے سوچ لو، عشق پاگل کر گیا تو کیا کرو گے سوچ لو، سانحہ ایسا ہوا تو کیا کرو گے سوچ لو، تھا ساتھ اس کے ہم، ساتھ اس کے ہر قدم چلنے کی عادت کس لیے، چھوڑ کر وہ چل دیا تو کیا کرو گے سوچ لو، شور باہر ہے ابھی اس واسطے خاموش ہو، شور اندر سے اٹھا تو کیا کرو گے سوچ لو، کر رہے ہو گھر نیا تعمیر اڑتی ریت پر، یہ اچانک گر گیا تو کیا کرو گے سوچ لو، لوٹ کر جانا تو ہے آخر سبھی کو اس طرف، سو برس بھی جی لیا تو کیا کرو گے سوچ لو، دھڑکنیں مدم ہوئی جاتی ہیں اے چارہ گرو، چاک دل کا سل گیا تو کیا کرو گے سوچ لو، بند پلکوں میں ادھورے خواب بنتے ہو مگر کوئی ان میں آ بسا تو کیا کرو گے سوچ لو، در دریچے سب مکفل کر کے بیٹھے ہو مگر وہ اچانک آ گیا تو کیا کرو گے سوچ لو، واہ کیا بات ہے، در دریچے سب مکفل کر کے بیٹھے ہو مگر وہ اچانک آ گیا تو کیا کرو گے سوچ لو، ڈوبنے سورج کا چہرہ اور اس کا نقش پا، ڈوبتے سورج کا چہرہ اور اس کا نقش پا، جب یہ منظر گم ہوا تو کیا کرو گے سوچ لو۔ بہت شکریہ آپ کا طاہرہ مسعود پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ آر کے مغل کہتی ہیں السلام علیکم، نائس شو، بہت شکریہ، اوسم بھی آپ نے کہا ہے، اس کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ۔ اور آگے انہوں نے کیا کہ سر، نصرت فتح خان صاحب کی آواز میں یہ ٹریک ہی چلا دیں پلیز، دوست کیا خوب وفاؤں کا صلہ دیتے ہیں، ہر نئے موڑ پہ ایک زخم نیا دیتے ہیں۔ اوکے جی، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کی فرمائش کو پوری کر سکوں، چونکہ یہ فرمائشی پروگرام نہیں ہے، مگر پھر بھی میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ یہ میچ کر گیا گانا یا غزل یا گیت تو میں اسے چلا دیتا ہوتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جگنو جونیئر نے ایک دو نہیں بلکہ تین دن بھیجے ہیں، بہت شکریہ جگنو جونیئر، بڑے دنوں بعد آئے ہو یار، غائب مت ہوا کرو۔ آر کے مغل نے کہا ہے یو آر دا بیسٹ، تھینک یو ویری مچ آر کے مغل، میں صرف آپ کا شو سننے کے لیے ہی جاگ رہی ہوں، پچھلے بدھ کو پہلی بار آپ کا شو سنا تھا اور آج دوسری بار سن رہی ہوں، بہت شکریہ آر کے مغل، ویلکم ٹو مائی شو اینڈ ویلکم ٹو 101 FM لاہور، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کے جاگنے کے لیے اس سے ڈبل شکریہ، ملٹی پلائی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ آر کے مغل، آئندہ بھی ضرور سنیے گا۔ اور جگنو جونیئر کہتے ہیں ٹاپ، آر کے مغل کہتے ہیں کہ اگر یہ روئیں تو آنکھیں، یہ آنکھوں پہ بوجھ پڑتا ہے، اگر نہ روئیں تو آنکھوں پہ بوجھ پڑتا ہے، کریں جو گریا تو راتوں پہ بوجھ پڑتا ہے، پرندے چھوڑ کے تنہا اگر چلے جائیں تو پھر درخت کی شاخوں پہ بوجھ پڑتا ہے، خطائے عشق کو اب صرف سوچنے پھر سے ہماری روح کی، روح کے چھالوں پہ بوجھ پڑتا ہے، خطائے عشق کو اب صرف سوچنے، خیر اگلا شعر پڑھتی ہے، یہ چاند کرتا ہے آرام جب اماوس میں، سیاہ رات میں تاروں پہ بوجھ پڑتا ہے، تم ان کو علم دو لیکن یہ احتیاط رکھو، ہو ہماری बस्ता तो बच्चों पे बोझ पड़ता, वो भारी बस्ता तो बच्चों पे बोझ पड़ता है, सुकूत इतना हमें रास आ गया है कि अब जो कुछ सुने भी तो कानों पे बोझ पड़ता है। तुम्हारी याद की उजड़ी हुई हवेली में है इतनी धूल के सांसों पे बोझ पड़ता है, हम इस ख्याल से हिजरत भी कर नहीं सकते, कदम बढ़ाएं तो राहों पे बोझ पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, खूबसूरत पोइट्री आपने प्रोग्राम में शामिल की। जुगनू जुगनू ने गुलाब भेजे, चाय का कप भेजा, मोहम्मद तुफैल में तुनोली, और कहते हैं कि मेरे अपने अशार हैं, देखता हूँ मैं आईने में सिर्फ अक्स अपना, देखता हूँ मैं आईने में सिर्फ अक्स अपना, मैंने देखा नहीं इसमें किरदार ज़िंदगी, जो दिखाता है वो होता नहीं हकीकत में, सिर्फ शोखियों से करता हूँ इजहार ज़िंदगी। ज़िंदगी क्या है, सिर्फ है मिट मरने का नाम, दिल की हसरतों से हुई बेकार ज़िंदगी, और ज़िंदगी मिली तो मिलकर भी ना मिली, वो ज़िंदगी उम्र भर के लिए तुझसे रहे शर्मसार ज़िंदगी। ज़िंदगी क्या है, आईना में नक्श नज़र है, बस सिर्फ देखते हैं इस तलबगार ज़िंदगी। कलम निगार मोहम्मद फैल अहमद लाहौर। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, प्रोग्राम में अपनी पोइट्री आपने शेयर की, और जुगनू जूनियर आपका बहुत शुक्रिया, आपने खूबसूरत परिंदों की तस्वीरें और खूबसूरत तस्वीरें एक से बढ़ के एक आपने प्रोग्राम में शामिल की, आपका बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि आँख बरसी है तेरे नाम पे सावन की तरह, आंख बरसी है तेरे नाम पे सावन की तरह, जिस्म सुलगा है तेरी याद में ईंधन की तरह, लोरियां दी हैं किसी कुर्ब की ख्वाहिश ने मुझे, कुछ जवानी के भी दिन गुजरे हैं बचपन की तरह, इस बुलंदी से मुझे तूने नवाजा क्यों था, गिर के मैं टूट गया कांच के बर्तन की तरह, मुझसे मिलते हुए ये बात तो सोची होती, मैं तेरे दिल में समा जाऊँगा धड़कन की तरह। अब जुलेखा को उसका दामन भी दरीदा मेरे दामन की तरह मुंतज़र है किसी मखसूस सियाहट के लिए, ज़िंदगी बैठी है दहलीज़ पे, ज़िंदगी बैठी है दहलीज़ पे, बरहन की तरह, ना कोई राह उजाली ना शबस्तान चला, टिमटमाता हूँ चिराग सरे मदफन की तरह। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, प्रोग्राम में जुगनू जूनियर आपने पोइट्री भी शामिल की और हमने आपकी पोइट्री जूं की तूं प्रोग्राम में शामिल की, पढ़ दी, आपका बहुत शुक्रिया, हम आपको दिल की गहराइयों से वेलकम कहते हैं। और जनाब हमारे प्रोग्राम में शामिल है फौजिया, तमाम सुनने वालों को सलाम, प्रोग्राम खूबसूरत, आपका आना इस वक्त बहुत अच्छा लगता है, और प्रोग्राम के अंदर जो पोइट्री होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है, कोई खूबसूरत सी गज़ल हमें सुना दें जी, मैं आपको गज़ल अपनी आवाज़ में भी सुनाऊंगा। अनिला जी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, उनका मैसेज पहुँचा, उन्होंने कहा जी कि प्रोग्राम बहुत खूबसूरत और पोइट्री भी बहुत अच्छी, मैं लाइव बात करूँगी इंशाल्लाह जी, ज़रूर आप ट्राई कीजिए, हम आपकी लाइव कॉल भी प्रोग्राम में, सभी लोगों के साथ आपकी लाइव कॉल भी प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें जल्द ही कॉल करेंगी ताकि आपकी कॉल हमारे प्रोग्राम में जल्द शामिल हो सके। और जनाब आज हम आपसे पूछेंगे कि आपको अपने अंदर की कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद है, यानी अपने दिल की कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद है, और कौन सी बात आप तब्दील करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में तब्दील करना चाहते हैं, और कौन सी चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में पसंद है, इस हवाले से अगर आप बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। दस्ते शब पर दिखाई क्या देगी, दस्ते शब पर दिखाई क्या देंगी, सिलवटे रोशनी में उभरेंगी, प्रवीण शाकिर का कलाम है। दस्ते शब पर दिखाई क्या देंगी, सिलवटे रोशनी में उभरेंगी, घर की दीवारें मेरे जाने पर अपनी तन्हाइयों को सोचेंगी, उंगलियों को तराश दूं फिर भी आदतन उसका नाम लिखेंगे। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत शेर है, दोबारा आपको सुनाता हूं कि उंगलियों को तराश दूं फिर भी आदतन उसका नाम लिखेंगी, रंगो बू से कहीं पनाह नहीं, ख्वाहिशें भी कहां अमां देंगी, रंगोबू से कहीं पनाह नहीं, ख्वाहिशें भी कहां अमां देंगी, एक खुशबू से बच भी जाऊं अगर दूसरी निखते जकड़ लेंगी, खाम में तितलियां पकड़ने को नींदें बच्चों की तरह दौड़ेंगी, खिड़कियों पर दबीस पर्दे हों बारिशें फिर भी दस्तकें देंगी, घर की दीवारें मेरे जाने पर अपनी तन्हाइयों को सोचेंगी, उंगलियों को तराश दूं फिर भी आदतन उसका नाम लिखेंगी। कुछ लोगों की हमें आदत हो जाती है, कुछ लोग हम रोज़ मिलते हैं, रोज़ाना उनसे मोहब्बत की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, हर बात डिस्कस करते हैं, उनकी आदत हो जाती है। हम कहते हैं कि हमें उनसे मोहब्बत नहीं है, हमें उनसे प्यार नहीं है, हम सिर्फ मिलते हैं, मगर हमें उनकी इतनी पुख्ता आदत हो जाती है कि अगर कभी वो हमसे दूर हो जाए तो हम तड़पना शुरू कर देते हैं, हमें तलाश करना शुरू कर देते हैं। यकीन करें जो इश्क होता है और ख़ास तौर पे वो इश्क बड़ा कमाल का होता है जिसमें दोनों जानते हों कि हम कभी एक नहीं हो सकते, कि हम कभी एक नहीं। इश्क तो फिर मतलब इश्क है ना, वो तो ये नहीं देखता ये क्या है और वो क्या है और ऐसे है तो वैसे है तो वैसे है तो ऐसे क्यों है, वो तो इश्क है, वो कभी नहीं सोचता। वो इश्क बड़ा कमाल होता है जिसमें दोनों जानते हों कि हम कभी एक नहीं हो सकते, फिर भी इंतजार रहता है, फिर भी फिक्र रहती है, फिर भी मोहब्बत कम नहीं होती। वो शख्स दिल में रहता है मगर किस्मत में नहीं। जो लोग दिल में रहते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं वो हमारी किस्मत में क्यों नहीं होते, मगर किस्मत में नहीं। कुछ रिश्ते मिलते नहीं, सिर्फ महसूस होते हैं, महसूस करके देखिए। कुछ लोग आपके दिल के बहुत करीब होंगे, बहुत आप उनसे मोहब्बत करते होंगे, बहुत आपको उनकी हमेशा तलब रहती होगी, बहुत हमेशा उनको याद करते होंगे, मगर क्या है कि वो हमें मिल नहीं सकते। हमें पता है कि वो हमें मिल नहीं सकते, मगर फिर भी हमारी मोहब्बत उनको हमेशा याद करती रहती है। हम बुझ जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमारा दिल कहीं नहीं लगता, और हम कभी कभी उनको छोड़ भी देते हैं। ठीक है, आप हमें नहीं मिलते तो हम आप हमसे दूर चले गए हैं, आपने हमसे बात करनी छोड़ दी, आप हमें छोड़ के जा चुके हैं, तो हम ये मान भी लेते हैं, अपने दिल को संभाल भी लेते हैं, मगर कभी कभी फिर वहाँ से आवाज आ जाती है, कभी कभी फिर वहां से बुलावा आ जाता है।
1: जो जहर पी चुका तुम्ही ने मुझे दिया, जो
2: सा
1: जो जहर पी चुका तुम्ही ने मुझे दिया, अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे न दो, दर न रे ऐसा सारे ऐसा कभी न हो कि पलट कर के पलट कर।
2: ये भी ड्रामा है
1: जी जी,
2: ऐसा ऐसे में हैरत आ गई या खौफ, ऐसा सही बिल्कुल, वैसे भी आप जो कहेंगे ऐसा कभी ना हो
1: जी,
2: क्यों कहेंगे
1: ऐसा कभी ना हो कि पलट कर ना सकूं, हर बार दूर हर बार दूर जाके

0: ओ कि जी एक शेर याद आ रहा है कि तुमने कहा था हर शाम तेरा हाल पूछेंगे, तुमने कहा था हर शाम तेरा हाल पूछेंगे, तुम बदल गए हो या तुम्हारे शहर में शाम नहीं होती। अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम अनिला जी, क्या हाल है आपके?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो सिम भाई? ठीक ठाक हैं?
0: जी जी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक।
1: और जबरदस्त प्रोग्राम और बड़ी खूबसूरत शायरी आपने मोहसिन नकवी की भी, बड़ी अच्छी शायरी पढ़ी।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: और सुनने में मजा भी आता है। हमीद भाई, हमीद गुल साहब इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं ना शायरी के बारे में, अच्छी बात है। हमें जरा प्रोग्राम और बड़ी खूबसूरत शायरी आपने मोहसिन नकवी की भी, बड़ी अच्छी शायरी पढ़ी।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: और सुनने में मजा भी आता है। हमीद भाई, हमीद गुल साहब इतनी

0: और जितने मेरे बहन भाई आ रहे हैं सबके लिए बहुत सी टॉपिक आपने जो रखा आज दिमाग से निकल।
1: चले कोई बात नहीं, आप कुछ सुनाइए, आप कुछ बताएं।
0: नहीं मैं क्या बताऊं, पंजाबी शो में जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं कहती हूँ मैं थक गई, मेरी उंगलियों ने मुझे कहना शुरू कर दिया बस कर दे नीला बस कर दे। मैं आपने वो गाना सुनाया था ना अल्लाह दी सौ तू नहीं दिस, मैं कहीं जा रही हूँ अल्लाह दी सौ कॉल नहीं मिल दी, अल्लाह दी सौ कॉल हरे कितने जा मिल दी। आपने वो बड़ा मजे का गाना लगाया था ना, वो नहीं मैं पैसा मंगन, मैं पता नहीं क्या वो पंजाबी गाना तो
1: जी जी
0: नहीं मैं पैसा मंगन नहीं मैं कितने दी चली नहीं मैं इतने ही रहा मैं पैसा लेके जा
1: नहीं दूजा फेरा पाना
0: नहीं दूजा फेरा पा, मैं कहूँ मैं भी कॉल में लाके रहना। ओए होए ऐसी मेरी हुई, मुझे हंसी इतनी आई खुद पे भी और वो सॉन्ग सुन के, बहुत मजे का शो था, बहुत मजे का।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
0: मैंने बड़ी कोशिश की बट अफसोस मेरी कॉल नहीं लगी, और आज मैं भी कब से मिला रही हूँ, मैंने कहा मैंने आज जाते साथ ही शुरू में जो है ना धमा चौकड़ी में जा रही तो जबरदस्त इरम बोधी जट और अब्दुल हमीद भाई जो फरुखाबाद से, सबके पैगाम में सुन रही हूँ।
1: हाँ
0: सब दुआएं दे रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में हमारी बाजी बेबी भी सुन रही होती है, उनके लिए भी बहुत सी दुआएं, और यहाँ पे शमीमा पी फरिया पी साजदा सब सबके लिए बहुत सी, तवीना पी फजाना रिजाना सबके लिए बहुत सी दुआएं। ये सब गुलदस्ता है हमारे फैमिली का, जो जैसे कहते हैं मोहब्बत भरा आप प्रोग्राम लेके आते हैं इतनी मोहब्बत से इतने चाव से, वो भी इस वक्त आना आपका और ये प्रोग्राम लेके इतना कुछ इतनी खूबसूरत शायरी कमाल कर
1: और इस वक्त आपका इतना माशाल्लाह से फ्रेश होके बोलना यकीन माने इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे भी इंतहा खुशी हो रही। सब लोग इतने फ्रेश हैं कि मुझे लग ही नहीं रहा कि रात का ये वाला पहर है, इतना मजा आ रहा है सब लोगों से बात करके।
0: ये जो आप अप्रिशिएट करते हैं ना, इतना हौसला देते हैं, दिल चाहता है आप 4 या 6 बजे तक करें हम करेंगे। उस दिन डॉक्स भी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे।
1: अच्छा मेहरबानी उनकी।
0: एक पीछे जो प्रोग्राम चला 14 अगस्त का, उसमें वो रहमान और वो सब बैठे हुए थे, तो शहजाद भाई आगे ना डायलॉग जैसे करते हैं रौनक लगाते हैं, तो वो डायलॉग कर रहे थे, तो आगे से ना डॉक्स बड़ा हंसे कहते हैं ए डायलॉग का जवाब मैं नहीं दे सकता, इस तरह वसीम साहब होने ना ओए होए कमाल उन्होंने जवाब देना सी, शानदार तरीन प्रोग्राम कर देने मैं असी नहीं कर सकते हो ना मंग जवाब पंजाबी देते तानुष डायलॉग बोल के इस तरह जवाब नहीं दे सकते, और वसीम भाई होंगे तो उन्होंने बड़ा कमाल तानु जवाब दिया।
1: बहुत शुक्रिया उनका भी तुम्हारा भी।
0: नहीं बड़ा पसंद किया जाता है सारी बात आपका पंजाबी का प्रोग्राम, और लोग इंतजार में होते हैं, और साढ़े बस नहीं चलता हफ्ते दे ची एक दी जाए दो बारी हो जाए।
1: थैंक यू वेरी मच। अच्छा बहुत शुक्रिया, कुछ सुनाएंगी?
0: रौनक लगती है शायरी तो आज मैं कोई नहीं लाई।
1: अच्छा
0: थोड़ा सा गुनगुना लूं
1: जी।
0: हाँ आपको बताओ वसीम भाई
1: जी,
0: इस्लामाबाद के एक शो में मैंने गुनगुनाई वो शायरी हमीद भाई ने रखा था, हमीद गुल साहब ने, कि जो वो इस शायरी को गुनगुनाएगा ना मैं उसको 1,000 रुपए इनाम दूंगा। और मुझे बड़ा शौक है गेमों में जाके टांग बसाने का। मैंने गुनगुना दिया उसको, बना के वो नहीं शायरी मैंने पढ़ी
1: जी।
0: तुम नजर से नजर मिलाते तो बात करते ना मुस्कुराते तो इसको ना मैंने गुनगुना दिया
1: जी जी।
0: अब उन्होंने एक तो मुझे इनाम भी मिला और उन्होंने साथ में ना मुझे खिताब भी दिया एक।
1: अच्छा
0: अंदलीब का।
1: वाह वाह वाह वाह
0: बुलबुल
1: तो क्या बात है, क्या बात है।
0: और मेरी इतनी खुशी हुई ना हमीद भाई थैंक यू अदा बज अदा बज अदा बज।
1: बहुत शुक्रिया नीला जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
0: जबरदस्त रौनक लगती है शो में, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, और बाकी सब मेरे जो बहन भाई आते हैं इतना अप्रिशिएट करते हैं, उन सबके लिए बहुत शुक्रिया। जाते जाते दो लाइनें गुनगुना जाती हूँ। हंस खोलने तेरिया या

0: वाह वाह वाह, बहुत अच्छे।
1: तस्वीर बना के मैं तेरी,
0: वाह वाह वाह, बहुत अच्छे।
1: जीवन का बहाना लबे आए तू न बिछड़ के मिले ओ चन सजना, ऐसा सारा जमाना लबे आए।
0: बहुत अच्छे, जीती रहिए, थैंक यू वेरी मच।
1: और इरम के लिए बहुत सी दुआएं, वो बड़ी मोहब्बत से प्यार दुआ सलाम देती है, उसके भी बहुत सी दुआएं।
0: बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू सो मच वसीम भाई, आप जीते रहे, खुश रहे, सलामत रहे, और सबके लिए बहुत सी दुआएं। अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊं, मेरे तारिक भाई बेचारे पता नहीं किधर गुआचे हुए, खाबे शाबे खा के सोए पड़े।
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
0: जी शुक्र अल्लाह, ठीक हूँ। कौन?
2: महजवीन बात कर रही हूँ।
0: जी महजवीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं,
2: अल्लाह का शुक्र। मैंने सोचा आज भी मेरी कॉल नहीं मिली।
0: आज आपकी कॉल मिल गई और मेरे ख्याल पहली दफा मिली है मेरे प्रोग्राम में।
2: नहीं नहीं, आई थिंक शायद दूसरी तीसरी मरतबा बात हो रही है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, पिछले में नहीं हुई थी? पिछले एक दो
2: प्रोग्राम
0: पे
2: नहीं, बहुत अरसा हो गया मैंने कॉल की ही नहीं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं?
2: जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप ठीक हैं?
0: जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम? अच्छा लग रहा है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है। हमीद गुल साहब की शिकायत पे गौर कर रही थी कि सबसे ज्यादा शायरी मैं ही पोस्ट कर रही थी। मैंने सोचा मैं ऑन एयर ही चली जाती हूँ।
0: बहुत अच्छा किया आपने,
2: इससे पहले के तीर मेरी तरफ जाना मुड़ गए।
0: ये आपने बहुत अकलमंदी का मुजाहरा किया, बिल्कुल ठीक हो गया। वो ऑफिस में होता है ना कि एमडी साहब बहुत गुस्से में आप पे, तो वो कहते हैं कि मैं ना हम ना किसी और से नहीं मिलता, मैं सीधे ही उनसे मिल लेता हूँ जाके।
2: मेरे पास कलाम है, ये मेरा शहर सुखन से परवीन शाकिर साहिबा का।
0: जी जरूर जरूर।
2: फरमाती हैं कि आवास के हमरा सरापा भी तो देखूं, आवास के हमरा सरापा भी तो देखूं, ऐ जाने सुखन मैं तेरा चेहरा भी तो देखूं।
0: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल।
2: दस्तक तो कुछ ऐसी है कि दिल छूने लगी है, दस्तक तो कुछ ऐसी है कि दिल छूने लगी है, इस हब्स में बारिश का ये झोंका भी तो देखूं।
0: वाह ब्यूटीफुल।
2: चेहरा की तरह रहते हुए थक गई आंखें,
0: वाह।
2: चेहरा की तरह रहते हुए थक गई आंखें, दुख कहता है अब मैं कोई दरिया भी तो देखूं,
0: मैं कोई दरिया भी तो देखूं। बहुत बढ़िया,
2: ये
0: बहुत
2: क्या बहुत शुक्रिया। ये क्या कि वो जब चाहे मुझे छीन ले मुझसे,
0: वाह क्या बात है, क्या
2: ये क्या कि वो जब चाहे मुझे छीन ले मुझसे, अपने लिए वो शख्स तड़पता भी तो देखूं।
0: वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल।
2: अब तक तो मेरे शेर हवाला रहे तेरा,
0: वाह।
2: अब तक तो मेरे शेर हवाला रहे तेरा, अब मैं तेरी रुसवाई का चर्चा भी तो देखूं।
0: वाह क्या बात क्या बात।
2: अब तक जो शराब आए थे अनजाने में आए,
0: अनजाने में आए।
2: अब तक जो शराब आए थे अनजाने में आए, पहचाने हुए रस्तों का धोखा भी तो देखूं।
0: वाह वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल।
2: बहुत शुक्रिया आपका वसीम, बहुत कम टाइम है।
0: बहुत खूबसूरत कलाम आपने मुंतखब किया, क्या बात है। जीती रहिए जीती रहिए।
2: ओके जनाब, इंशाल्लाह फिर बात होगी।
0: इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके जी। सिलसिले जो वफा के रखते हैं, सिलसिले जो वफा के रखते हैं, हौसले इंतहा के रखते हैं। सिलसिले जो वफा के रखते हैं, हौसले इंतहा के रखते हैं, हम कभी बद्दुआ नहीं देते, हम सलीके दुआ के रखते हैं। उनके दामन में जलते देखे हैं वो जो दामन बचा के रखते हैं, उनके दामन भी जलते देखे हैं वो जो दामन बचा के रखते हैं। हम नहीं हैं शिकस्त के कायल, हम सफीने जला के रखते हैं। जिसको जाना है वो चला जाए, हम दिए सब बुझा के रखते हैं। हम भी कितने अजीब हैं मोहसिन, दर्द को दिल बना के रखते हैं। सिलसिले जो वफा के रखते हैं, हौसले इंतहा के रखते हैं। ابھی آپ نے محسن نقوی کا کلام سنا. اس سے پہلے کالر تھی ہمارے ساتھ مہاجبین. خوبصورت لب و لہجے میں انہوں نے پروین شاکر کا کلام سنایا تھا. مہاجبین جیتی رہیے, بہت خوب آپ نے بہت اچھی شاعری پڑھی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم
0: جی. آگے جی
1: پھر پھر آگے میں معذرت دینا. ٹھیک ہے نا, وسیم بھائی آپ کے پاس شاعری ہوگی پروین شاکر کی ہی. خوابوں میں ملوں گی نہ خیالوں میں ملوں گی, میں چاند کے حالوں میں ملوں گی, اس طرح سے ہے. اگر وہ ملے تو پلیز ضرور پڑھیے گا.
0: جی جی ضرور ضرور ضرور ضرور. اوکے اوکے اوکے, اللہ حافظ.

0: ओके जी, हमारा टेलीफोन नंबर 04211100101। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, साझेदार लाहौर
0: जी। साझेदार कैसे हैं? ठीक ठाक हैं
1: सर। हमेशा की तरह आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है ना, कभी हमें महसूस नहीं होगा। कितने भी आपके टेंशन होती है, घरों में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन जब आप प्रोग्राम करते हैं महसूस नहीं होता कि वसीम भाई को टेंशन मजबूरी।
0: वो तो जिंदगी है ना, जिंदगी में कभी कभी टेंशन होती है, कभी रिलैक्स होता है बंदा, वो चलता रहता है सिलसिला। अब अगर मेरा मूड ऑफ हो, मैं आके यहाँ पे ऑफ मूड के साथ बातें करना शुरू कर दूँ, तो मेरी वजह से लाखों लोगों का मूड ऑफ हो जाएगा। तो क्यों क्यों हम मूड ऑफ करें, अपना भी और किसी का भी?
1: बिल्कुल, आरजे को ना फ्रेशमेंट होनी चाहिए उसपे, कभी भी मायूसी उसके चेहरे पे और उसकी उसकी आवाज में नहीं आनी चाहिए।
0: सही बात है, सही बात है।
1: हर एक आरजे में ये फन होना चाहिए, क्योंकि हम जब जाग रहे हैं तो आपके लिए जागे, हमारी अपनी मजबूरी होती है, जागना होता है।
0: सही बात है।
1: तो साहिब लोग हसीन समाते सुन रही होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी स्माइल जब आप देते हैं ना दिन हो या रात हो।
0: बहुत बहुत बहुत शुक्रिया
1: आपको जिंदगी दे। तो रात आहिस्ता आहिस्ता जवान होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुलूदगी में चली जाती। इसका एहसास जाके सुबह के टाइम होता है। तो मैं आपको कुछ शेरी सुनाऊंगा।
0: सुनाए।
1: कुछ लोग हैं उजड़े दिल वाले,
0: वाह,
1: जिन्हें मोहब्बत देनी है। कुछ फूल हैं जिनको चुनना है, कुछ हार की सूरत देनी है,
0: वाह,
1: कुछ अपनी नींदें बाकी हैं जिन्हें बांटना है कुछ लोगों में, उनको भी तो राहत देनी है। ऐ जिंदगी आहिस्ता चल, ऐ उम्र रवां आहिस्ता चल, आहिस्ता चल, अब खासा कर चुका मैं। अच्छा वसीम साहब, मैंने जो पहले आपको शेर एक दिन सुनाया था ना, वो इस्लाम अमजद इस्लाम का था, वो मैंने गलती से ना अहमद फराज साहब का नाम लगा दिया।
0: अच्छा अच्छा।
1: हुए फजर ते आखिर बिस्मिल्लाह, अज दौलता साढ़े घर आईया ने, जिसे कौल ते असी दिसा किता, उन्हें ओड़क तोड़ निभाईया ने। आप कर दो तो आपने मेरी इज्जत रख ली, आपका बहुत शुक्रिया सर।
0: बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।
1: अल्लाह
0: हाफिज़। ओके जी, प्रेम का टाइम खत्म होने को है, 3:51 हो चुके हैं और आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है। हेलो,
2: अस्सलाम
0: वालेकुम। अस्सलाम
2: फाइजा नसीर बात कर रही हूँ, लाहौर से। कैसी हैं आप?
0: जी शुक्रिया अल्लाह का, फाइजा नसीर आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं
2: जी, अल्लाह का शुक्र। मैं ठीक हूँ, बस गला थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है।
0: हाँ वो लग रहा है वो
2: जी जी, आपका शो सुन रही थी, अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, काफी रौनक लगाई हुई है आपने, तो मैंने कहा मैं भी कुछ सुनाती हूँ।
0: जरूर जरूर जरूर सुनाइए।
2: मुझे सुबह का नहीं रात का इंतजार होता है। मुझे सुबह का नहीं रात का इंतजार होता है, जिससे है मुझे मोहब्बत वो सात समंदर पार होता है। उनकी सुबह और हमारी रात होती है, उनसे बातें करने को ये दिल बेकरार होता है। अल्लाह करे थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए उन्हें, अल्लाह करे थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए उन्हें, उनके पास हमारे लिए वक्त कहाँ होता है। हमें सुबह का नहीं रात का इंतजार होता है, जिनसे हमें मोहब्बत जिससे मुझे मोहब्बत वो सात समुंदर पार होता है।
0: और बहुत से
2: ये ना मैंने खुद की शायरी लिखी हुई, जो जिसके लिए मैंने लिखी हुई है वो ना मेरे हस्बैंड और मेरे से
0: मुझे मुझे बिल्कुल बिल्कुल अंदाजा हो गया था कि ये आपने ही लिखा है और आपके हस्बैंड के लिए ही ये लिखी गई है।
2: जी तो है ना, वो दूर है तो इसलिए ना, तो फिर मैंने उनके लिए शायरी लिख दी थी, तो फिर मैंने उनको सुनाई। तो लेकिन जो आप टॉपिक पे बात कर रहे थे, टॉपिक पे ये कहना चाहूंगी, मेरे अंदर ना एक बुरी जो चीज है ना वो ये कि मुझे ना बहुत जल्दी ना गुस्सा आ जाता है। तो जिसकी वजह से ना मेरी और हस्बैंड की ना काफी बार ना मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और मैं उनसे काफी टाइम तक बात भी नहीं करती।
0: अच्छा अच्छा
2: तो
0: अच्छा
2: बस इस बात पे ना मुझे किसी बात पे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता, तो जिस चीज को ना मैं अपने अंदर से ना खत्म करना चाहती हूँ बिल्कुल, कि तकरीबन ये 1% भी ना रहे। और जो मेरी अच्छी चीज है ना, जो मुझे लगती है सबको लगती है, वो ये है कि मैं अपनी जो मेरी गलती होती है ना मैं उसको मान लेती हूँ, मान कर ना सॉरी भी कर देती हूँ।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे,
2: ये चीजें
0: सॉरी कर देनी चाहिए, सॉरी कर देने से ना सारा सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं।
2: हाँ जी बिल्कुल सही है।
0: चले चले बहुत शुक्रिया,
2: सब लोग आए सभी को मेरा सलाम, खुश रहे सलामत रहे,
0: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच फैजल नसीर। ओके जनाब, 101 FM पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन। तो जनाब आखिरी कॉलर की जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
3: मैं महबूब अली आपका खादिम
0: जी, क्या हाल चाल है महबूब अली, ठीक ठाक है?
3: क्या हाल पूछते हो, दिले बीमार का इसमें भी मजा है परवरदिगार का। भाई वसीम, आज का जो प्रोग्राम था ना
0: जी जी,
3: वो बड़ा मुनफरद प्रोग्राम था।
0: चले चले बहुत शुक्रिया आपका।
3: मैंने ये निचोड़ निकाला आज का कि जैसे अलजबरे का सवाल होता है ना, वो इस तरह का आज प्रोग्राम था कि आज का प्रोग्राम समझना जो है ना वो बड़ा मुश्किल था। अच्छे अच्छे कॉलर आए, हमीद गुल साहब आए, हमारी बहन अनिला आई, और भी कॉलर आए, सब ने अच्छी बातें की और बड़ी मुनफरद बातें की हैं।
0: बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का और आपका महबूब भाई, बहुत शुक्रिया।
3: अच्छा जी, सब सुनने वालों को सलाम,
0: थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। ओके जी, प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। अपने आरजे वसीम अहमद को यानी मुझे ढेर दो में ढेर दफ़ा याद रखिएगा, मैं भी आपको ढेर दो में ढेर दफ़ा याद रखने की कोशिश करूँगा। कोशिश इसलिए कि कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं। जाते जाते अहमद फराज का कलाम, आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा, इतना मानूस ना हो खलवत गम से अपनी, तो कभी खुद को भी देखेगा तो डर जाएगा। डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं मैं, नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा। जिंदगी तेरी अता है तो ये जाने वाला, तेरी बख्शिश तेरी दहलीज पे धर जाएगा। जब्त लाजम है मगर दुख है क्यामत का फराज, जालम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा, जालम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा। आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। मोहम्मद शहजाद की पसंद पे ये खूबसूरत गीत आपके लिए फिल्म घूंघट से, और मुझे लग रहा है कि आखिरी कॉलर मेरे साथ मौजूद है अभी। हेलो
4: जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बता दे बस।
4: सिर्फ जिला मुल्तान तहसील खिजाबाद से हाफिज अब्दुल रहमान।
0: हाफिज अब्दुल रहमान जिला मुल्तान से बात कर रहे हैं?
4: जी जी जी।
0: किस जगह से?
4: जिला मुल्तान समीजाबाद से।
0: कौन सा बात?
4: समीजाबाद, समीजाबाद।
0: अच्छा समीजाबाद से, ठीक हो गया
4: जी। मैं कहता हूँ लाहौर जिंदाबाद।
0: अच्छा क्यों कहते हैं?
4: लाहौर इसलिए जिंदाबाद, सारे लाहौर ही जाग रहे हैं।
0: सही बात है, जाग रहे हैं, प्रोग्राम भी सुन रहे हैं, कुछ लोग प्रोग्राम भी सुन रहे हैं
4: जी। मैं कहता हूँ क्या ही बात है, जितने कॉलर मेरे बहन भाई आ रहे हैं सब अल्लाह पाक सब के उतर सब के सलामत रखे, सब सलामत रखे। मैं कहता हूँ करीमा बेबख्शाए बर हालिमा, क्यास्तन असीरे कमंदे हवा, नादारे गैरत को फरियाद रस, तू है आसियारा खता बख्शे बस।
0: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
4: तमाम तमाम बहन भाई को सलाम हो गया।
0: अभी आपने जो पढ़ा है जो सुनाया उसका तर्जमा भी बता दें।
4: ये फारसी का शेर है, तर्जमा मुझे थोड़ा बहुत आता है, ये करीमा की ये गुनाह की तलाफी होती है।
0: अच्छा चले बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके जी, कभी तुम भी हमसे थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। इजाजत दीजिए अगले प्रेम तक, अल्लाह हाफिज़।

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।